आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 22, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:58 हो रहे हैं। उपस्थित हैं हम अपने आज के प्रातःकालीन प्रसारण के साथ।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। खेती किसानी में आइए आज जानकारी हासिल करते हैं। कम वर्षा पर आधारित खेती के बारे में जानकारी दे रही हैं अनीता तिर्की।

0: कम वर्षा होने की स्थिति में ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, तीसी और सरगुजा इत्यादि का चयन करना चाहिए, जो कम पानी में अच्छी उपज दे सकते हैं और जिसमें सूखा सहने की क्षमता हो। इसके अतिरिक्त दलहनी फसल जैसे अरहर, तिलहनी फसल, मूंगफली और टाँड जमीन के लिए उपयुक्त धान की किस्मों का ही प्रयोग करना चाहिए। कम पानी वाली फसलें और उनके प्रभेद इस तरह से हैं। ऊपरी जमीन में धान के लिए बिरसा विकास धान 109 और वंदना, मकई के लिए सुवान कंपोजिट 1, मड़ुआ के लिए A404, ज्वार की किस्मों में CSB-20, SPB-16-16, मूंगफली AK-12-24। एक बार किसान भाई फिर से सुन ले, कम पानी में तैयार होने वाली फसलें और उनके प्रभेद इस तरह से हैं। ऊपरी जमीन में धान के लिए बिरसा विकास धान 109 और वंदना है। उसी तरह मकई के लिए सुवान कंपोजिट 1 है, मड़ुआ के लिए A-404, ज्वार की अच्छी किस्मों में CSB-20, SPB-16-16, मूंगफली की उन्नत किस्मों में AK-12-24 है। सूखा रोधी फसल वैसे फसल को कहते हैं जो सूखे की स्थिति में उत्पन्न होने पर भी अपनी पूरी क्षमता अनुरूप उत्पादन करते हैं, जैसे कि मड़ुआ, ज्वार और बाजरा। कम वर्षा होने की स्थिति में मड़ुआ के बीजों की रुपाई 30 दिन तक कर देनी चाहिए। इससे उपज में 25-30% तक की वृद्धि होती है। देसी प्रजाति की छिटकुआ विधि से औसत उपज 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की तुलना में उन्नत प्रजाति A-404 की रुपाई से 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल सकती है। किसान भाइयों को कम वर्षा होने की स्थिति में मड़ुआ के बीजों की रुपाई 30 जून तक किसी भी तरह से कर देनी है, क्योंकि इससे उपज में 25-30% तक की वृद्धि होगी। और उन्नत प्रजाति को लेना है, उन्नत प्रजाति में A-404 है, इसकी रुपाई से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल सकती है। सूखाग्रस्त क्षेत्र में ज्वार सूखा सहन करने वाली फसल है, इसलिए इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ज्वार की प्रभेद SPB-16-16 इसके लिए अत्यधिक उपयुक्त है। झारखंड राज्य में किसानों के पास ज्यादातर टाँड जमीन है और वहाँ पर पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। इसके लिए किसान भाई इस जमीन में गोड़ा धान, बाजरा, मूंगफली, सरगुजा इत्यादि की फसलों का चुनाव कर सकते हैं, इस फसलों को ले सकते हैं। अंतर्वर्तीय कृषि प्रणाली का उपयोग भी बहुत ही लाभदायक है। इसमें दो पंक्ति अरहर, उसके बीच में मक्का की एक पंक्ति या मूंगफली की एक पंक्ति ले सकते हैं। दो पंक्ति अरहर के बीच में मक्का सुवान जो है उसकी एक पंक्ति या मूंगफली की जो किस्म है AK-12-24 इसकी एक पंक्ति ले सकते हैं। इसी तरह गोड़ा धान में वंदना या बिरसा विकास धान 109 के साथ उड़द, बिरसा उड़द की दो पंक्तियां 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। किसान भाइयों को इस तरह से खेती करने से लाभ ही होगा।
1: अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कम वर्षा पर आधारित खेती के बारे में। जानकारी दे रही थी अनीता तिर्की।

0: सदियों से भारतवर्ष की पावन धरा पर गुरु और शिष्य का स्नेहिल संबंध रहा है। सनातन परंपरा में गुरु अपनी सदाशयता, सद्भावना और आत्मीयता के विलक्षण स्वरूप से हर मानव मन में चरित्र निर्माण, आपसी प्रेम और भाईचारे का बीज बोता रहा है। सशरीर होते हुए भी गुरु तत्व है, संसार की सबसे पवित्र ईश्वरीय देन है। वो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के अंध तमस को दूर कर उसे दिव्य प्रकाश देता है। गुरु के बिना मनुष्य का जीवन बिना पतवार की नौका के समान होता है। गुरु के बिना ज्ञान मिलना कठिन है। गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता। गुरु के बिना सत्य को पहचानना असंभव है। गुरु बिना मन के विकारों का मिटना मुश्किल है। लौकिक जगत में महापथ का पथिक गुरु धार्मिकता का प्रथम पुरुष होता है, जो अपने दिव्य ज्ञान से शिष्य के अंतःकरण के तारों को झंकृत कर मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है। गुरु शिष्य की हर उलझीवी समस्या का समाधान करता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ उपदेश दिया, बल्कि हर उस वक्त उन्हें उचित निर्देश दिया जब जब वे दिग्भ्रमित नजर आए। गुरु के मुख से निकला हर शब्द ब्रह्म होता है, जो सत्य की गहराई से निकलता है। अपनी महत्ता के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा पद दिया गया है। शास्त्रों में गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया क्योंकि वो शिष्य को नया जन्म देते हैं। गुरु विष्णु भी हैं क्योंकि वो शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरु साक्षात महेश्वर भी हैं क्योंकि वो शिष्य के सभी दोषों का संहार करते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि गुरु के प्राण शिष्यों में और शिष्यों के प्राण गुरु में बसते हैं। गुरु मानव चेतना के विकास के हर एक पहलू को जागृत करता है। शिष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है। एक संबुद्ध गुरु को यदि एक चेतनावान शिष्य मिल जाए तो वो अपने परम संबोधि के विस्फोट से नए युग का निर्माण कर सकता है। शिष्य के सदा के बंद द्वार खोल सकता है। उसके जीवन में एक नया संगीत भर सकता है। आज के समय में एक बार पुनः गुरु शिष्य परंपरा की अनंत श्रृंखला को कायम रखने की महती आवश्यकता है। यदि सही गुरु मिल जाए तो जीवन की दिशा सुधारी जा सकती है।
1: आप सुन रहे थे आज का चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का था। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आराधना। पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

हरि ओम शरण के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता के गंगा तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचने का समाचार सुनकर निषाद राजगुह के हर्ष की सीमा न रही। अपने प्रियजनों तथा भाई बंधुओं को एकत्रित कर भेंट देने के लिए फल मूल आदि बहंगियों में भर भर कर वो सदल बल श्री राम से मिलने चला। राम ने उसे आत्मीय की भांति पास बिठाकर उसकी कुशलक्षेम पूछी। निषाद राज गदगद होकर बोला, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। यहां की धरती, धन संपत्ति और घर सभी आपके हैं। मैं तो परिवार के साथ आपका सेवक मात्र हूं। अब कृपा कर हमारे पूर्वे में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। श्री राम ने उत्तर दिया, हे सुजान सखा, तुमने जो कहा वो तुम्हारे स्नेह का द्योतक है, किंतु पिता ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। मुझे 14 वर्षों तक मुनिवेश और व्रत धारण करके उन्हीं सरीखा भोजन करते हुए वन में ही निवास करना है। एक तापस का गांव में रहना उचित नहीं है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता का तापस वेश देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम विह्वल हो रहे हैं। वो उन माता पिता की कठोरता से क्षुब्ध हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमारों को वनवास दिया है।

7:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत का सुबह सुरीली। 7:45 पर होगा खुला आकाश। आज आप सुनेंगे मनीषा कुमारी की वार्ता, खेल से सशक्त समाज और विश्व शांति। 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। इन्हें रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। हमारे स्थानीय केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 8:30 पर। 8:45 पर लोक रंग में आज आप सुनेंगे केतकी देवी और साथियों से कुछ नागपुरी लोकगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन होगा 9:00 और 9:30 से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। दस बजे का समय होगा आओ साथ चलें कार्यक्रम के लिए। इसमें आज चर्चा होगी सरकारी योजनाएं बदलाव की नई उम्मीद। प्रस्तुति स्वर होगा सिंधु मिश्रा का, प्रस्तुति एवं संयोजन गौरव कुमार पांडे का। 10:30 से आप सुनेंगे हमारा दैनिक प्रसारण जोहार रांची। 11:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। 12:00 महिलाओं को संबोधित होगा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। 12:30 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत। दिन के 1:00 हिंदी में समाचार होंगे और 1:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इन्हें रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। 11:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर होगा उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार होंगे आनंद कुमार आनंद। समय होगा 1:45। 2:00 मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। जय भारती कार्यक्रम होगा 2:30 पर और 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 3:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 3:30 पर आप सुनेंगे रांची मेलोडीज और 4:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। श्रोताओं, ये था हमारे आज के प्रसारण का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिसे रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: स्वकीयान् विचारान् विनिमयिष्यति। अस्य मासिक श्रव्य कार्यक्रमस्य अयं 37.1%तमो भागो भविता। जनाः निःशुल्क दूरभाष संख्यायाः 1800111700 इति माध्यमेन अस्य कार्यक्रमस्य कृते स्वकीय परामर्शान् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। जनाः तावत् नरेन्द्र मोदी एप इत्यस्य अथ च MyGov इति मुक्त मञ्चस्य अन्तर्जालीय माध्यमेन च स्वकीय परामर्शान् दातुं शक्नुवन्ति। अस्य आगामिनः भागस्य कृते परामर्शाः अस्य मासस्य 24 दिनाङ्कं यावत् स्वीकरिष्यन्ते। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य गान्धीनगरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी APMC इत्यस्य अमृत महोत्सवावसरे नूतनस्य शाक उपविपणन केन्द्रस्य उद्घाटनं विधास्यति। सहकारिता मन्त्रालयानुसारं अस्मिन् कार्यक्रमे श्रीशाहः एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानान्तर्गतं पादपारोपणं विधास्यति। सहैव APMC संस्थायाः अमृत महोत्सवस्य संस्मरणाय संकलितां एकां स्मारक पुस्तिकां विमोचयिष्यति। अत्रावधौ श्रीशाहः दहेगाम APMC परिषदः सदस्यैः सह अपि वैचारिक विमर्शं साधयिष्यति। गतदिने ओमान तटे भारतीय नाविक युक्ते GFS गैलेक्सी इत्याख्ये वाणिज्यिक पोते आक्रमणात् परं नवदिल्ल्या पश्चिमेशिया क्षेत्रे उत्पातस्य शमनाय स्वकीयम् आह्वानं पुनः प्रतिपादितम्। आक्रमणस्य तीव्र निन्दां कुर्वता विदेश मन्त्रालयेन निगदितं यत् पोते स्थितेषु 11 भारतीय नागरिकेषु 10 नागरिकाः एतावता सुरक्षिततया निष्कासिताः, अपरत्र एकः नाविकः अधुनापि विलुप्तः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं करोति। सहैव प्रचलत्सु रक्षाकार्येषु ओमान देशस्य प्राधिकारिभिः साकं सक्रिय समन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत्सु निरन्तर आक्रमण प्रसंगेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्य अस्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ 12:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत

0: महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। इन तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वो डूबेगा या उल्टेगा नहीं। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरणवीराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा में आइए आज जानकारी प्राप्त करते हैं सफेद दाग के बारे में। इस भेंट वार्ता के माध्यम से भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और उनसे बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
2: मित्रों, जब शरीर व्याधि मुक्त होता है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसी शरीर पे कुछ दाग धब्बे निकल आते हैं तो फिर हम चिंता का शिकार हो जाते हैं, मन कुंठित होने लगता है। तो शरीर के जो धब्बे हैं, हमारा इशारा सफ़ेद दाग की ओर है। यदि हो जाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई मन में भ्रांतियाँ नहीं पाले। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि सफ़ेद दाग क्यों हो जाता है, लोगों में जो गलत अवधारणा है इसे मन से निकालने की ज़रूरत है और चिंता मुक्त रहना है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं रिम्स रांची के हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्किन और वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्र। सर, स्वागत है।
3: जी, धन्यवाद।
2: सर, आज विश्व सफ़ेद दाग दिवस है, क्या कहेंगे लोगों से कि इस बीमारी के प्रति लोगों में गलत धारणा है, यदि इस बीमारी से वो ग्रसित हो जाते हैं तो वो हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, ऐसा होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।

0: बिल्कुल सही कहा आपने। हर वर्ष 25 जून का जो दिन है, उस दिन हर वर्ष विश्व सफ़ेद दाग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम जानते हैं कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बाहरी आवरण है। अंदर में कोई पीड़ा है, लीवर खराब है, किडनी खराब है, सामने दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन त्वचा पर अगर कुछ धब्बे आ जाएं, चाहे कालीमा आ जाए या सफ़ेद धब्बे आ जाएं, किसी तरह के विकृति, तो साफ साफ वो दिखने लगते हैं धब्बे, और इस जिसके चलते वो व्यक्ति घबरा जाता है कि लोग हमको देखकर क्या सोच रहे होंगे, चिंता का विषय यही हो जाता है। तो अब जैसे सफ़ेद दाग की एक बीमारी होती है, उसमें क्या है कि त्वचा पर बिल्कुल ही सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं, पूरा सफ़ेद, कोई उसमें संशय नहीं कि ये उजला है, सफ़ेद है, बिल्कुल सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं। हो सकता है वो चेहरे पर भी आ जाए, यानी दिखाई पड़ने वाले स्थलों पर आ जाए जो कि सामने से दिख रहा हो, तो इसमें व्यक्ति घबरा जाता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हम कैसे इस गोष्ठी में जाएं, कैसे लोगों के बीच में जाएं, जहां 10 लोग बैठे हैं बात कर रहे हों, हम कैसे जाएंगे, चिंता का सबब यही हो जाता है, जिसको हम लोग सफ़ेद दाग कहते हैं हिंदी में और मेडिकल भाषा में विटिलाइगो बोलते हैं। तो अब देखिए कि 25 जून को आखिर इतना महत्व क्यों दिया गया कि हम सफेद दाग के बारे में बताएं, जन जागरण करें, इनकी भ्रांतियों को दूर करने के उपाय बताएं। तो इतना महत्वपूर्ण है कि आप माइकल जैक्सन का नाम सुने होंगे, कि बहुत बड़ा पॉप स्टार थे, डांसर थे, सिंगर थे, तो उनको सफेद दाग था, सोच लेना है। और सफ़ेद दाग के रहते हुए वो किस ऊंचाई तक जीवन में पहुंचे अपने कारनामों से, अपने कला कौशल के बल पर, बिना प्रभावित हुए, बिना मानसिक कुंठा लिए हुए वे आगे बढ़ते रहे, तो इससे ये संदेश गया कि सफ़ेद दाग कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे घबराने की ज़रूरत है, बल्कि अपना मनोबल और हौसला कायम रखें और वो हर काम आप कर सकते हैं जो दूसरे लोग कर सकते हैं। इसीलिए 25 जून, चूँकि माइकल जैक्सन के निधन का दिन है, उसी दिन उनका निधन हुआ था, तो उनकी स्मृति में एक रख दिया गया है पूरे विश्व में कि हम लोग हर वर्ष 25 जून को सफ़ेद दाग के बारे में जागरण करेंगे, लोगों को बताएंगे कि इससे घबराना नहीं है, कैसे होती है बीमारी, कैसे चिकित्सा होती है, और मानसिक कुंठा में नहीं जाना है। इसीलिए 25 जून को विश्व सफ़ेद दिवस मनाया जाता है।
1: ऐसे लोग जिनको ये बीमारी हो गई है, उन्हें कुंठा से ग्रसित नहीं होना है। समाज में गलत भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं, लोग कुंठा का शिकार हो जाते हैं, जैसे आपने बताया, तो ये बीमारियाँ का इलाज किस प्रकार किया जाए, यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो क्या सावधानियाँ रखें, और दूसरी बात कि ये बीमारियाँ जब आपको हो जाती है तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई आपको परहेज करना है, ना आपकी जान जानी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो इसको सच पूछिए तो बीमारी में हम लोग नहीं गिने तो ज़्यादा अच्छा। अब तो बताते हैं मरीजों को कि इसको बीमारी समझिए ही नहीं, कुछ नहीं, बस एक सफ़ेद हो गया है, रंग सफ़ेद हो गया ना, वहाँ जो जिस रंग का निर्माण होता है, सामान्य रूप से त्वचा में जो रंग मौजूद रहता है जिसे मेलानिन कहते हैं, उसका बनना थोड़ा कम हो जाता है, उसमें उसकी जो कोशिकाएं हैं जो रंग बनाती हैं, और थोड़ी क्षति कोशिकाओं को पहुंचती है अंदरूनी कारणों से। कोई फैलने वाली भी बीमारी ये नहीं है कि किसी को हो गया, उसके संसर्ग में कोई आ रहा है तो एक से दूसरे में फैल रही है बीमारी, संक्रामक बीमारी भी नहीं है, छूत से फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो रंग बनना केवल वहाँ कम हो जाता है या कुछ कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त होती हैं जिसके चलते ये होता है। तो आनन फानन में कहीं इधर उधर इलाज नहीं कराना चाहिए, कोई हर्बल दवा या देहाती दवा या कुछ और भी नुकसान करने वाली दवा का लेप नहीं लगाना चाहिए, किसी नीम हकीम के पास नहीं जाना चाहिए घबरा कर, नहीं तो जो नहीं है और भी वहाँ बीमारी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मन में ये धारणा कभी न लाया जाए कि हमको लोग देख रहे हैं तो देख कर क्या सोचेंगे, इसको तो भयंकर कुष्ठ रोग हो गया है, इसको तो बहिष्कार करना चाहिए, इसके पास नहीं जाना चाहिए। तो यही तो समझने की बात है कि ये फैलने वाली बीमारी नहीं है और ये कोई कुष्ठ रोग भी नहीं है। कुष्ठ रोग तो एक जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया से होता है वो कुष्ठ रोग, और वो भी कुष्ठ रोग रहता है तो उसका भी इलाज संभव है। इसलिए कुष्ठ रोग का नाम देकर के घबराने की जरूरत नहीं है, ये सफ़ेद दाग सिर्फ है जहाँ पर रंग केवल कम हो गया है, और ये इलाज से ठीक होता है, ऐसा भी नहीं है कि लाइलाज है। हाँ ये बात सही है कि कई कई रूप में यह बीमारी आ सकती है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग रूप लेती है। किसी को एक दो धब्बा होकर रह गया, किसी को बहुत सारे धब्बे हो गए, कोई चिकित्सा से जल्दी ठीक हो जाता है, कोई देर से ठीक होता है, किसी किसी का कभी कभी क्या होता है कि पूरा ठीक हो जाता है लेकिन दोबारा फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद होने लगता है। तो हर दशा में घबराने की जरूरत नहीं है, चिकित्सक के पास जाइए, वही बताएंगे क्या उपाय करना है। और अगर एक दवा चलाने से ठीक हो गया फिर आ रही है बीमारी, तो हम लोग फिर दूसरी तरह की दवाएं देते हैं उसमें, और साथ ही साथ सतर्क रहते हैं कि इसका जो साइड इफेक्ट दवाई का हो सकता है उससे भी कैसे हम मरीज को बचाएं। तो समाज में हम यही देखते हैं कि जिसको भी सफ़ेद दाग हो गया लोग उससे मिलने से कतराने लगते हैं, संपर्क बनाने से कतराने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके घर के किसी व्यक्ति से, लड़के लड़की से शादी वाला संबंध रखने में भी लोग कतराते हैं, हिचकते हैं। तो यही गड़बड़ बात है। हमें तो वैसे मरीजों को और भी सहानुभूति देना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए और उन्हें सही चिकित्सा के लिए सही चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि ये शादी विवाह जो सोचते हैं लोग कि ना करें, हाँ वो भी गलत बात है, ये भी भ्रांति एक है। कभी कभी ऐसा होता है कि शायद एक आध व्यक्ति को उस परिवार में होने लगे, वरना किसी को भी हो सकती है ये बीमारी। और सचमुच तो बीमारी ये तो है नहीं, बस केवल धब्बा दिखता है, और उसका भी इलाज संभव है।
1: कोई भी सफेद दाग क्या सफेद दागी है?
0: बिल्कुल सही सवाल आपका है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सफ़ेद दाग के नाम से जो बीमारी जानी जाती है ना, वो बिल्कुल ही सफ़ेद, बिल्कुल ही वाइट दिखता है। लेकिन अन्य बीमारियां भी हैं जो सफ़ेद दाग के रूप में हल्का सफ़ेदी लिए हुए वो तो उत्पन्न होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आम भाषा में जिसको आप सिहुली की बीमारी कहते हैं, वो फंगस से होता है। तो छोटे छोटे छोटे छोटे धब्बे हल्का हल्का सफ़ेद रंग के लिए हुए वो आते हैं, उनका पूर्ण इलाज संभव उनका भी है। छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे कि गाल पे सफ़ेद दाग आ जाते हैं, जिनको कि रुस्सी भी रहता है, सिर में ज़्यादा डैंड्रफ रहता है, ऐसे बच्चों को गाल पर सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं। तो ये आम बीमारियाँ हैं शिशुओं की, बच्चों की, जो धीरे धीरे चली जाती हैं, केवल उस पर कुछ मॉइस्चराइजर फेस पर लगाने के लिए हम लोग देते हैं। तो ये हो गया। और ऐसे तो एक कालाजार की बीमारी है जो आप देखेंगे उत्तर बिहार में कालाजार बहुत ज़्यादा होता है, एक प्रकार के मच्छर काटने से होता है। तो कालाजार की जब चिकित्सा ठीक से नहीं हो पाती है तो उसमें भी सफ़ेद दाग उत्पन्न हो जाते हैं त्वचा पर। तो ऐसी कई बीमारियाँ हैं जिनसे ये संदेह होता है कि सफ़ेद दाग वाली ही बीमारी है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि अपने से इलाज नहीं करना है, फैसला नहीं लेना है, उचित चिकित्सक के पास ले जाएं, वो बताएंगे सफेद दाग है या नहीं है, और उसका भी इलाज संभव है।
1: बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये कोई बीमारी इसको हम नहीं मानते,
0: बिल्कुल
1: नहीं, और बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है। और जो मन में गलत धारणा निकल कर सामने आती है उससे दूरियां बनाइए, खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, जिंदा दिल बनिए और जिंदगी को हंसते मुस्कुराते हुए निकालिए।
0: बस आपने सही कहा, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई जानमारू बीमारी तो है नहीं, बीमारी तो है ही नहीं। अगर है भी तो चलिए धब्बा है, जानमारू बीमारी है नहीं ना, तो इसमें आपका लीवर खराब हो रहा है, ना किडनी खराब हुआ है, ना कोई हार्ट की बीमारी है, कोई सीरियसनेस, कोई गंभीरता की बात बिल्कुल नहीं है, ना कोई परहेज करना है। और जैसा कि हमने नाम गिनाया कि सफ़ेद दाग है, तो एक और मैं मॉडल का नाम गिनाऊंगा, वो कनाडा की मॉडल है विटनी ब्राउन। वो देखिए फैशन वाले काम में पूरा आगे बढ़ रही है, वो जो मॉडल बोलते हैं मॉडल काम करी और पूरा वो शख्सियत बन गई है, पूरी मशहूर हो गई है। तो बस मनोबल कायम रखें कि मुझे कुछ भी नहीं है, कोई खतरा इस बीमारी से नहीं है, और आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, जीवन में किसी भी सफलता की चोटी तक पहुंच सकते हैं, यही मेरा संदेश है।
1: और दाग तो चांद पे भी है, लेकिन चांद हमेशा अपनी रोशनी बिखेरता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्र साहब, आज आप ऐसे कार्यक्रम में आए। और मित्रों, रोज की तरह हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा। नमस्कार
0: जी, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आज आपने जानकारी प्राप्त की सफेद दाग के बारे में, जिसे बता रहे थे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और उनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। और इसके साथ ही स्वास्थ्य चर्चा यहीं समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सुरीली। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का ये गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुरीली आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं देख कबीरा रोया में मन्ना डे को। शब्द हैं राजेंद्र कृष्ण के और संगीत मदन मोहन का।

और अब आइए सुनते हैं फिल्म जेलर में लता मंगेशकर को। शब्द एक बार फिर राजेंद्र कृष्ण के हैं, संगीत एक बार फिर मदन मोहन का।

अनपढ़ फिल्म का ये नगमा है, राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

एक महल हो सपनों का। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर के बोलों को सुरों में ढाला है रवि ने।

और अब आइए सुनते हैं फिल्म संजोग का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। बोल है राजेंद्र कृष्ण का और संगीत मदन मोहन का।

0: फिल्म संजोग के लिए लता मंगेशकर के गाए इसी नगमे के साथ कार्यक्रम सुबह सुरीली यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। खुला आकाश में आइए सुनते हैं मनीषा कुमारी की वार्ता, खेल से सशक्त समाज और विश्व शांति। प्रस्तुति है प्रभु शरण की।
1: जीवन को गहराई और नई ऊर्जा देने वाला खेल व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और उसे स्वस्थ, अनुशासित तथा सकारात्मक बनाता है। व्यस्त जीवन में जहां तनाव और मतभेद बढ़ रहे हैं, वहां खेल एक नई राह दिखाता है। यह सिर्फ शरीर को फिट रखने का तरीका नहीं है, बल्कि मन, विचार और व्यवहार को बेहतर बनाने की प्रक्रिया भी है। खेल हमें अनुशासन, धैर्य, समर्पण, सहयोग और सहनशीलता जैसे गुण सिखाता है और ये सभी गुण न सिर्फ व्यक्तिगत विकास में मदद करते हैं बल्कि पूरे समाज को मजबूत बनाते हैं। इतिहास देखे तो खेल हमेशा से समाज को जोड़ने का काम करता आया है। कोई भी खेल प्रतियोगिता सिर्फ जीत हार नहीं होती, इसमें अलग अलग संस्कृति, भाषा और परंपरा वाले लोग एक साथ आते हैं। मैदान पर सबकी पहचान सिर्फ खिलाड़ी की होती है, इसमें भारत की पुरातन भावना वसुधैव कुटुंबकम जीवंत हो जाती है, जहां पूरी दुनिया एक परिवार

की तरह जुड़ती है। भारत में खेल समाज को सशक्त बनाने में बहुत योगदान देता है। विभिन्न राज्य, जाति, धर्म और भाषा के लोग एक टीम में खेलते हैं तो भेदभाव की दीवारें टूट जाती है। इसमें आपसी समझ बढ़ती है और सहयोग की भावना मजबूत होती है। खेल हमें सिखाता है कि समय का सम्मान करें और लक्ष्य पर अडिग रहे। ये आदतें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। हार को अंत नहीं मानना चाहिए, ये तो सीखने का मौका है। कई खिलाड़ी सीमित संसाधन के बावजूद विश्व स्तर पर सफल हुए हैं और इससे यह पता चलता है कि खेल व्यक्ति को आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी बनाता है। खेल सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी तक सीमित नहीं है, यह एक भावना और जीवन शैली है। जीत और हार दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही सच्ची खेल भावना है। इसमें सामाजिक समरसता और बंधुत्व बढ़ता है। मैदान पर अमीर गरीब या ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता, वहाँ सिर्फ परिश्रम और प्रतिभा मायने रखती है। यही सोच समाज में समानता लाती है। महिलाओं के लिए खेल बहुत बड़ा माध्यम है। कई महिला खिलाड़ियों ने साबित किया है कि वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। खेल से उन्हें आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता मिलती है। इससे समाज में महिलाओं के प्रति नजरिया भी बदलता है। आधी आबादी को सशक्त बनाने में खेल लगातार अपना योगदान दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ खेल नई उम्मीद जगाता है। गांव से निकलकर युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इससे साफ है कि प्रतिभा किसी खास वर्ग तक सीमित नहीं है। सही अवसर और सुविधा मिले तो ग्रामीण बच्चे भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जब युवाओं को संसाधन मिलते हैं तो वे किसी भी मंच पर अपनी क्षमता को दिखा देते हैं। सशक्त समाज सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता, उसे शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से भी समृद्ध होना पड़ता है। खेल इन तीनों क्षेत्रों में मजबूती देता है। नियमित खेल से शरीर स्वस्थ रहता है, मन संतुलित रहता है और लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। बच्चे और युवा खेलते हैं तो उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है, वे अनुशासन सीखते और नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहते हैं। आजकल युवा घंटों मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, जिससे मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग बढ़ रहे हैं। खेल इन समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है, मांसपेशियां मजबूत होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। खेल मन को भी मजबूत बनाता है और हार से सीखना और जीत में विनम्र रहना जीवन का सबसे बड़ा सबक है। अनुशासन की आदतें व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक बनाती है। सुबह अभ्यास, समय पर मैदान पहुंचना और नियमों का पालन करना ही सफलता की कुंजी है। जब लाखों युवा अनुशासित होंगे तो समाज में अपराध कम होंगे, उत्पादकता बढ़ेगी और विकास तेज होगा। खेल धैर्य सिखाता है। हर हार कुछ नया सिखाती है। असफलताएं अंत नहीं, नई शुरुआत है। टीम खेल जैसे फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में एक खिलाड़ी अकेला कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर काम करना पड़ता है। यही भावना समाज में सहयोग बढ़ाती है और चुनौतियों को आसान बनाती है। खेल बच्चों की प्रतिभा को उभारता है और उन्हें दौड़ने और कूदने का मौका देता है। इससे उनकी सेहत अच्छी रहती है और टीम भावना विकसित होती है। युवाओं को नशा, अपराध और डिजिटल आदतों से बचने में खेल सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और हिंसा कम होती है। स्कूल कॉलेज में सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है, जीवन में कौशल भी जरूरी है। खेल इन कौशलों को विकसित करता है। स्थानीय टूर्नामेंट और सामुदायिक कार्यक्रम लोगों को जोड़ते हैं, संवाद बढ़ता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, इससे सामाजिक एकता बढ़ती है। खेल राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। खेल सामग्री, कोचिंग, खेल प्रतियोगिता आयोजन और पर्यटन जैसे क्षेत्र रोजगार देते हैं। इससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है। आज भारत में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सरकार की योजनाएं जैसे खेलो इंडिया में लाखों बच्चों को खेल की ओर आकर्षित किया है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक ऊर्जा और आर्थिक पुरस्कार भी

0: देशों के खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं तो वे एक दूसरे की संस्कृति और विचार समझते हैं। इससे सम्मान और विश्वास बढ़ता है जो शांति के लिए जरूरी है। दुनिया में कई भाषाएं एवं संस्कृतियां हैं, लेकिन खेल सभी को जोड़ता है। दो देश मैदान में उतरते हैं तो युद्ध नहीं बल्कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। उद्देश्य सिर्फ बेहतर प्रदर्शन होता है। बड़े आयोजन जैसे ओलंपिक और विश्व कप में पूरी दुनिया एक साथ आती है। खिलाड़ी संस्कृतियों को समझते हैं और सकारात्मक संदेश ले जाते हैं। इससे देशों के बीच तनाव कम होता है और नए रिश्ते बनते हैं। राजनीतिक मतभेद वाले देश भी खेल से करीब आ जाते हैं। खेल अनुशासन और समानता से विश्व शांति लाता है। खेल सिखाता है कि प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैच के बाद हाथ मिलाना यह बताता है कि मुकाबला मैदान तक सीमित है, दिलों में कड़वाहट नहीं। खेल सांस्कृतिक आदान प्रदान भी करता है। खिलाड़ी एक दूसरे की भाषा, भोजन और रीति रिवाज समझते हैं। जर्सी पर सिर्फ देश का नाम होता है। खेल सार्वभौमिक भाषा है जिसे बिना अनुवाद के भी सभी समझते हैं। दुनिया के कई हिस्से युद्ध और तनाव से जूझ रहे हैं, लेकिन खेल सम्मान का मंच है। जहां बंदूक और कूटनीति काम नहीं करती, वहां एक गेंद या दौड़ चमत्कार कर देती है। खेल देशों की कड़वाहट कम करने का सॉफ्ट पावर है। ओलंपिक खेलों का सबसे बड़ा उदाहरण है। हर 4 साल बाद दुनिया के सभी देश एक जगह इकट्ठे होते हैं। राष्ट्रगान गूंजता है, खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाते हैं। इससे पता चलता है कि प्रतिस्पर्धा के बावजूद सम्मान बनाए रखना जरूरी है। इससे कूटनीति रिश्ते भी बेहतर होते हैं। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जेसी ओवेंस ने हिटलर की नस्ली श्रेष्ठता की धारणा तोड़ी। एक अफ्रीकी अमेरिकी एथलीट ने 4 गोल्ड मेडल जीतकर साबित किया कि प्रतिभा किसी नस्ल पर निर्भर नहीं है। इसने विश्व को संदेश दिया कि खेल में कोई ऊंच नीच नहीं। फीफा विश्व कप सिर्फ फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं है, यह वैश्विक एकता का उत्सव है। अलग अलग देश अपनी टीमों का समर्थन करते हैं, लेकिन सम्मान बनाए रखते हैं। इससे संस्कृतियों के बीच समझ एवं सद्भाव बढ़ता है। पैरालंपिक खेलों ने दिव्यांगों के प्रति नजरिया बदला, उन्हें सम्मान अवसर का अधिकार दिया और वे सशक्त बनाया। 1971 की पिंग पोंग कूटनीति एक खूबसूरत उदाहरण है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव था, लेकिन टेनिस खिलाड़ियों के आदान प्रदान ने संबंध सुधार किए। खेल ने वह काम किया जो राजनीतिक बातचीत नहीं कर पाई। कई बार खेल ने देशों के मतभेद कम किए। विवाद वाले देशों के खिलाड़ी मैदान पर कड़ा मुकाबला करते हैं, लेकिन मैच खत्म होने पर दोस्त बन जाते हैं। यही खेल भावना है। कुल मिलाकर खेल सिर्फ दौड़ कूद नहीं है, यह जीवन का उत्सव है जो सिखाता है कि संघर्ष में मुस्कुराना, हार में आगे बढ़ना और जीत में विनम्र रहना कैसे सीखे। खेल का मैदान जीवन का छोटा संसार है जहां नियम, अनुशासन और सहयोग सबसे ऊपर है। खेल समाज को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत बनाता है या विश्व में शांति की नींव रखता है। अगर हम सशक्त समाज और शांतिपूर्ण विश्व चाहते हैं तो खेल को खुले दिल से अपनाना होगा। खेल भावना को जीवन का हिस्सा बना ले तो युद्ध की जगह प्रतियोगिता आएगी और घृणा की जगह स्वस्थ मुकाबला। खेल में वह शक्ति है कि पूरी दुनिया को बदल सकती है।
1: खेल से सशक्त समाज और विश्व शांति। अभी आप सुन रहे थे मनीषा कुमारी की ये वार्ता, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की, और इसके साथ ही खुला आकाश यहीं समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
3: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में

0: शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीक

0: की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। रिपोर्ट।
2: भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपये, राजगीर के लिए 4000 रूपये, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपये और कैमूर के लिए 6000 रूपये में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित

0: करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मूज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। 2 न्यू एंटी क्राइम लॉज पास्ड बाय वेस्ट बंगाल असेंबली कम इनटू फोर्स इन द स्टेट टुडे। ISRO successfully carries out 3 major tests of Gaganyaan crew module systems. 5 Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number 1 rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And now the news in detail. In West Bengal, 2 new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor R.N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the Stringent Anti-Crime Bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
3: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odhikari has earlier stated that violence or disruption of public order in the name of protest will not be tolerated. He also expressed hope that the new law will play an important role in ensuring the safety and security of women and children. Shandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: The Indian Space Research Organization says it has successfully carried out

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न विभागों की करेंगे समीक्षा। आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्य प्रगति का लेंगे लेखा जोखा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने देवघर सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। श्रावणी मेले से पहले सभी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का दिया निर्देश। चक्रधरपुर आद्रा रेल मंडल में आज से 19 जुलाई तक चलेगा रोलिंग ब्लॉक कार्य। कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई के मार्ग में बदलाव। आज और कल राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता में रामगढ़ को हराकर रांची की टीम बनी चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। इस संबंध में जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा होगी। 15 जुलाई को पथ निर्माण विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा होगी। देवघर श्रावणी मेले से पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने देवघर सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को श्रद्धालुओं और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
2: श्रावणी मेला का आप समीक्षा करेंगे, तैयारी करेंगे, तो उसमें हम एमसी डायरेक्टर को बुलाएंगे। श्रावणी मेला को देखते हुए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हॉस्पिटल कोई राजनीतिक अड्डा नहीं है और जिस तरह से कुछ नेताओं ने तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना दिया है, जहाँ मैं हिदायत दे रहा हूँ अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहाँ होगा तो मैं उसमें बताना मानूंगा। श्रावणी मेला का आप समीक्षा करेंगे।
1: गोड्डा शहर के करगिल चौक स्थित आभूषण दुकान में हुई लूट और गोलीबारी की घटना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसपी मुकेश कुमार ने मामले के जल्द खुलासे का दावा किया है। वहीं श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: हम इतना जानते हैं कि हमको अपराध मुक्त कोटा चाहिए और जो भी सामान ले गया और जिस तरह से भय वातावरण फैलाया है, पुलिस अपना काम कर रही है और हम लोग उसको सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अपराधी मारे भी जाएंगे और जब मारे जाएंगे निश्चित रूप से भय मुक्त होगा, अपराध मुक्त होगा।
1: रांची जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत कल शाम 4 बजे तक लगभग 74% एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण और 24% फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 96% फॉर्म का वितरण तथा 34% फॉर्म का डिजिटाइजेशन दर्ज किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर्स को 100% फॉर्म वितरण, संग्रहण तथा समयबद्ध डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने और मतदाताओं से शीघ्र फॉर्म जमा करने की अपील की है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में आज से 19 जुलाई तक इंजीनियरिंग, TRD तथा सिग्नल और दूरसंचार विभाग की ओर से संयुक्त रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान रेलवे ट्रैक और ओवरहेड उपकरणों के रखरखाव तथा आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा। ब्लॉक के कारण कई मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनों के परिचालन में आंशिक बदलाव और समय परिवर्तन किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। आद्रा मंडल के इस रोलिंग ब्लॉक का असर बोकारो, पुरुलिया, आसनसोल, टाटानगर, महुदा और आसपास के रूटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X handle @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वे नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS में प्राप्त लिंक का अनुसरण कर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को भारतीय महिला हॉकी टीम द्वारा हस्ताक्षरित हॉकी स्टिक भेंट की है। भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर वाली हॉकी स्टिक न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी महिला नेशंस कप में टीम की ऐतिहासिक जीत की स्मृति है। सिमडेगा जिले में पुलिस को दोहरी सफलता मिली है। कोलेबिरा थाना की पुलिस ने गोवंशीय पशुओं की तस्करी के लिए रेकी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। SDPO DD पासवान ने बताया कि बांसजोर क्षेत्र में ताजा गांजा तस्करी के मामले में फरार आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है।
4: एक बस से गांजा बरामद किया गया था जिसमें एक पकड़ा गया था और दो फरार हो गया था, जिसे गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है संतोष नायक सोना। ये उड़ीसा के कंधमाल जिला का रहने वाला है। गोवंशीय पशु को पार करने के लिए तार से पुलिस की गतिविधि पता लगाया जा रहा है। उसमें दो आदमी को गिरफ्तार किया गया है।
1: मौसम विभाग ने आज और कल

0: राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताते हुए 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को गरज चमक के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा किसानों को मौसम को ध्यान में रखकर कृषि कार्य करने की सलाह दी है। उधर गुमला जिले में वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। झारखंड राज्य खो खो संघ के तहत राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता का आयोजन रजरप्पा के डीएवी ग्राउंड में किया गया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का फाइनल मेजबान रामगढ़ और रांची के बीच खेला गया, जिसमें रांची की टीम चैंपियन बनी। मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक ममता देवी ने पुरस्कार वितरण किया और कहा कि ऐसे आयोजनों से इस खेल को बढ़ावा मिलेगा।
1: रांची की टीम विजेता रही और मैं उन टीमों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। सभी बच्चों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन जब भी कोई गेम होता है तो उसके 2 पहलू होते हैं, जिसमें कि एक हारता है और एक जीतता है। तो मेरी ओर से जितने भी उप विजेता टीम है, विजेता टीम है, सभी को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देती हूँ। उनके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं।
0: रांची में आयोजित प्रथम झारखंड राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का समापन कल विभिन्न आयु वर्गों और पुरुष एवं महिला वर्ग के फाइनल मुकाबलों तथा पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मध्य पूर्व में युद्ध की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। प्रभात खबर ने लिखा है, 15 अगस्त को 25,000 नियुक्तियों की घोषणा कर सकती है सरकार। झारखंड में कक्षा 6 से 12वीं तक बढ़ा नामांकन अनुपात, इस खबर को दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार वर्ल्ड रैंकिंग की 4 टीमें एक साथ सेमीफाइनल में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न विभागों की करेंगे समीक्षा। आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्य प्रगति का लेंगे लेखा जोखा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने देवघर सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। श्रावणी मेले से पहले सभी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का दिया निर्देश। चक्रधरपुर आद्रा रेल मंडल में आज से 19 जुलाई तक चलेगा रोलिंग ब्लॉक कार्य। कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई के मार्ग में बदलाव। आज और कल राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता में रामगढ़ को हराकर रांची की टीम बनी चैंपियन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज अब FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय आप सुन रहे हैं प्रसारण मीता के साथ।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। लोक रंग में आइए आज सुनते हैं केतकी देवी और साथियों से कुछ नागपुरी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे केतकी देवी और साथियों से कुछ नागपुरी लोकगीत, और इसके साथ ही लोकरंग कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। इस कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मिली से। स्वर है किशोर कुमार का, शब्द हैं योगेश के और संगीत एसटी बर्मन का।

0: अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में फिल्म नया जमाना का ये गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और जिसकी धुन तैयार की थी एस डी बर्मन ने।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
5: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंजन आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे 1947 अर्थ का ये गीत सुखविंदर सिंह श्रीनिवास और साथियों की आवाजों में। शब्द थे जावेद अख्तर के और संगीत एस ए आर रहमान का।

देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म राजकुमार का ये गीत, मोहम्मद रफी की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल थे और संगीत था शंकर जय किशन का। और अब आइए सुनते हैं जिंदगी जिंदगी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, बोल है आनंद बख्शी के और उसे सुरों में ढाला है SD बर्मन ने।

आइए सुनते हैं एक बार फिर किशोर कुमार को फिल्म फंटूस के लिए। इस गीत को लिखा है साबिर ने और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

आप सुन रहे थे फंटूश फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, और इसके साथ ही कार्यक्रम रसरंजन यहीं समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे सारंगी वादन। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें। आज इस कार्यक्रम में आप जानकारी प्राप्त करेंगे, सरकारी योजनाएं बदलाव की नई उम्मीद इस विषय पर चर्चा होगी और भेंटवार्ता सुनेंगे विकास की राह पर लौटते कदम। प्रस्तुति स्वर है सिंधु मिश्रा का, प्रस्तुति एवं संयोजन गौरव कुमार पांडे की।

कार्यक्रम आओ साथ चले में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वीकार करें कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, झारखंड शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। झार या झाड़, जो स्थानीय रूप में वन का पर्याय है, और खंड यानी टुकड़ा। हमारा यह राज्य मूलतः एक वन प्रदेश है। यहाँ की प्राकृतिक छटा बेहद सुंदर और मनोरम है। हरे भरे वनों से भरे पहाड़ और पठार, कई जलप्रपात, अभयारण्य, नहर एवं कई ऐसी जगह यहाँ देखने योग्य हैं। प्रचुर मात्रा में खनिज की उपलब्धता के कारण इसे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। हमारे झारखंड राज्य में कई ऐसे गांव हैं। विकास की प्रमुख योजनाएं उन गांवों और ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाई है जिसके वे हकदार हैं। आज सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने और इसे क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सी योजनाओं का लाभ लोग ले भी रहे हैं, परंतु इसके लाभ से वंचित बहुत से लोग जो अति पिछड़े क्षेत्रों के हैं, जागरूकता और जानकारी का अभाव आज भी इनमें देखा जा रहा है। श्रोताओं, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनकी वजह से हमारे भोले भाले भाई बहन आज बेरोजगारी की वजह से अपने गांव, अपने समाज से दूसरे क्षेत्रों, नगरों, महानगरों में रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। ऐसे लोग मानव तस्करी जैसी गंभीर समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। वहीं एक और गंभीर समस्या हमारे सामने नक्सलवाद के रूप में चुनौती बनकर खड़ी है। आज विकास की योजनाओं का लाभ जिन्हें नहीं मिल पा रहा, वे मजबूर होकर गरीब

0: भी अशिक्षा और बेरोजगारी की वजह से समाज की मुख्य धारा से भटक रहे हैं। श्रोताओं, बहुत सी सरकार की विकास हेतु कल्याणकारी योजनाएं लाई गई हैं, जैसे नरेगा के तहत डोभा तालाब का निर्माण, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गो पालन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान सरकार की ओर से अत्यंत पिछड़े एवं गरीब ग्रामीण भाई बहनों को दिए जा रहे हैं। रोजगार दिलाने हेतु कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कौशल विकास, इसके तहत अकुशल हुनरमंदों एवं जरूरतमंदों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वे स्वयं अपने पैरों पर पूरे आत्मसम्मान एवं आत्मबल के साथ खड़े होकर आत्मनिर्भर हो सके। साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरे और ये अपने परिवार, समाज एवं देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सके। श्रोता मित्रों, जब हम में आत्मविश्वास और जागरूकता की कमी आती है, तब हम में भटकाव देखने को मिलता है। समाज की मुख्य धारा से भटकाव, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इन्हें हम मान सकते हैं। साथ ही स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार जैसी बुनियादी सेवा के अभाव के कारण भी लोगों में भटकाव देखा जा रहा है। आज जो भाई बहन समाज की मुख्य धारा से भटक कर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और विभिन्न समस्याओं और यातनाओं को झेल रहे हैं, उनके लिए हमारी सरकार द्वारा समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने हेतु आत्मसमर्पण नीति बनाकर एवं कई लाभकारी योजनाओं से जोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसका अपेक्षित परिणाम देखने को मिल रहा है। समाज की मुख्य धारा से भटके हुए बहुत से लोग वापस आकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज के हमारे आओ साथ चलें कार्यक्रम में हमारी बातचीत समाज की मुख्य धारा से भटके हुए जो अब समाज की मुख्य धारा से जुड़कर परिवार, समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग कर रहे हैं, ऐसे ही एक व्यक्ति से हो रही है। तो आइए करते हैं बातचीत। आत्मसमर्पण कर चुके, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे एवं शांति में जीवन बिता रहे एक भाई से। सबसे पहले आइए इनका नाम जानते हैं। आपका नाम बताइए।
1: इंदी पाहन।
0: किस गांव के रहने वाले हैं आप?
1: ग्राम नचलदाग, थाना नामकुम है।
0: तो नचलदाग कैसा गांव है?
1: है तो ऐसे जनरली देहाती है, कोई जंगल जंगल एरिया है, और वहाँ ऐसे तो हम लोग रहते हैं बहुत 100 परिवार से लगभग ज़्यादा है।
0: अच्छा।
1: और वहाँ ऐसे कुछ ऐसे तो सरकारी के कोई ऐसा विकास तो हुआ ना, अभी नहीं हुआ है।
0: अच्छा।
1: लेकिन ऐसे तो हम लोग औजा कुछ और था, इसीलिए कुछ अपने मन में कुछ दबाव भी पड़ा, कुछ जो परिस्थितियाँ भी पड़ी, तब हम लोग मैंने अपना रास्ता से कुछ भटक गए थे।
0: नचलदाग जो है गांव, वहाँ पे लगभग कितने लोग अभी रह रहे होंगे?
1: अभी तो लगभग वही 100 परिवार से ज़्यादा हैं।
0: क्या काम कर रहे हैं लोग
1: वही? तो बस वहाँ तो खाली खेती बाड़ी का और मजदूरी ही काम करते हैं, और नौकरी काम करना तो बहुत ही कम है।
0: खेती बाड़ी कर रहे हैं तो क्या खेती में क्या काम कर रहे हैं, क्या उगाते हैं?
1: वही तो सीजन, एक ही सीजन खेती तो मात्र मैंने एक सीजन होता है, धान उन खेती करते हैं, वही सब दाल वही सब होता है। और गर्मी का सीजन में तो ऐसे वो लोग गाँव से मैंने बाहर काम करने के लिए चल जाते हैं।
0: ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी और दैनिक जो काम किया जाता है मजदूरी का, उसमें लगे हुए हैं। और आप क्या कर रहे हैं?
1: काम तो हम पहले पढ़ाई करने के बाद घर में कुछ ही दिन थे, वही एक ही 2 साल थे घर गांव में, खेती बाड़ी हम ही कर रहे थे, नौकरी के लिए इधर उधर गए थे। लेकिन वैसे ही परिस्थिति में मैंने कुछ गाँव में लफड़ा हुआ और गाँव के लोग बिना दोषी में मैंने हमको दोषी करार किया और मेरा ऊपर मुकदमा चलाया और मैंने जेल हम चले गए।
0: अच्छा।
1: उसके बाद में हम जेल से जब निकले तो हमें 20 साल का सजा हो गया था। तो निर्दोष में 20 साल का सजा होने के बावजूद मैंने जेल से निकलने के बाद मैंने थोड़ा मन में बहुत ही गुस्सा पैदा हो गया इस तरह, तब मैंने उसी समय मैंने पार्टी से संपर्क किया और मैं पार्टी में चला गया। जेल निकलते ही हम पार्टी में चले गए।
0: अच्छा, आपने कहा कि आपने पढ़ाई लिखाई भी की है, तो कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं?
1: पढ़े लिखे हम इंटर तक किए हैं।
0: अच्छा, तो इंटरमीडिएट तक आपने पढ़ाई की और फिर गांव में रहते थे?
1: जी हाँ।
0: अच्छा,
1: गांव में ही रहते थे।
0: अच्छा, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप खेती बाड़ी का काम कर रहे थे?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, तो नौकरी की तलाश आपने की?
1: नौकरी की तलाश की थी, लेकिन वैसे 2-3 साल उसके बाद तो वही ज़्यादा दिन हम घर में, कम से कम 2 साल थे पढ़ाई के, आने से बाद में हम 2 साल ही थे, 2 साल के अंदर में ही मेरा इस तरह का घटना हुई और हम जेल चले गए।
0: तो आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जिसके वजह से आपको जेल तक जाना पड़ा?
1: वैसे आदमी का मन एक होता है ना कि कोई चीज थोड़ा बढ़ता है तो उसको गिराने का ही संभव से।
0: हाँ।
1: उसी तरह से हमको किया गया। दूसरी में कुछ हम अब समाज का ही काम कर रहे थे तो वही लोग मेरा ऊपर में कुछ डला और लोग कुछ आदमी को समझा बुझा के हमको मैंने अपना काम से मैंने भटकाने का गिराने का कोशिश किया।
0: मतलब निर्दोष होते हुए आपको जेल जाना पड़ा और यही आपके अंदर एक बेचैनी जैसी बात हुई और आपने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया।
1: जी हाँ।
0: जब समाज की मुख्य धारा से आप भटक गए, दूसरा रास्ता आपने अपना लिया, तो वहाँ पर क्या आपको समस्याएं झेलनी पड़ी? और
1: वहाँ तो समस्या बहुत से झेलनी पड़ी। कुछ दिन 3 साल जैसे पार्टी में थे तो बहुत ही वैसे पुलिस से भी तंग आने लगे, सब तरह से तंग आने लगे। जंगल में रहने से तो गांव जैसा तो नहीं रहना पड़ता है, तो परिवार के साथ अलग रहना पड़ता है। इसी तरह हम लोग वन में ही रहते थे, इसे इधर उधर भटक ही रहते। लेकिन जब और केस पड़ा हम लोग के ऊपर, फिर कुछ कांड उंड होता था तो हम लोग का फिर केस होते हो रहा था, तब इधर गांव तरफ से भी परिवार लोग को भी तंग होने लगा। फिर हम लोग को तो तंग हो ही रहता है, तो भाई गांव परिवार का भी सर और कुछ इधर जो आईजी थे प्रवीण कुमार, वो उसके तक हम लोग का नंबर उम्बर पहुंचा, साथ में कुछ पकड़ाया तो उन्हीं लोग के थ्रू से हम लोग का नंबर उम्बर लेके वही ने समझाया, और साथ में MS भाटिया भी थे, वो लोग समझाया कि आप लोग सरेंडर कर दीजिए कि आप लोग का नौकरी मिलेगा। लेकिन हम लोग को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोग को चौके मैंने कि लोग बहला फुसला के किसी तरह से मैंने पकड़ लेगा और जेल में डाल देगा। हम लोग का तो यही हो रहा था, लेकिन विश्वास तो नहीं हो रहा था। लेकिन उन लोगों ने बहुत प्रेस किया, करने के बाद हम लोग बोले कि ठीक है देखते हैं, कम से कम हो या ना हो, आखिर हम लोग इधर उधर भटकिए रहे हैं। हाँ। तो हम लोग ने सोचा कि अब कुछ भी हो, तो पहले हमने जेल तो खट चुके थे। हाँ। तो हमने सोचा कि जेल ही जाएंगे तो क्या करेगा। तो जब 10 साल हम खाट ही ली, 20 साल का सजा हुआ था, तो 10 साल में मुझे हाईकोर्ट ने बारी किया था, तो हमको जेल के बारे में भी जानकारी था। तो मैंने सोचा चलो जेल ही सही, कम से कम वहाँ शांति से तो रहेंगे। अब जो दे चाहे नहीं दे, वो तो अब भगवान के ऊपर छोड़कर हमने उन लोगों का बात मानकर हम लोगों ने सरेंडर किया। और सरेंडर करने के बाद तो 1.5 साल तो जेल खटना ही पड़ा फिर से। लेकिन जैसे ही हम लोग का केस ख़त्म हुआ और कुछ दिन के बाद हम लोग का सरकार थे वो हम लोग को नौकरी दे दिया, और नौकरी भी दिया, और सरकार जितना करीब करीब जितना वादा किया था वो लोग जितना हम लोग को बोले थे करीब करीब हम लोग को दे ही दिया है। इसे जमीन दिया प्लस नौकरी दिया, और केस लड़े थे उसका जो पैसा हम लोग ने लगाए थे उसका भी भरपाई किया। इस तरह से करीब मैंने जो भी जितना पैसा दिया बोला था उतना सरकार जो वादा किया था करीब करीब मैंने हम लोग को पूरा दिया ही। हाँ, तो नौकरी भी दिया। फिर अलावा जिस दिन हम लोग भटक गए थे अपना परिवार को लेके जहाँ तहाँ रहे उसका भाड़ा भुता देना दिए थे, उसका भी पूछ पूछ के बोला कि खर्चा कहाँ किए हो, तो जिसका घर में रहते थे वो इतना तक कि घर भाड़ा सब भी दे ही दिए, वो भी दिए। इस तरह से जितना दिया सहयोग बहुत किया। अब आजकल है कि हम लोग शांति जीवन जी रहे हैं। फिर बोले थे कि मैंने लड़का 2 लड़का का जो पढ़ाएगा उसका भी दाम मैंने लगाएंगे कोई भी स्कूल में बोलते हैं, लेकिन ये भी हम लोग कह रहे हैं कि बहुत लोग का बाल बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे मेरा भी एक पढ़ रहा है, तो उसका मैंने हम प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़ाने के बाद हम बिल जमा कर देते हैं तो फिर तुरंत तो नहीं देता है, लेकिन 1 साल होते होते करीब उसका भी पैसा सरकार हम लोग को चुकती कर रहा है। तो यही सब विश्वास है।

0: कि बहुत भाई हम लोग भटक गए थे, तो और हम चाहते हैं कि हम लोग जैसा और भाई लोग भटक रहे हैं, वो लोग चाहे तो माने कि हम लोग का मुख्य धारा में आए तो माने बेहतर होगा, यही कहेंगे।
1: सही कहा आपने। आपने कहा कि सरेंडर करने के बाद आपको सरकार की तरफ से जो चीज़ें मिलनी चाहिए, योजनाओं के तहत जितनी चीज़ें मिलनी चाहिए, ज़मीन, पैसे और जो आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिली और नौकरी भी मिली। तो अभी आप कौन सी नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
0: अभी तो हम पुलिस में हैं, पुलिस में ही अभी पेट्रोलिंग ड्यूटी जैसे पुलिस और जो पुलिस है जिन लोग को ऐसा करता है बस, हम ऐसा ही हम लोग को भी काम ड्यूटी मिलता है।
1: अच्छा, तो पेट्रोलिंग वाले में क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है?
0: पेट्रोलिंग में तो अभी जैसे थाना का पेट्रोलिंग होता है, अलग चीज़ होता है, और हम लोग पेशियार और हाईवे का ड्यूटी थोड़ा सा कुछ और होता है। हम लोग जैसे 12 हाईवे 12 में हम अभी करते हैं, उसमें से हम लोग यही करते हैं कि रोड रोज चलना है और जगह जगह कुछ कुछ रुकते जाना है, और कहीं अगर एक्सीडेंट हुआ तो बस तुरंत उसका खबर मिलते ही वहाँ चल जाना है, और जो वहाँ जो लगता है उसको तुरंत उठा के हम लोग हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं, और हॉस्पिटल पहुँचा के उसका परिजन को खबर दे देते हैं, बस उतना ही। उसके बाद तो फिर अपना ड्यूटी में फिर वापस आ जाते हैं।
1: तो ये ड्यूटी करते हुए आपको कैसा लग रहा है?
0: ये तो बहुत ही अच्छा लगता है, काहे कि मैंने ऐसा है कि पब्लिक का ही साथ में रहना है और पब्लिक का ही सेवा करना है, तो इसलिए ड्यूटी तो अच्छा ही लगता है।
1: इंदी पाहन जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे आप समाज की मुख्य धारा से भटक गए थे और जो भी परेशानियां आपको आई उस वक्त आपने काफ़ी समस्याओं का आपने सामना किया है, साथ ही साथ आपके साथ साथ परिवार वालों ने भी उन समस्याओं को झेला है, है ना, आपके पीछे। और अब जो आप नौकरी कर रहे हैं, पेट्रोलिंग वाली ड्यूटी कर रहे हैं, इसमें आपको अच्छा भी लग रहा है, तो दोनों में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? समाज की मुख्य धारा से जब आप भटके हुए थे तब और अब की ज़िंदगी, आपको दोनों में कैसा महसूस हो रहा है?
0: दोनों में तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क है।
1: बिल्कुल,
0: कहा कि उसमें शांति नहीं था, और इसमें शांति है। हाँ। और क्या क्या बताएं उससे ज़्यादा,
1: सही बात है। और एक आदमी को शांति में जीवन बहुत ज़रूरी है जीने की। तो आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं?
0: हमारे परिवार में तो अभी माता पिता है और भाई लोग हैं, और अपने परिवार दो, एक लड़का और एक लड़की है मेरा, बस उतना ही है।
1: तो परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी आप ही पर है?
0: हाँ, मेरा ही पर है, और बाबूजी सब अभी है, खेती बाड़ी भी है, इसीलिए तो अभी बाबूजी सब जब तक रहेंगे तो खैर उन्हीं लोग के ऊपर है।
1: अच्छा,
0: लेकिन हाँ तो कुछ होता है तो हम लोग सपोर्ट तो एकदम करवे करते हैं। अब असना उतना ही थी तो नहीं है, इसीलिए हमने हम लोग मैंने पूरा परिवार अभी ठीक है।
1: तो समाज की मुख्य धारा से जब आप जुड़े, परिवार के बीच आए, तो आपके परिवार वालों ने क्या कहा आपसे? सबसे पहले जब आप अपने परिवार के बीच आए तो कैसा उन लोगों को लग रहा था? आप
0: उन लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा था कि पहले आप जहाँ तहाँ भटक रहे थे, और कब कहाँ होगा कब, उसका कोई गारंटी नहीं था, और कोई हम लोग को थाना पुलिस भी आके घर में आके कुछ भी बोलता था। लेकिन जब से सिलेंडर करने के बाद मैंने कोई ऐसा कोई आदमी आता नहीं है, और अभी हम लोग मैंने शांति से हैं बोलते हैं।
1: तो आपने अपने बच्चों के लिए क्या सोचा है?
0: हमने अपना बच्चों के लिए तो अब ऐसे हम सोचते हैं कि मेरा जैसा भटकना ना पड़े, इसलिए मैंने अच्छा से मैंने रास्ता दिखा के जो दिखा देंगे वही हम सोचते हैं, और क्या कीजिएगा।
1: तो बच्चे अभी किस क्लास में पढ़ रहे
0: हैं? लड़की तो अभी छोटी है, और लड़का तो हम थोड़ा 9 क्लास पढ़ के अभी छोड़ दिया है, पढ़ने ही नहीं जाता है, तो क्या करेंगे इसे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, तो ऐसे आजकल पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने घर में अब ठीक ठाक से उड़ा रहा है, इधर उधर तो कर नहीं भटक रहा है, और घर को हम बाहर भी रहते हैं तो मैंने घर में अच्छी से उड़ा रहा है।
1: बच्चों को आपने कहाँ पढ़ाया लिखाया है, अपने गांव में ही या कहीं और?
0: पहले तो हम नहीं थे, इसलिए लड़का तो गांव में ही पढ़ रहा था।
1: अच्छा।
0: लेकिन गाँव में ही था, और उसके बाद छोड़ दिया, और बच्ची तो अभी प्राइवेट स्कूल में गाँव में पढ़ रही है।
1: अब इंदी पाहन जी एक बात और।

0: बताइए कि जब आपने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया, उसके बाद जो सरकारी योजनाएं आपको मिली, योजनाओं के तहत लाभ मिला, वो कौन-कौन से लाभ थे?
1: लाभ हम लोग का ऐसे जमीन मिला, उसके बाद में
0: कितना?
1: 4 डिसमिल।
0: अच्छा।
1: सिलेंडर करने के समय ही हम लोग को 50,000 दिया था, उसके बाद फिर 2.5 लाख दिया,
0: अच्छा।
1: उसके बाद में फिर दिया था। जैसे मैंने लड़का कुछ दिन पढ़ा था, उसका हम पढ़ाई भरे थे, उसका दिया, और केस में जो कुछ खर्चा हुआ था उसका भी दे दिया हम लोग को।
0: आपको क्या लगता है कि इतना काफी है या और भी कुछ आप सरकार को सुझाव अपनी ओर से देना चाहेंगे?
1: सरकार से हम तो क्या मैंने जितना दिया है उतना तो दे ही रहा है, और सरकार से हम यही का कहेंगे, जितना जैसे वादा किया है वैसा अगर और हम ही लोग की तरह देते रहे तो और भटक रहा है वो सब आएंगे। लेकिन सरकार से हम यही सुझाव चाहेंगे कि जो केस है केस में जिम्मेवारी वो नहीं ले रहा है।
0: अच्छा।
1: मेन चीज़ यह है कि जिसका अगर मान लिया 20-30 गो है तो नौकरी देंगे बोल के तो सिलेंडर करता है, लेकिन
0: हाँ
1: इसी में सरकार कहता है कि केस खत्म होगा तभी मैंने नौकरी मिलेगा।
0: अच्छा।
1: तो कुछ लोग बहुत लोग सोचते हैं कि जो 20-30 जिसका केस है वो तो केस खत्म होते तो मेरा उम्र भी खत्म हो जाएगा। यही एक तो विशेष है सरकार से कि मैंने केस जो वो मैंने जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। हाँ, अगर केस में थोड़ा सा उन लोग को राहत देता कुछ
0: अच्छा।
1: तो शायद
0: हाँ
1: भाई लोग और है जो ज़्यादा ज़्यादा केस है वो लोग भी आ जाएंगे।
0: अच्छा।
1: लेकिन केस का जिम्मेवारी सरकार
0: नहीं लेते।
1: नहीं लेता है। यही विशेष है कि मैंने आदमी जो ज़्यादा है वो तो सोचता है कि हम तो सिलेंडर करेंगे भी तो साला जेले में सड़ जाएंगे, तो उम्र खत्म होगा तो नौकरी कहाँ का करेंगे। इस तरह से कुछ समस्या है, विशेष तो यही है कि अगर केस में उन लोग को कुछ सपोर्ट करेगा तो शायद और ही आएगा।
0: तो श्रोताओं, इंदीपान जी की कुछ समस्याएं भी हैं और साथ ही साथ कुछ अपेक्षाएं सरकार से हैं। जैसे केस को लेकर इन्होंने ये बात कही कि केस की जिम्मेदारी सरकार की ओर से नहीं ली जाती है, जिस वजह से बहुत सारे हमारे भाई बहन अभी भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाने में असक्षम हैं। इंदीपान जी, एक बात और बताइए कि कई बार देखा जाता है कि मुख्य धारा से जो भटके हुए हमारे भाई बहन हैं, युवक युवतियां हैं, जो जंगल में भटक रहे हैं, यहाँ से वहाँ दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, साथ ही साथ उनमें कहीं ना कहीं एक डर भी है कि पुलिस उनके पीछे लगेगी या फिर उनको पकड़ा जाएगा या मारे जाने का भी खतरा है। तो ऐसे भाई बहनों को आप अपनी ओर से, प्रशासन की ओर से कोई भय ना रखें, या फिर कैसे वो मुख्य धारा से जुड़े, इस बाबत आप अपनी ओर से उन भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
1: हम अभी भी भटक रहे हैं, वो भाई बहनों से यही चाहेंगे कि भी सरकार जो कह रही है वो तो हम लोग को वादा करके कर ही दिया है। इसलिए जो भी भाई भाई है अपना मैंने डर भाई मैंने त्याग करके मैंने वापस आ जाना बेहतर होगा।
0: अंत में एक सवाल और होगा कि जब हमारे भाई बहन मुख्य धारा से जुड़ने लगते हैं या आत्मसमर्पण करने के बाद अपने परिवार और गांव के बीच पहुंचते हैं, तो कई बार देखा जाता है कि गांव वाले उन्हें अपनाने से कतराते हैं। क्या ऐसी कोई समस्या आपके साथ आई?
1: वैसा तो समस्या नहीं है, नहीं नहीं हुआ हमारे भी गांव वाला, गांव वाला तो ऐसा नहीं करता है बहुत। अगर जिस जिन्होंने गांव का है ये पहले बहुत ही आराकत किया होगा तो कुछ लोग को कुछ एक दो को तो करेगा ही करेगा, नहीं करेगा सो बात नहीं, लेकिन वैसा तो पूरे गांव वाला तो नहीं है करेंगे। एक दो ही जिसका जिसे हम किसका ज़्यादा गलत किए हैं तो वो लोग तो कुछ तो कतराएंगे ही, लेकिन पूरे परिवार का और पूरे गाँव का वैसा नहीं करते हैं।
0: चलिए इंदीपान जी, और अभी आप एक शांतिमय जीवन बिता रहे हैं और परिवार के बीच रह रहे हैं और अपनी नौकरी में भी लगे हुए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य और भी अच्छा हो, आपके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छी जगह पहुंचे, इसके लिए हमारी भी शुभकामनाएं।
1: तो हमारे तरफ से भी आपको मन बहुत धन्यवाद है।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाज की मुख्य धारा से भटकाव की बात, मुख्य धारा से जुड़कर सुखद जीवन बिता रहे इंदीपान से हमारी बातचीत। श्रोताओं, यह भी सच है कि आज सरकार द्वारा नक्सलवाद दूर करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए आत्मसमर्पण नीति बनाकर और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को बनाकर उन तक पहुंचाने का सफल प्रयास भी किया जा रहा है। और यह भी सच है, हिंसा को हिंसा द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए रोटी, कपड़ा, मकान एवं स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं से इन्हें जोड़कर एवं सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर इन्हें रोजगार के भी सुअवसर दिए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ इन्हें मिल सके। अतः इसके लिए जन जन की जागरूकता बेहद आवश्यक है, तभी हम विकास की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतार कर देश के विकास में भागीदारी निभा पाएंगे। और तभी सबका साथ मिलेगा तो सबका विकास भी सुनिश्चित हो पाएगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चलें। प्रस्तुति स्वर था सिंधु मिश्रा का, प्रस्तुति एवं संयोजन गौरव कुमार पांडे की।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 10:30 हो चुके हैं। समय है हमारे दैनिक प्रसारण का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जोहार रांची।

0: जोहार रांची कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त रचना
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त मीता। आप सभी को
0: हमारा
1: नमस्कार जोहार।
0: मीता आपको भी मेरा जोहार।
1: बिल्कुल। और रचना, हमेशा ही हम इस कार्यक्रम में ढेर सारी बातें करते हैं। हमारी बातों का सिलसिला जब एक बार शुरू होता है तो थमता ही नहीं।
0: बिल्कुल, जब हम लोग सखियां मिल जाती हैं ना तो बातें करते जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा प्रोग्राम है। हाँ। हमें बताना भी है, गाने भी सुनाने हैं।
1: कार्यक्रम तो जोहार रांची है और हमारे सभी श्रोता इस समय बैठे होंगे रेडियो ट्यून करके। तो इससे पहले कि हम बातों का सिलसिला शुरू करें, क्यों ना एक प्यारा सा गीत हम अपने श्रोताओं को सुना दें।
0: हाँ,

0: रचना, हमारी भी कोशिश होती है कि हम अपने श्रोताओं को एक ऐसी दुनिया में ले चले एक घंटे के लिए, जहां उन्हें ज्ञान की बातें भी कुछ हो, कुछ अच्छे विचारों को भी सुनने को मिले, कुछ गाने भी सुनने को मिले। मतलब कुल मिलाकर हम उन्हें एक पूरा पैकेज देना चाहते हैं इस एक घंटे के प्रोग्राम में, है ना?
1: सही बात है।
0: तो गाने तो हमने सुन लिए, अब कुछ सदविचार भी हमारे होने चाहिए, क्या रचना?
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा मीता आपने। जैसे हम बोलते हैं कि किताबें और उपन्यास कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का सबसे बड़ा माध्यम है।
0: हाँ, यूनेस्को ने कहा है कि जो समाज पढ़ने की आदत बचाए रखता है वह सीखने की संस्कृति बचाए रखता है।
1: बिल्कुल, पढ़ने की आदत किशोरों के बौद्धिक और भावनात्मक संतुलन को सहारा देती है।
0: हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है रचना, हर सुबह के समाचारों में ज्ञान का जो प्रवाह है वह हमारी चेतना को जगाता है।
1: बिल्कुल, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी कहा गया है कि रोज पढ़ना भाषा और अभिव्यक्ति को बेहतर बनाता है।
0: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने कहा है, पढ़ना केवल पाठ समझना नहीं, उद्देश्य पाना और समाज में भागीदारी करना भी है।
1: पढ़ना हमें अनगिनत दुनिया से परिचित कराता है।
0: हार्वर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि किताबें पढ़ने से सहानुभूति और दूसरों को समझने की क्षमता बढ़ती है।
1: सिर्फ 6 मिनट शांति से कोई किताब या समाचार पत्र पढ़ने से तनाव का स्तर 68% तक घट सकता है।
0: मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट अमेरिका का कहना है कि किताब पढ़ते समय दिमाग कई हिस्से एक साथ सक्रिय करता है, जिससे स्मृति बेहतर बनती है।
1: और यूनेस्को का कहना है कि पढ़ना और सीखने को उम्र से मुक्त कर देता है।
0: रचना, अक्सर लोग सोचते हैं कि जब बच्चा बोलना या पढ़ना सीख जाएगा तब हम उसे किताबें सुनाएंगे, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि न्यू बोर्न बेबी को बोलकर किताबें पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात है। भले ही वे शब्दों का मतलब ना समझे, लेकिन ये आदत उनके दिमाग के विकास के लिए सुपर फूड की तरह काम करती है। और किताबें पढ़कर सुनाने से जो है बच्चा कम उम्र में नए नए शब्द सुनने लगता है, जो उसके दिमाग में स्टोर हो जाते हैं और बाद में बच्चे बहुत जल्दी बोलना सीखते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। माता पिता बच्चों को बचपन से पढ़कर सुनाते हैं, उन बच्चों का दिमाग ज़्यादा तेज विकसित और क्रिएटिव होता है। जब आप बच्चे को पास बैठकर प्यार से पढ़कर सुनाते हैं तो बच्चे को बहुत सुरक्षित महसूस होता है और ये आदत आपके और बच्चे के बीच गहरा और इमोशनल कनेक्शन भी बनाती है। वैसे भी हम सब जानते हैं कि किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है, आपकी जो है बौद्धिक शक्ति को भी तेज करता है।
0: तो रचना, ऐसा है कि अगर हम किताबें पढ़ें तो बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें तो मिलेंगी, लेकिन इंसानों को पढ़ना भी उतना ही आवश्यक है कि जिसके साथ हमारा उठना बैठना हो रहा है, जिन लोगों के संपर्क में हम हैं, तो वो कैसे लोग हैं, उनके विचार कैसे हैं, और उसके अनुसार हम उनके साथ तादाद में जो अच्छे से बैठा सकते हैं। तो एक इसी भाव का एक गीत हमने चुन रखा है अपने श्रोताओं को सुनाने के लिए, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: रचना किताबें और चेहरों से आगे बढ़कर हम पहुंचते हैं अब मौसम तक,
1: बिल्कुल मौसम
0: क्योंकि
1: का हाल बताया
0: मौसम
1: जाए।
0: मिजाज अपना पल पल बदल रहा है। घनघोर बारिश हुई कई दिनों तक और उसके बाद फिर से थोड़ी सूखे की स्थिति रही, धूप तीखी निकलती रही, लेकिन फिर से मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत समेत मानसून अधिकांश राज्यों में अभी सक्रिय है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में कल जोरदार बारिश से हुई, जिसकी वजह से बाढ़ की चपेट में है वो इलाके।
1: और उत्तराखंड में भी भूस्खलन से 2 नेशनल हाईवे समेत 126 सड़कें बंद हैं। सियान चट्टी में भूस्खलन से ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे 3 दिन से बंद है।
0: मौसम विभाग ने सोमवार को यानी आज उत्तर के साथ बिहार, बंगाल और यूपी समेत 18 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है।
0: मौसम विभाग के अनुसार राजधानी समेत झारखंड के विभिन्न भागों में आज बादल गहराएंगे और रुक रुक कर बारिश होगी। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राजधानी समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है।
1: और ये जो हम बात कर रहे थे ना कि बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन आया है उसकी वजह से ये असर देखने को मिल रहा है, और आज के मौसम में भी ऐसा ही असर देखने को मिलेगा। भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे और
0: उमस से लोगों को थोड़ी परेशानी होगी।
1: हाँ,
0: और रामगढ़ में सबसे अधिक 22.5 मिलीमीटर बारिश वो दर्ज की गई है। और मौसम विभाग ने कहा है कि कई जिलों में तेज हवा, गरज और वज्रपात की संभावना है, तो सभी को संभल कर रहने की चेतावनी दी गई है।
1: और ये भी है कि अभी तक राज्य में जो है सामान्य से कम बारिश हुई है।
0: हाँ, तो बारिश की जरूरत तो है ही, और कई जिलों में है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है रचना। और रांची, खूंटी, गुमला समेत 14 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। सिमडेगा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका और हजारीबाग में गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।
1: और वहीं कुछ जिलों में तेज हवा और बिजली चमकने की भी आशंका है, इसलिए लोगों को खुले मैदान और पेड़ों के नीचे आसरा जो है नहीं लेना चाहिए।
0: ये सलाह भी दी गई है कि आप उससे ना उसके नीचे ना खड़े हो। और मौसम विभाग ने तो बता ही दिया है, बादलों ने भी डेरा डाल दिया है। आप इस समय आसमान को अगर देख रहे होंगे तो
1: हाँ,
0: तो
1: वो कभी धूप कभी छांव हो रहा है, आसमान अपना रंग बदल रहा है और हो सकता है कभी बारिश भी हो जाए।
0: रचना, कई बार आकाश से बादल तो बरसते ही हैं, कई बार जब मन दुखी हो तो आंखें भी बरसती हैं।

0: जोहाना जी अमिताभ, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं इतिहास की तरफ और बात करते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ था देश दुनिया में खास, जिसकी वजह से वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तो आज ही के दिन 1803 में महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और अलेक्जेंडर डफ ने कोलकाता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज की शुरुआत की थी।
1: 1905 में कलकत्ता के साप्ताहिक समाचार पत्र संजीवनी ने ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव दिया था और 1929 में आज ही के दिन क्रांतिकारी जतींद्रनाथ ने अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की थी।
0: और 1977 की बात करें तो आज ही के दिन भारत सरकार ने भारत रत्न सहित अन्य नागरिक सम्मानों को वापस लेने की घोषणा की थी।
1: 1923 में कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजेलिस में माउंट हिल्स के पास जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए प्रचार के मकसद से हॉलीवुड लिखा गया।
0: और आज के दिन 1908 में महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भाग लेने की अनुमति दी गई। 1998 में भारत के लिएंडर पेस ने हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप में अपने जीवन का प्रथम ATP खिताब जीता था।
1: 13 जुलाई 2011 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तिहरे बम धमाकों से दहल उठी। ये धमाके मुंबई के झवेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादरा में हुए थे।
0: और 2004 में रूसी राष्ट्रपति ने साइबेरिया और देश के सुदूर पूर्ववर्ती इलाकों के विकास के लिए भारत से और मजबूत संबंधों की इच्छा जताई।

0: रचना, हम बातें कर रहे थे इतिहास की, तो इतिहास में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ दुख देने वाली भी बातें होती हैं। तो आज हम क्यों ना उस पर चर्चा करें कि आज कौन से वो महान लोग थे जो हमें छोड़कर चले गए। आशापूर्णा देवी बंगला साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका थी, जिन्होंने विशेषकर महिला समाज की स्थिति पर अपनी कलम चलाई। इनका निधन 13 जुलाई 1995 को हुआ था।
1: आशापूर्णा देवी ने प्रथम प्रतिश्रुति, स्वर्णलता जैसी चर्चित कृतियां लिखी, जिनमें स्त्री स्वतंत्रता और समाज में महिलाओं के अधिकारों का मुखर चित्रण मिलता है।
0: उन्हें साहित्य अकादमी और पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी कहानियां और उपन्यास आज भी पाठकों में गहराई से दूर हो जाते हैं।
1: उनका साहित्य योगदान आज भी अमूल्य धरोहर बना हुआ है। और प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन 13 जुलाई 2021 को हुआ था। वे 1983 के ऐतिहासिक क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के प्रमुख स्तंभ थे। 1983 विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के लिए दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले वे खिलाड़ी थे, जिन्होंने 8 मैचों में 240 रन बनाए थे, जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच में खेली गई शानदार 89 रनों की पारी भी शामिल थी।
0: 1978 में से 1985 के बीच भारत के लिए 37 टेस्ट मैच में 1606 रन और 42वें वनडे मैच में 883 रन बनाए। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर उन्हें प्यार से संकट मोचक कहकर बुलाते थे। और रचना, ये तो बातें हुई निधन के बारे में, और ऐसे भी कुछ हस्तियां हैं जिन्होंने आज के दिन यानी 13 जुलाई को जन्म लिया है। उनमें से एक है फना, धूम 2 और गोलमाल रिटर्न्स जैसी फिल्मों में काम करने वाली लोकप्रिय फिल्म अभिनेत्री और मॉडल उर्वशी शर्मा। उर्वशी शर्मा ने भारतीय फिल्म जगत में नकाब फिल्म से डेब्यू किया था, जो कि बॉबी देओल और अक्षय खन्ना के साथ उन्होंने बनाई थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची
2: और हम बातें कर रहे थे इतिहास में जिनका कि आज जन्म हुआ था।
1: बिल्कुल। पद्म भूषण से सम्मानित भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर का जन्म 13 जुलाई 1892 को हुआ था। वे जयपुर अत्रौली घराने की प्रसिद्ध गायिका थी। 16 साल की उम्र से उस्ताद अलादिया खां से संगीत की तालीम लेने के बाद वे 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सबसे बेहतरीन ख्याल गायिकाओं में से एक बन गईं।
2: और सुनीता जैन हिंदी और अंग्रेजी की प्रसिद्ध लेखिका थी। उनका जन्म 13 जुलाई 1941 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास और अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुनीता जैन की रचनाएं स्त्री विमर्श और सामाजिक सरोकारों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिंदी साहित्य का प्रतिनिधित्व किया। उनकी प्रमुख कृतियों में कांच के शब्द और स्मृति शामिल हैं। सुनीता जैन को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई सम्मानों से नवाजा गया। सुनीता जैन 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क 2007 में विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हिंदी की पहली कवित्री हैं। निहाल सरीन भारत के युवा और प्रतिभाशाली शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं।
1: उनका जन्म भी 13 जुलाई 2004 को केरल के त्रिमूर जिले में हुआ था। निहाल ने बहुत ही कम उम्र में अपनी बुद्धिमता और तेज चालों से दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने महज 14 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया
2: और तब से कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भी भारत का उन्होंने गौरव बढ़ाया है। उन्होंने जूनियर स्तर पर कई खिताब जीते और 2020 में ऑनलाइन फिडे ओलंपियाड में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई।
1: और अब बातें करते हैं रचना हम हिंदी फिल्म जगत की। तो बीना रॉय हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक थी, जिन्होंने 1950 और 60 के दशक में अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनका जन्म 13 जुलाई 1931 को लखनऊ में हुआ था। बीना रॉय ने अनारकली, ताजमहल, घूंघर जैसी सुपरहिट फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई।
2: उनकी सादगी और प्रभावशाली संवाद अदायगी ने उन्हें अपनी पीढ़ी की अग्रणी अभिनेत्रियों में शामिल किया। उन्हें फिल्म गजल के लिए विशेष सराहना भी मिली और घूंघट फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी उन्हें मिला।
1: एक बहुत ही हिट गीत है उनकी फिल्म का रचना। हम लोग अपने श्रोताओं को वो गीत सुनवाते हैं।

0: ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। इस जिंदगी को जिंदगी बनाए रखने के लिए रचना खान पान की आदतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
1: जिंदगी अनमोल है, उसे संभालना बिल्कुल बिल्कुल
0: हमें कुछ अपने खान पान की आदतों पर हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसा ना खाएं पिएं कि जिससे हमारी सेहत खराब हो, और बहुत कुछ ऐसा है जानने के लिए कि जो हम खाएं तो हमारी सेहत सही हो।
1: और कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग चीज खाते हैं लेकिन कई लोगों को देखना बहुत आदत होती है कि वो खाने में नमक ऊपर से लेते हैं।
0: हाँ, वो तो रक्तचाप के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जिन्हें उच्च रक्तचाप की शिकायत हो उन्हें तो ऊपर से नमक खाना ही नहीं चाहिए,
1: वैसे भी नहीं खाना चाहिए। चाहे आपको उच्च रक्तचाप हो चाहे ना हो, लेकिन आप ऊपर से कच्चा नमक कभी भी ना
0: खाएं। अतिरिक्त नमक जो है वो शरीर में पानी को रोकता है जिससे दिल पर दबाव बढ़ता है, इसलिए नमक की अधिकता वाले प्रोसेस्ड और फास्ट फूड खाने से बचें।
1: वैसे भी हमने देखा होगा ना मीता, जब हम फास्ट फूड खाते हैं तो हमें प्यास ज्यादा लगती है,
0: बहुत ज्यादा प्यास लगती है। और कुछ लोगों की आदत होती है रचना कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय पी लेते हैं
1: या तुरंत सो जाते हैं।
0: ऐसा करने से शरीर में आयरन के अवशोषण में बाधा आ सकती है,
1: इसलिए चाय को जो है भोजन के कम एक घंटे पहले या फिर एक घंटे बाद पिए। और पानी के साथ भी ऐसा ही है, आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए क्योंकि वो आपके खाने को पचाने में बाधा डालती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पानी भी पिए तो कम से कम आधा घंटा तो रुके।
0: अगर हमारे किसी श्रोता को ब्लड प्रेशर की अगर समस्या है, उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो ये खासकर महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद होता है रचना, तो इसमें ये पाया गया है कि आप बुरे कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए सोयाबीन को खा सकते हैं। सोयाबीन में ऐसी प्रोटीन बहुलता से होती है जो इस प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने की क्षमता रखती है।
1: बिल्कुल, और 25 ग्राम नमक रहित सोयाबीन रोज खाने से जो है वो रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि जो आप आहार ले रहे हैं वो चिकनाई रहित हो और आपके दिल का दोस्त हो। और हाँ, सुबह कम से कम 30 मिनट चलना ना भूलें। ध्यान रखें कि जितना चलोगे उतना चलोगे।
0: जी हाँ।

0: रुक जाना नहीं तू कहीं हार के रचना। जब हमने अपने श्रोताओं से ये कह दिया है कि रुकना नहीं है, तो कहीं जाने की बात भी हम कर दें, यानी कि पर्यटन की भी बातें हम करें, ताकि हमारे श्रोताओं को ये तो पता चले कि हमें जाना कहाँ है, मतलब उन्हें जाना कहाँ है।
1: हाँ हाँ, जैसे कि मीता, हम जानते हैं कि हमारे झारखंड में बहुत सारे झरने हैं, हम सभी झरनों की बातें करते हैं, लेकिन आज हम ऐसे जलप्रपात की बात करेंगे कि शायद वो बहुत कम लोग।
0: बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं को यही तो बताना चाहते हैं जो वो नहीं जानते हैं, हम जिनकी जानकारी उनको कम होती है, तो हम चाहते हैं कि वो जानकारी उन तक पहुंचा दें। तो अगर ये झरना अभी तक लोगों की नज़र से कुछ अछूता सा है, बचा सा है, तो हमें उसकी जानकारी जरूर अपने श्रोताओं को देनी चाहिए। रचना, बताओ कहाँ पे है ये जिसकी बात तुम कर रही हो?
1: हम बात कर रहे हैं लावा पानी जलप्रपात की। झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य, पर्वतीय श्रृंखलाओं, घनी वनों और जलप्रपातों की धरती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, राज्य में अनेक ऐसे अद्भुत पर्यटन स्थल मौजूद हैं रचना, जो आज भी पहचान से वंचित है। यदि इन स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित पहचान मिले, तो झारखंड में पर्यटन का अभूतपूर्व विकास संभव है।
1: बिल्कुल सही बात है, और ऐसा ही एक अनुपम और रहस्यमयी प्राकृतिक स्थल है लावा पानी जलप्रपात, जो लोहरदगा जिले के
0: पिशरार प्रखंड में स्थित है। यह जलप्रपात लोहरदगा जिले मुख्यालय से लगभग 38 किलोमीटर, रांची से 112 किलोमीटर, नेतरहाट से 116 किलोमीटर और लातेहार से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। घने वनों, ऊंचे पर्वतों और जनजातीय क्षेत्र के मध्य स्थित यह जलप्रपात प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है।
1: मानवीय आबादी से दूर होने के कारण यहाँ का वातावरण आज भी निर्मल, शांत और प्रदूषण मुक्त बना हुआ है।
0: लगभग 268 मीटर करने वाला यह जलप्रपात 60 से 70 डिग्री के कोण पर लगभग 110 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। यदि इसका वैज्ञानिक मापन किया जाए, तो संभवतः यह झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में दूसरे स्थान पर होगा। रचना, लावा पानी क्षेत्र प्राकृतिक विविधताओं से परिपूर्ण है। यहाँ का वातावरण, हरियाली, जलधारा के मधुर स्वर, पक्षियों की चहचहाट और वनस्पतियों एवं पुष्पों की सुगंध से ये भरा रहता है।
1: ये क्षेत्र जो है आदिम जनजातीय सभ्यता का भी साक्षी है, जहाँ प्रकृति और मानव जीवन का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है।
0: तो फिर आप जब भी कहीं अगर मूड हो आसपास ही कहीं घुमाने का, तो और लावा पानी जगह जरूर जाएं और एंजॉय करें, और अपनी जो मतलब अनुभूति है, आपका जो अनुभव है, वो हमसे जरूर शेयर करें।

0: चल कहीं दूर निकल जाएं। और इस तरह से रचना हम कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर आ चुके हैं। हमारा कार्यक्रम बिल्कुल समाप्ति पर है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है खेल की, जिसे हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा जो चल रहा है इन दिनों, तो अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन पहली बार ये वर्ल्ड रैंकिंग की ये टॉप चार टीमें
1: एक साथ सेमीफाइनल में है इस बार।
0: फ्रांस आठवीं बार, अर्जेंटीना छठी, इंग्लैंड चौथी और स्पेन दूसरी बार सेमीफाइनल खेलेगा। 1970 और 1990 के बाद केवल तीसरा मौका है जब चारों सेमीफाइनलिस्ट टीमें पूर्व चैंपियन रही हैं।
1: स्पेन सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को मिलाकर लगातार 36 मैचों से अजय है और इस दौरान उन्होंने 27 मैच जीते हैं और 9 मुकाबले ड्रॉ खेले हैं। और फ्रांस लगातार तीसरा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलेगा और ऐसा करने वाला जर्मनी और ब्राजील के बाद वो तीसरा देश बन गया है।
0: और रचना, जैसा कि देख रही हो, घड़ी की सुइयां बिल्कुल हमें इजाजत नहीं दे रही हैं, क्योंकि हमारे श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम, अगला कार्यक्रम जो है आपकी पसंद, वो उनके इंतजार में है। तो हम अपने श्रोताओं से यहीं पर विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची। ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

आपकी पसंद कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में राम और श्याम फिल्म का ये गीत, और सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर मिरक, जेतेक मिरक मीका मिरक, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा।

अगला गीत आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में आधी फिल्म से, और सुनना चाहा है बड़ा बाम्बो गांव सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश, ललित प्रधान, किरण केसरी, राजकुमार केसरी, श्यामदेव नायक देवन, चक्रधरपुर गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बनमाली बेसरा, बासंती अनु, सुध कुमारी और पूजा कोटवा नारायणपुर बावापट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय।

अगला गीत आइए वो सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में पत्थर की सनम फिल्म का। और इस गीत को सुनना चाहे महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश।

अगला गीत आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में मिली फिल्म से, और इस गीत को सुनना चाहा है मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गणवानकर, सरिता गणवानकर, प्रिंस आकाश गणवानकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गणवानकर, प्रणीता गणवानकर, अर्जुन गणवानकर, आकार हाइट्स, बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गणवानकर, सुमित गणवानकर और कुमारी ध्वनि गणवानकर।

अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ममता फिल्म का ये गीत, और इस गीत को सुनना चाहे जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, चांदनी नाज, छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा।

अगला गीत सुनना चाहे बैजना धाम से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, प्रतीक प्रतिज्ञा, खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, गौरव नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और उनके परिवार के सभी लोग।

0: किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही आज का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 12 बजे हैं और वक्त है महिलाओं के कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का, तो आइए सुनते हैं गृह लक्ष्मी।
1: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनवैया सभी बहन मन के वन्ना राय बटले जोहार और रानी बहन रौर कहो जोहार कहो कैसन हाल समाचार है।
2: जोहार वंदा बहन और कार्यक्रम सुनवैया बहन मन के रानी बटले जोहार हमर हाल

0: समाचार तो बेसे बेस है। रावड़े कहूँ आपन हाल समाचार कर विषय में।
1: हमरो हाल समाचार नगदे नगद है और असरा करीला कि हमर सब सुनवैया बहिन मन भी कुशल मंगल से होबे।
0: एकदम सही कहली बंदा बहिन, काले कि सब बेस रहले है बेस बुझाला और महिला तो परिवार कर धुरी है, ओकरे ऊपर गोटा परिवार कर जिम्मेवारी रहेला, सेले हमरे मन के एकदम स्वस्थ रह कर दरकार है।
1: एकदम सही कहली। और देखो नी, पूर्णा परियार में तो महिला मन खाली घर कर काम करत रहे या घर कर काम तक सीमित रहे, उमने खाना बनाए, छुआ देखे, बड़ बूढ़ा कर देखभाल करे, यही सब काम में लागल रहत रहे। लेकिन देखो नी, आज कर जमाना तो एकदम चेंज मने बदल जाए है। आज महिला मन घर कर संगे है, बाहरे कर भी काम करत है।
0: जेके की काम काजी महिला कहल जाए बंदा बहन, एकर माने है कि ऐसन महिला मन खाली घर और परिवार कर आर्थिक जिम्मेदारी के नहीं उठाना, बल्कि समाज में भी एगो अपन अलग पहचान बनाना।
1: हाँ सही कहली। लेकिन देखो नी, कामकाजी महिला के अपन कार्यालय कर संग है घर और परिवार दियो कर जिम्मेदारी उठाए के पड़ेला और ई दोहरा बोझ कर चलते उमन शारीरिक और मानसिक तनाव कर शिकार भी हो जाए ना।
0: एकदम सही। कार्यालय में 8-9 घंटा काम करल बाद उमन के घर आवल बाद खाना बनाए, साफ सफाई, छुआ मनक पढ़ाई और बुजुर्ग कर देखभाल जैसा बगरा काम करे के पड़ेला, जेकर चलते उमन कर वर्क लाइफ बैलेंस जो है से बिगड़ जाएला।
1: सही कहली। और देखो नी, पर्याप्त आराम नहीं करल चलते उमने तनाव, थकान, खराब स्वास्थ्य कर शिकार भी हो जाए ना। और घर कर पहला जिम्मेदारी महिला उपरे होवे कर चलते कई धाम उमन के अपन करियर से भी छुट्टी लेवे खोवेला और माय कर जिम्मेवारी या पारिवारिक कारण से नौकरी के भी छोड़े खोवेला और नौकरी छोड़ल बादे दोबारा काम करे में बहुत मुश्किल हो जाएला।
0: हाँ एकदम सही कहली बंदा बहन। लेकिन सबकर सहयोग से महिला मन के बढ़िया से मतलब आसानी से अपन घर और बाहरे दुयो जिम्मेवारी के बढ़िया से पूरा कर सकेना। अगर परिवार कर संगे सभी सदस्य घर कर काम और छुआ मनक देखभाल में मदद करबे तो।
1: एकदम सही कहली। और देखो नी, संगे है ऑफिस कर जे नियोक्ता मन है उमने भी वर्क फ्लेक्सिबिलिटी और पेड फैमिली लीव जैसा नीति अगर बनाए ना तो महिला मन ले काम करे बहुत आराम हो जाएला और समाज के भी अपन रूढ़िवादी सोच से बाहर निकले कर जरूरत है। महिला के आर्थिक स्वतंत्रता और उनकर योगदान के भी हमरे मन के महत्व देवे के चाहिए।
0: एकदम सही कहली वंदना बहन। और जानी ला कोनो जगह में आज भी महिला के अपन वेतन में असमानता, पदोन्नति में रोक, कार्यस्थल में सुरक्षा संबंधी समस्या कर भी सामना करे पड़ेला, इसलिए जरूरी है बराबरी कर। महिला कोनवे रूप में पुरुष से कम न खें, बल्कि घर कर संगे उमने बाहरे कर काम भी अच्छा से पूरा करत है, इसलिए उमन कर अधिकार है पुरुष कर बराबरी चले कर और समान अधिकार पावे कर।
1: सही कहली रानी बहन। और देखो नी, महिला खाली घर कर नहीं बल्कि गोटा समाज और राष्ट्र कर निर्माण में बहुत बड़ भूमिका निभाएला, इसलिए उमन के सुरक्षा और सम्मान देवे हमरे सब कर कर्तव्य है।
0: एकदम सही।
1: तो चलो हमरे मन जान ली कि कामकाजी महिला कर दोहरी जिम्मेदारी कर बारे में और आप हमरे कर बेरा होते एगो गीत सुने कर। तो चलो सुलभ नागपुरी लोकगीत जे की एगो प्रकृति गीत है, दीना सिंह और संगी मन कर गावल।
0: एकदम चलो।

0: चैंपियन नहीं आए अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हाँ, तो सुनवैया बहिन मन, ये रहे विज्ञापन संदेश, और उकर से पहले हमरे मन सुन ली नागपुरी लोकगीत दीना सिंह और संगी मन कर गावल। और चलो अब हमरे मन जानकारी करब कि सोशल मीडिया पर रहे सावधान, और इकर बारे में बताते हैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र यादव, जे की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कर विभागाध्यक्ष हैं, और उनकर से बातचीत कर रहे हैं हमरे कर रानी बहन।
2: आज के समय में सोशल मीडिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, चाहे परिवार और रिश्तेदारों से जुड़े रहे।

0: हो, बच्चों की पढ़ाई की जानकारी लेनी हो, या कोई नई चीज सीखनी हो, या फिर घर बैठे किसी काम की जानकारी प्राप्त करनी हो, सोशल मीडिया कई तरह से हमारी मदद करता है। लेकिन इसके साथ फेक न्यूज, साइबर अपराध जैसी चुनौतियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया का उपयोग हम कैसे करें, ताकि हम स्वयं भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। और आज इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ऐसे विशेषज्ञ जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। सोशल मीडिया पर रहें सावधान, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र यादव। आप झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के संकायाध्यक्ष हैं, साथ ही आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं। नमस्कार सुभाष जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में।
1: नमस्कार रानी जी, धन्यवाद।
0: सुभाष जी, आज के समय में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया की सबसे बड़ी विशेषता या इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और ये हमारे लिए किस तरह उपयोगी साबित हो रहा है।
1: रानी जी, आपने सही कहा, हम डिजिटल युग में हैं और समाज का हर वर्ग इससे आजकल लाभान्वित हो रहा है। तो हमारा जो देश भारत है, इस समय वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है सोशल मीडिया का
0: जी।
1: अगर आप इसको डेमोग्राफी में देखें तो 870 मिलियन एक्टिव यूजर हैं, जिसमें से कि 1.02 बिलियन इंटरनेट यूजर हैं
0: जी।
1: और प्रतिदिन अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति हिंदुस्तान में 3.2 घंटे प्रतिदिन सोशल मीडिया पे दे रहा है
0: जी। बिल्कुल।
1: तो सबसे पहले हम अगर इसकी विशेषताएं को अगर देखें तो एक ग्लोबल कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया आने से इसने क्या किया ना कि दूरी मिटा दिया। आप किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति से तुरंत जुड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और इसके बाद त्वरित संचार, ऐसे आपके पास वेब बेस्ड मोबाइल एप्स जो है कि आपकी सूचना को तुरंत भेजते हैं। एक तरह से कह लीजिए कि सूचना कम्युनिकेशन में या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में क्रांति आ गई है
0: जी।
1: और तीसरी मुख्य विशेषता इसकी है कि यूजर कंटेंट, मतलब कोई भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति, किसी भी समाज का व्यक्ति अपना पोस्ट, फोटो, वीडियो खुद बना सकता है और उसको सोशल मीडिया पर डाल सकता है
0: जी।
1: और काफी आसान हो गया है कंटेंट क्रिएशन। आपने देखा होगा कि AI की चर्चा सब जगह चल रही है।
0: बिल्कुल।
1: और इसका अगर पावर की बात करें तो सबसे बड़ा विचारों की जो शक्ति है, आम लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं और इसको तुरंत लाखों लोग को पहुंचा सकते हैं। तो हमारे जीवन के ये हर एक पहलू में इसका प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि व्यापार पढ़ाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करके अपना व्यापार, नौकरी के अवसर, ये सारी चीजें कर सकते हैं आप। और दूसरा बड़ा डायमेंशन इसका है कि सीखने में बहुत मदद करता है। और अगर इसका प्रभाव और देखिएगा आप तो हमको अपडेट रखता है। एक्चुअली ये जानकारी का भंडार है
0: जी।
1: और दुनिया भर की सारी ताजी खबरों से हमको जोड़ के रखता है।
0: वाकई सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को कई तरह से आसान बनाया है, लेकिन कहा जाता है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया जहां हमारे लिए इतना उपयोगी है, वहीं इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी सामने आते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने रानी जी। एक्चुअली हर चीज की देखिए कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है
0: जी।
1: सोशल मीडिया को हम सुरक्षित रख सकते हैं, थोड़ा समझदारी का इस्तेमाल करें और दो चार मुख्य मुख्य बातों अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने आप को सेफ भी रख सकते हैं सोशल मीडिया पे। सबसे पहला तो देखिए कि आप सिक्योर पासवर्ड रखिए। आप सोशल मीडिया पे अकाउंट हर व्यक्ति का है। एक होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो साइबर सिक्योरिटी के गाइडलाइन के अनुसार है। मतलब जैसे आपने सोशल मीडिया खोला, एक पासवर्ड डाला, जनरली लोग करते क्या है कि अपने वाइफ का नाम 1 2 3 4 इस तरह का पासवर्ड रखते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए। आप बायोमेट्रिक्स इनेबल्ड पासवर्ड रखिए, OTP बेस्ड पासवर्ड रखिए और सुरक्षित रहिए। दूसरा, आप सारे सोशल मीडिया ऐप में देखिएगा, चाहे मोबाइल पे हो चाहे वेब बेस्ड हो, एक प्राइवेसी सेटिंग होती है
0: जी।
1: उसमें आप अपने प्रोफाइल को पब्लिक से प्राइवेट कर दीजिए। ताकि वो आम पब्लिक को नहीं दिखेगा, आप जिसको चाहेंगे उसी को दिखेगा।
0: जी,
1: और दूसरा बड़ा मुद्दा आता है कि कोई भी आपके ऐप पे या सोशल मीडिया लिंक पे अगर कोई अनजान लिंक आता है, कदापि मत उसको खोलिए, हैकर्स हो सकता है, उनका जाल हो सकता है। और इसके बाद ओटीपी, आपके मोबाइल पे जैसे कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या कोई फाइनेंशियल आप डील कर रहे हैं तो ओटीपी आता है, तो कभी मत शेयर करिए। और मेरा रिक्वेस्ट है मोबिकुल से कि गलत और अपमानजनक सोच तो कतई न करें। और एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नवयुवकों से और समस्त श्रोतागणों से कि कृपया सोशल मीडिया पे दूसरों की जिंदगी की तुलना देख के, तुलनात्मक समरी देख के परेशान न हो। आपका अपना खुद का जीवन है और खुद की अपनी आवश्यकताएं हैं।
0: बिल्कुल, यानी समझदारी और सावधानी ही हमें सुरक्षित रखती है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन आज की एक और बड़ी चुनौती है जो हमारे सामने आती है, आजकल फेक न्यूज, अफवाहें और भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती हैं। आम लोग किसी भी जानकारी की सच्चाई कैसे परखें और उसे शेयर करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?
1: जी जी, नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली सोशल मीडिया पे कोई भी जानकारी
0: जी
1: सच्चाई परखने के लिए जो मुख्य धारा के समाचार पत्र हैं, जैसे आकाशवाणी है, दूरदर्शन है या न्यूज़पेपर है
0: जी,
1: इनसे जरूर आप सूचना प्रदान करें, उनकी सूचना पे ध्यान रखें। और इसके अलावा अगर वेब बेस्ड कुछ चीजों की बात करें तो गूगल फैक्ट चेकर आता है, उस पे भी आप जानकारी की सच्चाई को परख सकते हैं, उसका स्रोत क्या है, कहीं अनजान गुमनाम खाते से तो नहीं आ रहा है
0: जी।
1: और एक और भी न्यूज चेकर के अलावा अल्ट न्यूज एक वेबसाइट होती है जिसमें भारतीय फैक्ट चेकिंग वेबसाइट भी कह सकते हैं आप
0: जी।
1: वो एक्चुअली इन तरह की न्यूज को पुष्टि भी करता है, खंडन भी करता है, तो आप सतर्क रह सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और कोई भी पोस्ट अगर कुछ अपसर्ड लैंग्वेज में आती है, कुछ गुस्से भरे लैंग्वेज में आती है, सनसनी खेज आती है, आप उसको जरूर सबकी नजर से देखें और ये जानकारी की परख अवश्य कर लें
0: जी।
1: और आप अगर कुछ शेयर भी अगर करना चाह रहे हैं
0: जी,
1: तो उसको कृपया जल्दबाजी में ना शेयर करें, आप उसको इत्मीनान से पढ़ें, सोचें और तभी किसी को शेयर करें।
0: बिल्कुल।
1: और इसके अलावा जैसे आप बात हो रही थी कि भाई कैसे प्रमाण खोजें, तो भारत सरकार ने दो ऐप ले रखे हैं, एक तो संचार साथी है, दूसरा चक्षु है
0: जी।
1: आप किसी भी खबर हो उसको आप देख के अगर अफवाह है तो छोड़ दीजिए, अगर आपको फर्जी लगे तो उसको भी छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए कोई आपसे रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, तो भारत सरकार का एक पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल, आप उस खबर को आप उस पर दीजिए, भारत सरकार एक्टिव रहती है, इस तरह की जानकारी को तुरंत ब्लॉक करती है और एक्शन लेती है भारत सरकार। आपने देखा होगा कि हमारे देश के लगभग सारे शहरों में एक साइबर थाना बन गया है।
0: बिल्कुल,
1: इस तरह की सुरक्षा के लिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने
1: जी,
0: जानकारी की सत्यता जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है अपनी निजी जानकारी को भी सुरक्षित रखना। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी, फोटो और लोकेशन शेयर करना कितना सुरक्षित है? अपनी डिजिटल सुरक्षा के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
1: जी जी, देखिए मैं तो आप लोगों से, सभी श्रोतागण से ये रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया अपनी निजी जानकारी
0: जी,
1: अपने बेटे बेटी की फोटो, लोकेशन, ये एकदम सुरक्षित नहीं है। ये चोरी होने का डर है, स्टॉकिंग होने का डर है या साइबर धोखाधड़ी भी बढ़ सकता है। तो अपनी पोस्ट तस्वीरों को किसी भी दिनचर्या और घर के पता आसानी से जिसे ट्रैक हो सके उस लूप में मत डालिए
0: जी।
1: और दो तीन चीजें इसमें विशेष ध्यान रखने की है, एक तो आप लाइव लोकेशन शेयर ना करें, जो अगर तस्वीर आप साझा भी करना चाहते हैं तो यात्रा से नोट किया फिर साझा करिए। और इसके बाद प्रोफाइल को आप प्राइवेट रखिए और अनजान लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट तो कतई मत स्वीकार करिए। और जितना हो सके आप अपनी निजी जानकारी जैसे कि आपका फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बैंक पता, बच्चे के स्कूल का नाम, ये सारी चीजें आप मत डालिए सोशल मीडिया पे। और चौथी बात है कि पासवर्ड को हमेशा आप मजबूत रखिए ताकि कोई भी हैकर आपके सोशल मीडिया ऐप का पासवर्ड ना तोड़ ले, उसका गलत ना इस्तेमाल कर ले। और टू फैक्टर की जो हम बात कर रहे थे तो उसमें बायोमेट्रिक इनेबल्ड भी बात होती है और कोड भी होता है, पासवर्ड भी होता है, तो उन चीजों का ध्यान रख के आप जो है सुरक्षित रह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे।
0: बिल्कुल। और डिजिटल सुरक्षा की बात हो तो इससे जुड़ा एक और विषय है जो सामने आता है, वो है साइबर अपराध। आजकल सोशल मीडिया से जुड़े साइबर अपराध के मामले भी काफी बढ़ रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में कौन कौन से प्रमुख साइबर अपराध देखने को मिल रहे हैं और इनसे बचने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और दुर्भाग्यवश यदि कोई व्यक्ति इसका शिकार हो जाए तो उसे सबसे पहले क्या कदम उठाने चाहिए।
1: अगर हम देखें तो हमारी जो साइबर की दुनिया है ये बहुत बृहद हो गई है
0: जी।
1: जिसको कि डार्क वेब कहते हैं, फाइनेंशियल से लेके ढेर सारी चीजें इस पे हो रही हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो साइबर से रिलेटेड अपराध हैं, उसमें जैसे अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट
0: जी।
1: डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि आपका आईडी पासवर्ड हैक कर लेता है और कोई पुलिस अधिकारी बनके, सीबीआई का अधिकारी बनके, जज बनके वो आपसे वीडियो कॉल करके आपको धमकाता है और पैसे हटता है। इसके अलावा साइबर बुलिंग होता है, डिनायल ऑफ सर्विस होता है, और डाटा ब्रीचेज होता है, किसी के डेटा को चुरा लेना उसके वेबसाइट से, मोबाइल से। और आजकल आपने देखा होगा कि जो हम यूपीआई और डिजिटल वैलेट पर सरकार जोर दे रही है, उसमें भी बड़ा फ्रॉड हो रहा है। क्रिप्टो जैकिंग होता है, रैंसमवेयर होता है, फिशिंग होता है, और फ्रॉड अकाउंट बना के भी होता है, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और सेक्सटॉर्शन, अश्लील वीडियो बना के बच्चे बच्चियों को धमकी देना, निवेश के नाम पे, जॉब देने के नाम पे धोखाधड़ी। तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: तो इससे बचने के लिए हम तो सजेशन देंगे कि भाई अपनी सेटिंग को तो देखिए गोपनीय रखिए, बार बार मैं कहूँ प्राइवेट रखिए प्रोफाइल को अपने
0: जी।
1: अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट कतई ही मत स्वीकार करिए। दूसरी बात की ओटीपी और पासवर्ड किसी से भी साझा ना करिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखिए। अगर कोई भी यूआरएल या कोई लिंक अगर आपके मेल पे, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसको ना क्लिक करें जब तक आप समझ न जाए कि कहाँ से है, और जो जानकारी है वो साझा ना करें। दुर्भाग्य से अगर आप साइबर अपराध के शिकार भी हो जाते हैं तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930, मैं फिर से रिपीट करता हूँ श्रोताओं के लिए, राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर है 1930 पर तुरंत डायल करें।
0: बिल्कुल।
1: आपको रिस्पांस मिलेगा और आप अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। अगर आप इंटरनेट यूजर हैं तो आप अपनी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर भी भेज सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट या कुछ इस तरह का फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत पहला स्टेप, फर्स्ट एड आप करिए अपना बैंक खाता, डेबिट क्रेडिट कार्ड को, और तुरंत बंद करिए। अगर मोबाइल में यूपीआई ऐप है तो आप उसको तुरंत लॉक करिए, फ्रीज करें, ताकि हैकर आपसे पैसे ना निकाल सके आपके अकाउंट से
0: जी।
1: और इसके बाद तुरंत ईमेल आईडी बदल दीजिए, पासवर्ड बदल दीजिए, और जो संदेहास्पद जानकारी अगर आती है
0: जी,
1: तो मैंने जैसा कहा था संचार साथी पे दीजिए, चक्षु पे दीजिए, ताकि धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ भारत सरकार एक्शन ले सके।
0: बिल्कुल, घबराने की जरूरत नहीं है, तकनीक का सुरक्षित उपयोग बहुत जरूरी है
1: जी।
0: आज बच्चों और युवाओं में सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में माता पिता और शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए ताकि बच्चे ऑनलाइन सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सोशल मीडिया का संतुलित और सकारात्मक उपयोग कर सकें।
1: जी रानी जी, आपने देखा होगा कि एक युगो शताब्दी त्रापदा आई थी पूरे विश्व पे जिसको कोरोना के नाम से जाना गया
0: जी।
1: उसने क्या किया ना कि हमारा मोड ऑफ लर्निंग बदल दिया। तो हमारे बच्चे ऑनलाइन हो गए, बच्चे घर में थे, पढ़ाई जारी रखनी थी तो सोशल मीडिया के बच्चे संपर्क में आ गया। माता पिता को क्या करना चाहिए ना कि कुछ एक समय निर्धारित करना चाहिए बच्चों के साथ साथ, शिक्षक और हम गार्जियन को भी थोड़ा सा डिजिटल साक्षर होना पड़ेगा। माता पिता की अहम भूमिका ये है कि बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम का सीमा तय कर दें, और एक सोशल मीडिया ऐप और जो फोन, तो उसका एक पेरेंटल कंट्रोल टूल आता है
0: जी।
1: अगर माता पिता जानकार है तो उस टूल को आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन पे भी, बच्चे के फोन पे भी, ताकि आप कंट्रोल कर सके कि बच्चा कोई गलत सामग्री तो नहीं ले रहा इंटरनेट से।
0: बिल्कुल,
1: कोई निजी जानकारी बच्चा शेयर तो नहीं कर रहा, तो कहते हैं एकदम वॉच कर सकते हैं आप
0: जी।
1: और कोशिश करिए कि बच्चों से खुल के बात करिए। इसमें हम शिक्षकों की भी बड़ी भूमिका है कि हम बच्चों को डिजिटल साक्षरता उस कौशल में पारंगत करें, साइबर सुरक्षा का बच्चों को पाठ प्रॉपरली हम पढ़ाते रहें ताकि बच्चे ऑनलाइन धोखाधड़ी न करें, सुरक्षित भी रहें। उसके बाद सकारात्मक सोच भी बच्चों में डालनी पड़ेगी हम शिक्षकों को कि वो कार्य के प्रति प्रेरणादायक चीजें देखें सोशल मीडिया पे, नकारात्मक ना देखें जिससे उनसे मानसिक दिक्कत हो।
0: बिल्कुल, हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है, सोशल मीडिया का अधिक उपयोग कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य और समय के साथ साथ रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है, तो इससे बचने के लिए क्या उपाय अपनाया जाए?
1: जी सही कहा आपने, सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करने से क्या हो रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य, हमारा कीमती समय बर्बाद होता है। इवन हमने तो देखा है कि जो रिश्तों की गहराई है
0: जी
1: वो प्रभावित हो रही है।
0: बिल्कुल,
1: पहले लोग अपनी समस्याएं चाय पे बैठ के टहलते समय कर लेते थे, अब समस्या लोग डिजिटल स्क्रीन पे बिता रहे हैं। तो मेरा तो सबसे अच्छा सजेशन है कि आप कम प्रतिदिन या हफ्ते में फोन व्रत रखें, तो फोन फ्री समय तय कर लीजिए और फोन व्रत रहिए।
0: बिल्कुल,
1: और जो सोशल मीडिया का प्रभाव है इससे क्या है ना कि मानसिक जैसे लगातार उपयोग करने से चिंता बढ़ जाती है, अकेलापन रहता, अवसाद बढ़ने लगते हैं और हम कहीं ना कहीं दूसरे के लाइफ स्टाइल से तुलना करते हैं। अगर बचने के उपाय के बारे में देखा जाए तो दो तीन चीजें कर सकते हैं आप। एक तो समय सीमा तय कर दीजिए, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, फोन फ्री क्षेत्र बना दीजिए, सोने का एक समय निर्धारित कर, और कोशिश करिए कि ऑनलाइन शौक ठीक है अच्छी बात है लेकिन कुछ किताबें पढ़िए, बच्चों को प्रेरित करिए और कुछ नई स्किल सिखाइए। और जो अकाउंट्स जो नकारात्मक चीजें भेजते हैं तो उसको तो कतई मत फॉलो करिए, उसको आप सीधा म्यूट कर दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: तो ये चीजें करके आप काफी हद तक बचाव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, चलते चलते हमारी श्रोता बहनों के लिए आपका कोई खास संदेश?
1: जी, सुरक्षित और समझदारी से इस्तेमाल, सोशल मीडिया इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज हाउ वी यूज इट इन सेफ एंड सिक्योर वे। आप सुरक्षित रहिए, समझदारी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल जीवन के हर पहलू में, हर दिशा में करिए।
0: बिल्कुल, सुभाष जी आपने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम में दिया, इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद रानी जी, और श्रोतागणों को भी मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार।
2: हाँ तो सुन भैया बहन मन, एखन हमरे मन जानकारी करत रही कि सोशल मीडिया पर रहें सावधान, और इकर बारे में हमरे के बतात रहे प्रोफेसर सुभाष चंद्र यादव और उनकर से बातचीत कर रहे हमरे कर रानी बहन। तो जैसे कि आज हमरे मन जान ली कि कामकाजी महिला कर ऊपरे दोहरी जिम्मेदारी रहेला, तो चलो उकर बातें जानब कि काम कर संगे हमरे लिए आराम भी बहुत जरूरी है। तो काम कर संगे आराम कर जरकार तो है ये है, देखो नी दुयो बटे सही संतुलन बनाए राखे ले, मानसिक शांति, ऊर्जा और कार्य क्षमता दुयो कर से बढ़ेला, लगातार काम कर ले तनाव और थकान भी हमरे के होवे लागेला।
3: हाँ एकदम, मतलब बहन से ले जरूरी है दोपहरिया कर खाना खाल बादे तनिक समय कर छुट्टी लेवे कर, तनी मनी हमनी के घूमे फिरे भी चाहिए ताकि इकर से ध्यान और एकाग्रता बढ़ेला।
2: हाँ, और नियमित दिनचर्या कर पालन करे के चाहिए हमरे मन के, जैसे कि बिहान उठते हैं संगे जैसे कि हमरे मन फोन देखे लागेला।
3: हाँ,
2: तो उ सब नहीं करे के चाहिए, ताजा ताजा हवा हमरे मन के लेवे के चाहिए, मधुर संगीत कर आनंद उठाए के चाहिए, और संगे व्यायाम के अपन दिनचर्या में जरूर हमरे मन के शामिल करे के चाहिए, काले कि व्यायाम हमरे लिए बहुत फायदेमंद है और जीवन के ठीक से चलाई खातिर तनी रुके और आराम करे बहुत जरूरी है।
3: एकदम,
2: सेले काम कर संगे संगे आराम बहुत जरूरी है। तो अब तो हमरे कर जाय कर बेरा हो जाए, तो अगला कार्यक्रम में हमरे मन बहिन कर संगे फिर से गोठिया, तब तक खातिर देव विदा, जोहार
3: जोहार।
4: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

सबसे पहले सुनवाते हैं आपको कहो ना प्यार है फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं लकी अली और राम्या की। इब्राहिम अश्क ने इस गीत को लिखा है, राजेश रोशन ने संगीत दिया है।

समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। फिल्म है जोश और आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

शंकर महादेवन की आवाज में आइए अब सुनते हैं फिर मिलेंगे फिल्म का ये गीत। प्रसून जोशी के बोल हैं, शंकर एहसान लॉय का संगीत है।

आइए अब सुनते हैं थ्री इडियट्स फिल्म का ये गीत, आवाज है शान की, स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, शांतनु मोइत्रा का संगीत है।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए आपको सुनवाते हैं बजरंगी भाईजान फिल्म का। इस गीत को गाया है राहत फतेह अली खां और रेखा भारद्वाज ने। गीत के बोल लिखे हैं नीलेश मिश्रा ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। एक बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आरएन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा

0: है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया, 6th नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक सामान्य बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian contingent for winning gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026 held at Bucaramanga, Colombia. In a social media post, Mr. Modi said their feat reflects yet another example of the limitless potential of the nation's Yuva Shakti and their passion towards science and research. The Prime Minister further noted that it is equally commendable that in the last decade, Indian students have performed exceptionally well in the various editions of this platform. The government today informed that 4 new generation indigenous naval platforms were inducted into the Indian Navy in just 1 month to strengthen the country's maritime defence. The latest addition is INS Mahendragiri, the 6th indigenously designed Nilgiri class stealth frigate, which was inducted on the 11th of this month. A report.
2: On 21st of last month, the Indian Navy inducted 3 indigenously designed and built platforms, namely INS Dunagiri, INS Sansodhak and INS Agraya. These frigates are built under Project 17A for multi-mission roles, including anti-air, anti-surface and anti-submarine warfare. Project 17A is the Indian Navy's advanced stealth frigate program to build 7 next-generation guided missile warships equipped with advanced stealth features, enhanced survivability, a reducer radar signature and a high degree of automation. These warships are capable of undertaking the full spectrum of maritime operations across all dimensions of naval warfare. Built with a high indigenous content, these platforms reflect the vision of Atmanirbhar Bharat and strengthen the country's defense manufacturing ecosystem. With Pallavi Parmar, this is Ankit Kumar, Akashwani News, Delhi.
1: The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in the boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam will be repatriated from Ho Chi Minh City to India today by Vietnam Airlines flight. The Indian Embassy in Vietnam, in a social media post, said the flight is scheduled to depart from Ho Chi Minh City at 6 p.m. local time and is expected to arrive at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport at 9:35 p.m. Indian Standard Time. In West Bengal, two new anti-crime laws have become effective from today. Governor R. N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. The State Assembly passed the two stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill. Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. Secretary in the Ministry of Panchayati Raj Vivek Bharadwaj today emphasized the need for collective action to make the country self-reliant in water management. He was addressing the inaugural session of National Level Training of Master Trainers Program on Water Budgeting and Water Security Planning by Gram Panchayats in New Delhi. Mr. Bharadwaj said meaningful change can be achieved when everyone comes together to work towards a common goal. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has claimed responsibility for missile and drone strikes on U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait as part of its ongoing Eye for an Eye operation. The attacks were described as retaliation for recent U.S. strikes on Iranian military targets. According to Iran's state news agency, the operation targeted the Prince Hassan Air Base in Jordan, Sheikh Isa Air Base in Bahrain and Ali Al Salem and Ahmad Al Jaber Air Bases in Kuwait. The IRGC claimed it damaged fuel depots, ammunition storage facilities, air defense systems and radar infrastructure. The development comes after CENTCOM launched a major wave of offensive precision strikes across multiple locations in Iran yesterday. The Intermeteorological Department has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during the next 2 to 3 days and isolated heavy falls in east Uttar Pradesh over 4 to 5 days. Benchmark domestic equity indices erased their early losses and were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex advanced 61 points to 77,631, while the Nifty added 5 points to 24,211 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
3: Akashvani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. Namaskar. प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए। स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ करना उद्देश्य। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने अपराध के खिलाफ आम नागरिक एकजुटता पर दिया जोर। मोहल्लों में नागरिक सुरक्षा समिति बनाने की अपील की। रामगढ़ के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अंबष्ट की याचिका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया संज्ञान। तमिलनाडु में झारखंड के मजदूरों को मिलेगी राहत। कतरास के करकट्टा जंगल में कोयला माफियाओं के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई। सीआईएसएफ ने 200 टन अवैध कोयला किया जब्त। और इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करना है। मंत्रालय ने कहा कि यह मसौदा नीति विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श और उनसे प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं को शामिल करते हुए तैयार की गई है। मंत्रालय ने 27 जुलाई तक टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपराध के खिलाफ आम नागरिकों की एकजुटता पर जोर दिया और मोहल्लों में नागरिक सुरक्षा समिति बनाने की अपील की।
4: कोई घर में काम करने आए तो उनका आधार कार्ड जरूर लाओ, उनका चेहरा मिलान करो, ताकि ऐसे असामाजिक तत्व आपकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाए। और रोजाना जो डकैती, चोरी और जो हत्याओं का दौर जमशेदपुर और सब जगह शुरू हुआ है, इसलिए नागरिक सुरक्षा समिति का गठन और कौन बाहरी व्यक्ति आ रहा है उसके पूरे मूवमेंट पर नजर रखें, ताकि अपने लोगों की हम सुरक्षा कर सकें।
3: रामगढ़ के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की याचिका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के मजदूरों की सहायता के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। याचिका में प्रभावित मजदूरों के सुरक्षित घर वापसी, आर्थिक सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था करने की भी मांग की गई थी। धनबाद की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का मामला अब कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। सांसद की ओर से 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने, आरोप वापस लेने, सोशल मीडिया से संबंधित सामग्री हटाने और 2 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। ऐसा नहीं होने पर दीवानी और आपराधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में कल देर शाम ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान का विरोध कर रहे असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और 2 बम भी फेंके। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ राजकीय श्रावणी मेले में इस वर्ष 50 लाख से ज्यादा भक्तों के बासुकीनाथ पहुंचने का अनुमान है। मंदिर प्रशासनिक समिति के सचिव और दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी कौशल किशोर ने संबंधित अधिकारियों और धर्म रक्षणी सभा के सदस्यों के साथ बैठक की। अनुमंडल पदाधिकारी ने तैयारियों की जानकारी दी।
5: पंडा धनुष सभा सदस्यों के साथ एक मंदिर में बैठक की गई है, जिसमें श्रावणी और भादो मास में मंदिर खुलने का समय, जलार्पण स्टार्ट करने का समय, अर्घा लगाने का जो गाइडलाइन है और जो एसओपी बनाया गया है कि अर्घा कब लगाया जाएगा, उसके संबंध में निर्णय लिया गया है। और कांचा जल चढ़ाने वाले लोग हैं उनका भी संख्या लिमिट किया गया है। और जितने भी पंडा समाज के लोग हैं, जो धर्मनिष्ठ सभा के द्वारा जो लिस्ट बनाया जाएगा, जिनको आई कार्ड दिया जाएगा, उसकी सूची को इनको प्रायर अप्रूवल करा लेना है।
3: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कतरास के करकट्टा जंगल में कल CISF ने अब तक का सबसे बड़ा सर्च अभियान चलाकर 200 टन अवैध कोयला जब्त किया और कोयला माफियाओं के बड़े नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई की। कमांडेंट अमित कुमार के नेतृत्व में करीब 70 CISF जवानों, CCL प्रबंधन और मैकलसीगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने पिपरवार क्षेत्र में गोपनीय सूचना के आधार पर जंगल के भीतर चल रहे अवैध खनन और तस्करी के अड्डे को ध्वस्त किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
6: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गए। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। जामताड़ा जिला योग संघ की पहल पर डीएवी विद्यालय परिसर में अंतर विद्यालय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला योग संघ के सचिव दीपक दुबे ने बताया कि प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागी चाईबासा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
7: इंटर स्कूल योगा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, इसमें पूरे जामताड़ा के 15 स्कूलों से लगभग 250 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे खिलाड़ियों को हम लोग प्लेटफॉर्म देने का कार्य कर रहे हैं और ये जामताड़ा जिला योग एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। आने वाले समय में जो बेहतर खिलाड़ी होंगे वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चाईबासा में जामताड़ा जिला को प्रतिनिधित्व करेंगे।
3: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बिंदाले, नई दिल्ली के रुषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए। स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ करना उद्देश्य। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने अपराध के खिलाफ आम नागरिक एकजुटता पर दिया जोर। मोहल्लों में नागरिक सुरक्षा समिति बनाने की अपील की। रामगढ़ के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की याचिका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया संज्ञान। तमिलनाडु में झारखंड के मजदूरों को मिलेगी राहत। कतरास के करकट्टा जंगल में कोयला माफियाओं के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई। सीआईएसएफ ने 200 टन अवैध कोयला किया जब्त। और इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक किए पूरे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं शिप्रा बोस। इनसे आज आप सुनेंगे मिश्र खमाज मिठुमरी और दादरा।

अनुरंजनी में अभी आप सुन रहे थे शिप्रा बोस से मिश्र खमाज में ठुमरी और दादरा। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं डॉक्टर कुमार आनंद, संगतकार हैं सिंथेसाइजर पर मुकुल राय, नाल पर सतीश मिश्रा, गिटार पर कृष्ण कुमार गुप्ता और तबले पर कामाख्या डे। सबसे पहले सुनते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का लिखा ये गीत डॉक्टर कुमार आनंद की आवाज़ में।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत में आप सुन रहे थे डॉक्टर कुमार आनंद से कुछ गीत। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 2 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Goodwin reports last came in. In the global crude oil market, Brent crude was trading 3.3% up at $78.51 per barrel when reports last came in. In tennis, top seed Italy's Yannick Sinner retained his Wimbledon men's singles title, beating second seed German Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in the final at the All England Club last night. This is Sinner's second consecutive Wimbledon men's singles title and his fifth Grand Slam crown. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court says determination of citizenship and foreigner status must be carried out through a fair, lawful and reasonable process. Sets aside Guwahati High Court's decision declaring 27 appellants as foreigners. Apex Court seeks status report from the SIT probing alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple. President Draupadi Murmu takes cognizance of matter regarding Jharkhand workers affected by ammonia gas leak in Tamil Nadu, directs immediate action. Mortal remains of 15 Indians who died in Vietnam boat tragedy to be brought back home tonight by a Vietnam Airlines flight. Iran strikes U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait in retaliation to U.S. attacks on its military targets. And in women's cricket, hosts England to resume their second innings at 130 for 6 against India in historic one-off test at the Lord's. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए

0: जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्र गिरी है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमेरिका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो 6 लाख लगाई है, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे नहीं हुआ। अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने FDI के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे अंदर।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न

0: करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिएगा कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रूपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य निशान बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमेरिका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं।

0: एंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के 4th दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। लेकिन उससे पहले ये संदेश।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: जय भारती में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं एआर रहमान की आवाज में स्वदेश फिल्म का ये गीत। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है एआर रहमान ने।

अगला गीत आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म है हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया। कुमार के लिखे बोलों को संगीत से सजाया है शारिब तोशी ने।

महबूब के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है इस्माइल दरबार ने। फिल्म है हम दिल दे चुके सनम। गायक कलाकार हैं कुमार शानू, कविता कृष्णमूर्ति और साथी।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए अब सुनते हैं जब प्यार किसी से होता है इस फिल्म का। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और कुमार शानू ने। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, जतिन ललित ने संगीत से सजाया है।

0: इस गीत के साथ ही फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 2:55 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में जारी है। बैठक में तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नए कोर्सेज को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है और विभागीय योजनाओं की प्रगति की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री के साथ विभाग के सचिव, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन का एक नया रिकॉर्ड बना है जो बढ़कर 4.5 करोड़ तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ताजा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट के हवाले से बताया कि यह संख्या 2014-15 की तुलना में 31.5% अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और स्टेम विषयों में विद्यार्थियों का बढ़ता नामांकन समावेशी भारत का एक बड़ा संकेत है। रांची से सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से एक मरीज के इलाज के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि एयरपोर्ट रोड हुंडरू निवासी दीपक कुमार साहू को गंभीर बीमारी के उपचार के लिए प्रदान की गई है। इस मानवीय सहायता के लिए श्री सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए मरीज के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जामताड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर आज सदर अस्पताल में दिव्यांग जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों की जांच कर उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सिविल सर्जन डॉ. शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि स्वावलंबन पोर्टल पर पंजीकृत 60 से अधिक दिव्यांगों की जांच कमेटी द्वारा की जा रही है, जिसके बाद प्रमाण पत्र डाक के माध्यम से सीधे उनके घर भेजे जाएंगे।
2: दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए प्रक्रिया है कि एक स्वावलंबन पोर्टल है जिसमें प्रमाण पत्र चाहने वाले अपनी सारी डाटा को उसमें एंट्री करते हैं, दिव्यांग कैंप में बुलाकर उनका दिव्यांग प्रतिशत जांच करके प्रक्रिया अनुसार उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करते हैं जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा उनके घर तक पहुँचा दिया जाता है।
1: इस पहल से जिले के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों से आए दर्जनों जरूरतमंद परिवारों को सीधे लाभ पहुंचा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड कैडर के 2006 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और वर्तमान जेल आईजी सुदर्शन मंडल की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें हृदय संबंधी समस्या के बाद आईसीयू में रखा गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रही है। पूर्वी सिंहभूम के आदिवासी बहुल डुमरिया प्रखंड के पहाड़ी गांव लाखाई टी में पारंपरिक हर्बल चिकित्सा को वैज्ञानिक आधार देने की दिशा

0: अगस्त से गुवाहाटी के लिए भी नई सेवा शुरू होगी। भारत की जूनियर हैंडबॉल टीम चीन के चुझोऊ में 15 से 26 जुलाई तक होने वाली 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जमशेदपुर से रवाना हो गई है। यह टीम चीन के लिए रवाना होने से पहले जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुई थी। खेल पदाधिकारियों ने टीम के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं।
1: 19 द जूनियर एशियन चैंपियनशिप चाइना जुचाओ में ये चैंपियनशिप 15 से 26 जुलाई आयोजित हो रहा है। इस प्रतियोगिता से वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई भी मैच है और इस प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए यहाँ टाटा स्टील प्लांट में जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कैंप लगा था।
0: खेल विशेषज्ञों को उम्मीद है कि टीम इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहर। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदे नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था। इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनआर प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
2: जी, इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ

0: गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे जी, प्रणय, प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
1: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
1: श्रोताओ, इसका जवाब जान लेते हैं। मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
0: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: जी, इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
0: जी, अश्रोताओ, हमारा अंतिम प्रश्न था। हमने आपसे पूछा था, जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
1: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
0: जी, तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: हमारे घर के सारे सामान
3: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी
4: फसल बह गई।
5: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
3: लो भाई, पहुंच गए सरेदपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
4: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
3: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
5: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
3: अरे काट काट काट, मेरा भी क्या देख रहा काट।
2: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
5: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
6: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
5: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
3: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
4: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
5: गर्मियों का मौसम था। लोग कहते, उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
3: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
7: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
5: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
8: हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
4: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
3: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे फसल बर्बाद,
4: सारी फसल बह गई।
8: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा, सारा सामान
4: इन्हे जल्दी से
8: ऊपर ले जाना होगा।
4: चलो जल्दी ऊपर,
8: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी चलो।

0: चलो चलो चलो,
1: ये पानी है, चाबी
0: पकड़ लेना,
1: ध्यान से जाना, सांप आप ना आ जाए।
0: ध्यान से संभल कर।
2: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
3: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
4: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा दाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता, मैं ही जीवन हूं धरती का। मुझे नष्ट मत करो, मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: किंदौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी,
4: अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है?
3: आ रही हूँ चाची।
2: हाँ चाची।
5: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
4: कोई घबराने वाली बात नहीं है री।
1: हाँ?
4: वो गौरा कह रही है
1: हाँ?
4: कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
1: हाँ? छत्ते? क्या मतलब?
4: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ
5: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
1: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी पर तो हो ही जाएगा।
5: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: चप्पर फाड़ गए।
1: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
5: हाँ, हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
1: हाँ, हाँ,
3: चल चलते हैं।

0: ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है।
3: हाय राम,
1: ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि

0: ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
1: मगर कैसे?
0: भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं। अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं, वो रास्ता छोटा लगेगा।
2: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
3: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
0: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
1: हाँ, ठीक है, ठीक है। मगर ये औरतें और बच्चे।
0: अरे अगर मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
1: हाँ,
0: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा।
1: हाँ,
0: अरे कोई है? अरे बाहर निकलो, चाची।
4: हाँ, क्या बात है?
0: बुआ जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
2: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे, सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
0: सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं,
1: बिल्कुल
0: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
5: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
0: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो। शिब्बा, तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
6: अरे भागियो, देखते क्या हो, आगे बढ़ो और ये पकड़कर पेड़ों से अलग कर दो।
2: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़

0: काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती, तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
1: चिब्बू भाग ले यहाँ से,
2: बाद में
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
3: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया।
1: ऐसी चिपकी पेड़ से किसी ने छोड़ा ही नहीं
4: पेड़। कर्तव्य है
0: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
5: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को
5: कुसुमलता,
6: जगबंधु,
5: चेतना
6: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार, नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए अब सुनते हैं रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज में आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में खामोशियां फिल्म का ये गीत। रश्मि सिंह ने इस गीत को लिखा है, जीत गांगुली ने संगीत दिया है।

राम संपत के संगीत से सजी तलाश फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और आवाज है राम संपत की ही।

रब ने बना दी जोड़ी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। शब्द रचना जयदीप सहनी की है और धुन बनाई है सलीम सुलेमान ने।

शिल्पा राव, अमिताभ भट्टाचार्य और अमित त्रिवेदी की आवाजों में आइए अब सुनते हैं लुटेरा फिल्म का ये गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

पापोन की आवाज में आइए अब सुनते हैं दम लगा के हैसा फिल्म का ये गीत। वरुण ग्रोवर के बोल हैं, धुन है अनु मलिक की।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए वो सुनते हैं MM करीम और KK की आवाजों में फिल्म स्पेशल 26 से इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगीत से सजाया है MM करीम ने।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर पुनरीक्षण अभियान पर चर्चा की। आयोग के अध्यक्ष शमशेर आलम ने शिकायतों के त्वरित निपटारे पर संतोष जताया। गड़बड़ी मिलने पर धनबाद और गढ़वा के 2 बीएलओ की सेवा समाप्त कर दी गई है। भाजपा ने राज्य सरकार पर निवेश के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि दावोस और दिल्ली यात्रा के एमओयू केवल पुरानी योजनाओं की रीपैकेजिंग है। उन्होंने केंद्र की अनुमति के बगैर परमाणु बिजली घर समझौते पर कड़ी आपत्ति जताई। देवघर में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक हुई। बैठक में कर्रो, सारठ और पालोजोरी में नवजात शिशुओं के लिए केयर यूनिट तथा बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा और एआई प्रशिक्षण सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने एआईआर अभियान की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची को अधिक शुद्ध बनाने के लिए चुनाव पाठशाला और बीएलओ की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। सरायकेला खरसावा जिले के गम्हरिया में आज वीर शहीद रतिलाल महतो का 27वां शहादत दिवस श्रद्धा के साथ मनाया गया। ऊपरबेड़ा में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में झामुमो नेता कालीदीप सोरेन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्य में आगामी कई दिनों तक मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा, जिससे अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने संथाल परगना और कोल्हान सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए वज्रपात की चेतावनी दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आओ साथ चले। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी आज सरकारी योजनाएं बदलाव की नई उम्मीद। भेंट वार्ता का विषय है विकास की राह पर लौटते कदम। इस विषय पर इंदी पहन से बातचीत की है सिंधु मिश्रा ने। कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संयोजन गौरव कुमार पांडे की और प्रस्तुति स्वर है सिंधु मिश्रा का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें।

कार्यक्रम आओ साथ चले में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वीकार करें कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, झारखंड शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। झार या झाड़, जो स्थानीय रूप में वन का पर्याय है, और खंड यानी टुकड़ा। हमारा यह राज्य मूलतः एक वन प्रदेश है। यहाँ की प्राकृतिक छटा बेहद सुंदर और मनोरम है। हरे भरे वनों से भरे पहाड़ और पठार, कई जलप्रपात, अभयारण्य, नहर एवं कई ऐसी जगह यहाँ देखने योग्य हैं। प्रचुर मात्रा में खनिज की उपलब्धता के कारण इसे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। हमारे झारखंड राज्य में कई ऐसे गांव हैं। विकास की प्रमुख योजनाएं उन गांवों और ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाई है जिसके वे हकदार हैं। आज सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने और इसे क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सी योजनाओं का लाभ लोग ले भी रहे हैं, परंतु इसके लाभ से वंचित बहुत से लोग जो अति पिछड़े क्षेत्रों के हैं, जागरूकता और जानकारी का अभाव आज भी इनमें देखा जा रहा है। श्रोताओं, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनकी वजह से हमारे भोले भाले भाई बहन आज बेरोजगारी की वजह से अपने गांव, अपने समाज से दूसरे क्षेत्रों, नगरों, महानगरों में रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। ऐसे लोग मानव तस्करी जैसी गंभीर समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। वहीं एक और गंभीर समस्या हमारे सामने नक्सलवाद के रूप में चुनौती बन

0: कर खड़ी है। आज विकास की योजनाओं का लाभ जिन्हें नहीं मिल पा रहा, वे मजबूर होकर गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी की वजह से समाज की मुख्य धारा से भटक रहे हैं। श्रोताओं, बहुत सी सरकार की विकास हेतु कल्याणकारी योजनाएं लाई गई हैं, जैसे नरेगा के तहत डोभा तालाब का निर्माण, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गो पालन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान सरकार की ओर से अत्यंत पिछड़े एवं गरीब ग्रामीण भाई बहनों को दिए जा रहे हैं। रोजगार दिलाने हेतु कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कौशल विकास। इसके तहत अकुशल हुनरमंदों एवं जरूरतमंदों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वे स्वयं अपने पैरों पर पूरे आत्मसम्मान एवं आत्मबल के साथ खड़े होकर आत्मनिर्भर हो सके। साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरे और ये अपने परिवार, समाज एवं देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सके। श्रोता मित्रों, जब हम में आत्मविश्वास और जागरूकता की कमी आती है, तब हम में भटकाव देखने को मिलता है। समाज की मुख्य धारा से भटकाव, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इन्हें हम मान सकते हैं। साथ ही स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार जैसी बुनियादी सेवा के अभाव के कारण भी लोगों में भटकाव देखा जा रहा है। आज जो भाई बहन समाज की मुख्य धारा से भटक कर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और विभिन्न समस्याओं और यातनाओं को झेल रहे हैं, उनके लिए हमारी सरकार द्वारा समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने हेतु आत्मसमर्पण नीति बनाकर एवं कई लाभकारी योजनाओं से जोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसका अपेक्षित परिणाम देखने को मिल रहा है। समाज की मुख्य धारा से भटके हुए बहुत से लोग वापस आकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज के हमारे आओ साथ चलें कार्यक्रम में हमारी बातचीत समाज की मुख्य धारा से भटके हुए जो अब समाज की मुख्य धारा से जुड़कर परिवार, समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग कर रहे हैं, ऐसे ही एक व्यक्ति से हो रही है। तो आइए करते हैं बातचीत। आत्मसमर्पण कर चुके, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे एवं शांति में जीवन बिता रहे एक भाई से। सबसे पहले आइए इनका नाम जानते हैं। आपका नाम बताइए।
1: इंदी पाहन।
0: किस गांव के रहने वाले हैं आप?
1: ग्राम नचलदाग, थाना नामकुम है।
0: तो नचलदाग कैसा गांव है?
1: है तो ऐसे जनरली देहाती है, कोई जंगल जंगल एरिया है, और वहाँ ऐसे तो हम लोग रहते हैं बहुत 100 परिवार से लगभग ज्यादा है।
0: अच्छा।
1: और वहाँ ऐसे कुछ ऐसे तो सरकारी के कोई ऐसा विकास तो हुआ ना, अभी नहीं हुआ है।
0: अच्छा।
1: लेकिन इससे हम लोग औजा कुछ और था, इसीलिए कुछ अपने मन में कुछ दबाव भी पड़ा, कुछ परिस्थितियां भी पड़ी, तब हम लोग मैंने अपना रास्ता से कुछ भटक गए थे।
0: नचलदाग जो है गांव, वहाँ पे लगभग कितने लोग अभी रह रहे होंगे?
1: अभी तो लगभग वही 100 परिवार से ज्यादा हैं।
0: क्या काम कर रहे हैं लोग?
1: वही तो बस वहाँ तो खाली खेती बाड़ी का और मजदूरी ही काम करते हैं, और नौकरी काम करना तो बहुत ही कम है।
0: खेती बाड़ी कर रहे हैं तो क्या खेती में क्या काम कर रहे हैं, क्या उगाते हैं?
1: वही तो सीजन, एक ही सीजन खेती तो मात्र मैंने एक सीजन होता है, धान उन खेती करते हैं, वही सब दाल वही सब होता है। और गर्मी का सीजन में तो ऐसे और लोग गाँव से मैंने बाहर काम करने के लिए चल जाते हैं।
0: ज्यादातर लोग खेती बाड़ी और दैनिक जो काम किया जाता है मजदूरी का, उसमें लगे हुए हैं। और आप क्या कर रहे हैं?
1: काम तो हम पहले पढ़ाई करने के बाद घर में कुछ ही दिन थे, वही एक ही 2 साल थे घर गांव में, खेती बाड़ी हम ही कर रहे थे, नौकरी के लिए इधर उधर गए थे। लेकिन वैसे ही परिस्थिति में मैंने कुछ गांव में लफड़ा हुआ और गांव के लोग बिना दोषी में मैंने हमको दोषी करार किया और मेरा ऊपर मुकदमा चलाया और मैंने जेल हम चले गए।
0: अच्छा।
1: उसके बाद में हम जेल से जब निकले तो हमें 20 साल का सजा हो गया था। तो निर्दोष में 20 साल का सजा होने के बावजूद मैंने जेल से निकलने के बाद मैंने थोड़ा मन में बहुत में गुस्सा।

0: पैदा हुआ गया इस तरह। तब मैंने उसी समय मैंने पार्टी से संपर्क किया और मैं पार्टी में चला गया। जेल निकलते ही हम पार्टी में चले गए।
1: आपने कहा कि आपने पढ़ाई लिखाई भी की है, तो कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं?
0: पढ़े लिखे हम इंटर तक किए हैं।
1: अच्छा, तो इंटरमीडिएट तक आपने पढ़ाई की और फिर गांव में रहते थे?
0: जी हाँ,
1: अच्छा,
0: गांव में ही रहते थे।
1: अच्छा, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप खेती बाड़ी का काम कर रहे थे?
0: जी हाँ।
1: अच्छा, तो नौकरी की तलाश आपने की?
0: नौकरी की तलाश की थी, लेकिन वैसे 2 ही 3 साल उसके बाद तो वही ज़्यादा दिन हम घर में, कम से कम 2 ही साल थे पढ़ाई के, आने से बाद में हम 2 साल ही थे। 2 साल के अंदर में ही मेरा इस तरह का घटना हुई और हम जेल चले गए।
1: तो आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जिसके वजह से आपको जेल तक जाना पड़ा?
0: वैसे आदमी का मैंने एक होता है ना कि कोई चीज थोड़ा बढ़ता है तो उसको गिराने का ही संभव है। उसी तरह से हमको किया गया। दूसरी में कुछ हम अब समाज का ही काम कर रहे थे तो वही लोग मेरा ऊपर में कोई चीज डला और लोग कुछ आदमी को समझा बुझा के हमको मैंने अपना काम से मैंने भटकाने का, गिराने का कोशिश किया।
1: मतलब निर्दोष होते हुए आपको जेल जाना पड़ा और यही आपके अंदर एक बेचैनी जैसी बात हुई और आपने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया।
0: जी हाँ।
1: जब समाज की मुख्य धारा से आप भटक गए, दूसरा रास्ता आपने अपना लिया, तो वहाँ पर क्या आपको समस्याएं झेलनी पड़ी? और
0: वहाँ तो समस्या बहुत से झेलनी पड़ी। कुछ दिन 3 साल जैसे पार्टी में थे तो बहुत ही वैसे पुलिस से भी तंग आने लगे, सब तरह से तंग आने लगे। जंगल में रहने से तो गांव जैसा तो नहीं रहना पड़ता है, तो परिवार के साथ अलग रहना पड़ता है। इसी तरह हम लोग वन में ही रहते थे, इसे इधर उधर भटक ही रहते। लेकिन जब और केस पड़ा हम लोग के ऊपर, फिर कुछ कांड उंड होता था तो हम लोग का फिर केस होते हो रहा था, तब इधर गांव तरफ से भी परिवार लोग को भी तंग होने लगा। फिर हम लोग को तो तंग हो ही रहता है, तो भाई गांव परिवार का भी सोच और कुछ इधर जो आईजी थे प्रवीण कुमार, वो उसके तक हम लोग का नंबर उम्बर पहुंचा, साथ में कुछ पकड़ाया तो उन्हीं लोग के थ्रू से हम लोग का नंबर उम्बर लेके वही ने समझाया, और साथ में MS भाटिया भी थे, वो लोग समझाया कि आप लोग सरेंडर कर दीजिए कि आप लोग का नौकरी मिलेगा। लेकिन हम लोग को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोग को चौक चाहिए, मैंने कि लोग बहला फुसला के किसी तरह से मैंने पकड़ लेगा और जेल में डाल देगा। हम लोग का तो यही हो रहा था, लेकिन विश्वास तो नहीं हो रहा था। लेकिन उन लोगों ने बहुत प्रेस किया, करने के बाद हम लोग बोले कि ठीक है देखते हैं, कम से कम हो या ना हो। आखिर हम लोग इधर उधर भटकिए रहे हैं, तो हम लोग ने सोचा कि अब कुछ भी हो, तो पहले हमने जेल तो खट चुके थे, तो हमने सोचा कि जेल ही जाएंगे तो क्या करेगा। तो जब जब 10 साल हम खाट ही ली, 20 साल का सजा हुआ था, तो 10 साल में मुझे हाईकोर्ट ने बारी किया था, तो हमको जेल के बारे में भी जानकारी था। तो मैंने सोचा चलो जेल ही सही, कम से कम वहाँ शांति से तो रहेंगे। अब जो दे चाहे नहीं दे, वो तो अब भगवान के ऊपर छोड़कर हमने उन लोग का बात मानकर हम लोग ने सरेंडर किया। और सरेंडर करने के बाद तो 1.5 साल तो जेल खटना ही पड़ा फिर से। लेकिन जैसे ही हम लोग का केस ख़त्म हुआ और कुछ दिन के बाद हम लोग का सरकार थे वो हम लोग को नौकरी दे दिया, और नौकरी भी दिया, और सरकार जितना करीब करीब जितना वादा किया था वो लोग जितना हम लोग को बोले थे करीब करीब हम लोग को दे ही दिया है। इसे जमीन दिया,
1: अच्छा,
0: प्लस नौकरी दिया, और केस के केस लड़े थे उसका जो पैसा हम लोग ने लगाए थे उसका भी भरपाई किया।
1: अच्छा।
0: इस तरह से करीब मैंने जो भी जितना पैसा दिया बोला था उतना सरकार जो वादा किया था करीब करीब मैंने हम लोग को पूरा दिया ही। तो नौकरी भी दिया, फिर अलावा जिस दिन हम लोग भटक गए थे अपना परिवार को लेके जहाँ तहाँ रहे उसका भाड़ा भुता देना दिए थे, उसका भी पूछ पूछ के बोला कि खर्चा कहाँ किए हो, तो जिसका घर में रहते थे वो इतना तक कि घर भाड़ा सब भी दे ही दिए, वो भी दिए। इस तरह से जितना दिया सहयोग बहुत किया। अब आजकल है कि हम लोग शांति जीवन जी रहे हैं। फिर बोले थे कि मैंने लड़का 2 लड़का का जो पढ़ाएगा उसका भी दाम मैंने लगाएंगे कोई भी स्कूल में बोलते हैं, लेकिन ये भी हम लोग कर रहे हैं कि बहुत लोग का बाल बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे मेरा भी एक पढ़ रहा है, तो उसका मैंने हम प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़ाने के बाद हम बिल जमा कर देते हैं, तो फिर तुरंत तो नहीं देता है लेकिन

0: एक साल होते होते करीब उसका भी पैसा सरकार हम लोग को चुकती चुकती कर रहा है। तो यही सब विश्वास है कि बहुत भाई हम लोग भटक गए थे, तो और हम चाहते हैं कि हम लोग जैसा और भाई लोग भटक रहे हैं वो लोग चाहे माने कि हम लोग का मुख्य धारा में आए तो माने बेहतर होगा। नहीं क्या
1: सही कहा आपने, आपने कहा कि सरेंडर करने के बाद आपको सरकार की तरफ से जो चीज़ें मिलनी चाहिए योजनाओं के तहत जितनी चीज़ें मिलनी चाहिए ज़मीन पैसे और जो आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मिली और नौकरी भी मिली। तो अभी आप कौन सी नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
0: अभी तो हम पुलिस में हैं, हाँ पुलिस में ही अभी पेट्रोलिंग ड्यूटी जैसे पुलिस और जो पुलिस है जिन लोग को ऐसा करता है बस हम वैसा ही हम लोग को भी काम ड्यूटी मिलता है।
1: अच्छा, तो पेट्रोलिंग वाले में क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है?
0: पेट्रोलिंग में तो अभी जैसे थाना का पेट्रोलिंग होता है अलग चीज़ होता है, और हम लोग पेशियार और हाईवे का ड्यूटी थोड़ा सा कुछ और होता है। हम लोग जैसे 12 हाईवे 12 में हम अभी करते हैं, उसमें से हम लोग यही करते हैं कि रोड रोज चलना है और जगह जगह कुछ कुछ रुकते जाना है, और कहीं अगर एक्सीडेंट हुआ तो बस तुरंत उसका खबर मिलते ही वहाँ चल जाना है, और जो वहाँ जो लगता है उसको तुरंत उठा के हम लोग हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं, और हॉस्पिटल पहुँचा के उसका परिजन को खबर दे देते हैं, बस उतना ही। उसके बाद तो फिर अपना ड्यूटी में फिर वापस आ जाते हैं।
1: तो ये ड्यूटी करते हुए आपको कैसा लग रहा है?
0: ये तो बहुत ही अच्छा लगता है, काहे कि मैंने ऐसा है कि पब्लिक का ही साथ में रहना है और पब्लिक का ही सेवा करना है, तो इसलिए ड्यूटी तो अच्छा ही लगता है।
1: इंदी पाहन जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे आप समाज की मुख्यधारा से भटक गए थे और जो भी परेशानियां आपको आई उस वक्त आप का आपने काफ़ी समस्याओं का आपने सामना किया है, साथ ही साथ आपके साथ साथ परिवार वालों ने भी उन समस्याओं को झेला है, है ना आपके पीछे। और अब जो आप नौकरी कर रहे हैं पेट्रोलिंग वाली ड्यूटी कर रहे हैं इसमें आपको अच्छा भी लग रहा है, तो दोनों में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं, समाज की मुख्यधारा से जब आप भटके हुए थे तब और अब की ज़िंदगी, आपको दोनों में कैसा महसूस हो रहा है?
0: दोनों में तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क है।
1: बिल्कुल,
0: कहा है कि उसमें शांति नहीं था, और इसमें शांति है। और क्या क्या बताएं उससे ज़्यादा,
1: सही बात है। और एक आदमी को शांति में जीवन बहुत ज़रूरी है जीने की। तो आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं?
0: हमारे परिवार में तो अभी माता पिता है और भाई लोग हैं, और अपने परिवार दो एक लड़का और एक लड़की है मेरा, बस उतना ही है।
1: तो परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी आप ही पर है?
0: हाँ मेरा ही पर है, और बाबूजी सब अभी है, खेती बाड़ी भी है, इसीलिए तो अभी बाबूजी सब जब तक रहेंगे तो खैर उन्हीं लोग के ऊपर है।
1: अच्छा,
0: लेकिन हाँ तो कुछ होता है तो हम लोग सपोर्ट तो एकदम करवे करते हैं, अब असना उतना ही थी तो नहीं है, इसीलिए हमने हम लोग मैंने पूरा परिवार अभी ठीक है।
1: तो समाज की मुख्य धारा से जब आप जुड़े परिवार के बीच आए तो आपके परिवार वालों ने क्या कहा आपसे, सबसे पहले जब आप अपने परिवार के बीच आए तो कैसा उन लोगों को लग रहा था? आप
0: उन लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा था कि पहले आप जहाँ तहाँ भटक रहे थे, और कब कहाँ होगा कब उसका कोई गारंटी नहीं था, और कोई हम लोग को थाना पुलिस भी आके घर में आके कुछ भी बोलता था, लेकिन जब से सिलेंडर करने के बाद मैंने कोई ऐसा कोई आदमी आता नहीं है, और अभी हम लोग मैंने शांति से हैं बोलते हैं।
1: तो आपने अपने बच्चों के लिए क्या सोचा है?
0: हमने अपना बच्चों के लिए तो अब ऐसे हम सोचते हैं कि मेरा जैसा भटकना ना पड़े, इसलिए मैंने अच्छा से मैंने रास्ता दिखा के जो दिखा देंगे वही हम सोचते हैं, और क्या कीजिएगा।
1: तो बच्चे अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं?
0: लड़की तो अभी छोटी है, और लड़का तो हम थोड़ा 9 क्लास पढ़ के अभी छोड़ दिया है, पढ़ने ही नहीं जाता है, तो क्या करेंगे इसे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, तो ऐसे आजकल पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने घर में अब ठीक ठाक से उड़ा रहा है, इधर उधर तो कर नहीं भटक रहा है, और घर को हम बाहर भी रहते हैं तो मैंने घर में अच्छी से उड़ा रहा है।
1: बच्चों को आपने कहाँ पढ़ाया लिखाया है, अपने गांव में ही या कहीं और?
0: पहले तो हम नहीं थे इसलिए लड़का तो गांव में ही पढ़ रहा था।
1: अच्छा।
0: लेकिन गांव में ही था, और उसके बाद

0: छोड़ दिया, और बच्ची तो अभी प्राइवेट स्कूल में गांव में पढ़ रही है।
1: अब इंदीपान जी एक बात और बताइए कि जब आपने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया, उसके बाद जो सरकारी योजनाएं आपको मिली, योजनाओं के तहत लाभ मिला, वो कौन कौन से लाभ थे?
0: उन लाभ हम लोग का इसे जमीन मिला, उसके बाद में 4 डिसमिल, और सिलेंडर करने के समय ही हम लोग को 50,000 दिया था, उसके बाद फिर 2.5 लाख दिया, उसके बाद में फिर दिया था जैसे मैंने लड़का कुछ दिन पढ़ा था उसका हम पढ़ाई भरे थे उसका दिया, और केस में जो कुछ खर्चा हुआ था उसका भी दे दिया हम लोग को।
1: आपको क्या लगता है कि इतना काफ़ी है या और भी कुछ आप सरकार को सुझाव अपनी ओर से देना चाहेंगे?
0: सरकार से हम तो मैंने जितना दिया है उतना तो दे ही रहा है, और सरकार से हम यही क्या कहेंगे, जितना जैसे वादा किया है वैसा अगर और हम ही लोग की तरह देते रहे तो और भटक रहा है वो सब आएंगे, लेकिन सरकार से हम यही सुझाव चाहेंगे कि जो केस है केस में जिम्मेवारी नहीं ले रहा है।
1: अच्छा
0: मेन चीज़ यह है कि जिसका अगर मान लिया 20-30 गो है तो नौकरी देंगे बोल के तो सिलेंडर करता है,
1: हाँ,
0: लेकिन इसी में सरकार कहता है कि केस खत्म होगा तभी मैंने नौकरी मिलेगा।
1: अच्छा।
0: और तो कुछ लोग बहुत लोग सोचते हैं कि जो 20-30 जिसका केस है वो तो केस खत्म होते तो मेरा उम्र भी खत्म हो जाएगा।
1: अच्छा।
0: यही एक तो विशेष है सरकार से कि मैंने केस जो वो मैंने जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। हाँ, अगर केस में थोड़ा सा उन लोग को राहत देता कुछ
1: अच्छा,
0: तो
1: हाँ,
0: शायद भाई लोग और है जो ज्यादा ज्यादा केस है वो लोग भी आ जाएंगे।
1: अच्छा, हाँ,
0: लेकिन केस का जिम्मेवारी सरकार
1: नहीं
0: लेता है। यही विशेष है कि मैंने आदमी जो ज्यादा है वो तो सोचता है कि हम तो सिलेंडर करेंगे भी तो साला जेले में सड़ जाएंगे,
1: हाँ,
0: तो उम्र खत्म होगा तो नौकरी कहाँ का करेंगे। इस तरह से कुछ समस्या है, विशेष तो यही है कि अगर केस में उन लोग को कुछ सपोर्ट करेगा तो शायद आएगा।
1: तो श्रोताओं, इंदीपान जी की कुछ समस्याएं भी हैं और साथ ही साथ कुछ अपेक्षाएं सरकार से हैं, जैसे केस को लेकर इन्होंने ये बात कही कि केस की जिम्मेदारी सरकार की ओर से नहीं ली जाती है, जिस वजह से बहुत सारे हमारे भाई बहन अभी भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ पाने में असक्षम हैं। इंदीपान जी एक बात और बताइए कि कई बार देखा जाता है कि मुख्य धारा से जो भटके हुए हमारे भाई बहन हैं, युवक युवतियां हैं जो जंगल में भटक रहे हैं, यहाँ से वहाँ दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, साथ ही साथ उनमें कहीं ना कहीं एक डर भी है कि पुलिस उनके पीछे लगेगी या फिर उनको पकड़ा जाएगा या मारे जाने का भी खतरा है। तो ऐसे भाई बहनों को आप अपनी ओर से, प्रशासन की ओर से कोई भय ना रखें या फिर कैसे वो मुख्यधारा से जुड़े, इस बाबत आप अपनी ओर से उन भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
0: हम अभी भी भटक रहे हैं, वो भाई बहनों से यही चाहेंगे कि सरकार जो कह रही है वो तो हम लोग को वादा करके कर ही दिया है, इसलिए जो भी भाई भाई है अपना मैंने डर भाई मैंने त्याग करके मैंने वापस आ जाना बेहतर होगा।
1: अंत में एक सवाल और होगा कि जब हमारे भाई बहन मुख्य धारा से जुड़ने लगते हैं या आत्मसमर्पण करने के बाद अपने परिवार और गांव के बीच पहुंचते हैं, तो कई बार देखा जाता है कि गांव वाले उन्हें अपनाने से कतराते हैं, क्या ऐसी कोई समस्या आपके साथ आई?
0: वैसा तो समस्या नहीं है, नहीं हुआ हमारे बीच गांव वाला, गांव वाला तो ऐसा नहीं करता है बहुत, अगर जिस जिन्होंने गांव का ये पहले बहुत ही हरकत किया होगा तो उस लोग को कुछ एक दो को तो करेगा ही करेगा, नहीं करेगा सो बात नहीं, लेकिन वैसा तो पूरे गांव वाला तो नहीं है करेंगे, एक दो ही जिसका जिसे हम किसका ज़्यादा गलत किए हैं तो वो लोग तो कुछ तो कतराएंगे ही, लेकिन पूरे परिवार का और पूरे गाँव का वैसा नहीं करते हैं।
1: चलिए इंदीपान जी, और अभी आप एक शांतिमय जीवन बिता रहे हैं और परिवार के बीच रह रहे हैं और अपनी नौकरी में भी लगे हुए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका भविष्य और भी अच्छा हो, आपके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छी जगह पहुंचे, इसके लिए हमारी भी शुभकामनाएं।
0: तो हमारे तरफ से भी आपको मन बहुत धन्यवाद है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाज की मुख्य धारा से भटकाव की बात, मुख्य धारा से जुड़कर सुखद जीवन

बिता रहे इन दीपाहन से हमारी बातचीत। श्रोताओं, यह भी सच है कि आज सरकार द्वारा नक्सलवाद दूर करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए आत्मसमर्पण नीति बनाकर और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को बनाकर उन तक पहुंचाने का सफल प्रयास भी किया जा रहा है। और यह भी सच है, हिंसा को हिंसा द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए रोटी, कपड़ा, मकान एवं स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं से इन्हें जोड़कर एवं सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर इन्हें रोजगार के भी सुअवसर दिए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ इन्हें मिल सके। अतः इसके लिए जन जन की जागरूकता बेहद आवश्यक है, तभी हम विकास की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतार कर देश के विकास में भागीदारी निभा पाएंगे। और तभी सबका साथ मिलेगा तो सबका विकास भी सुनिश्चित हो पाएगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चलें। प्रस्तुति स्वर था सिंधु मिश्रा का और प्रस्तुति एवं संयोजन था गौरव कुमार पांडे का। इसी के साथ ही आज का आओ साथ चले कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आई श्रोताओं, आज हमारे रांची केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने। कार्यक्रम होगा सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे शाम 5 बजे और 5:02 पर आप सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

5:30 पर आप सुनेंगे हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोग, जिसमें आज चर्चा होगी कौशल विकास योजना, अटल पेंशन योजना, ऊर्जा की बचत, ऊर्जा का उत्पादन और साइबर फ्रॉड से सुरक्षा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की और शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

शाम 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी। चर्चा होगी जैविक खाद अपनाएं। प्रश्नोत्तरी में आप सुनेंगे आम के प्रमुख विकार, लक्षण, कारण और प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर वर्षा रानी और भेंटकर्ता होंगे कृष्ण जीवन पौराणिक। कार्यक्रम खेती बारी के प्रस्तुतकर्ता होंगे प्रभु शरण।

हमारी दुनिया कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30, जिसके अंतर्गत आज चर्चा का विषय होगा अनेकता में एकता, हमारी विशेषता। और पंच परगनिया वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे, जिसमें आज का विषय होगा पलायन समस्या और समाधान। वार्ताकार होंगी ललिता मोहन महतो।

आदिवासी अखड़ा। ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे 7:15 से। आज का ये कार्यक्रम होगा उराव भाषा में, जिसके अंतर्गत आज चर्चा होगी बिजली और पानी की बचत की आदत डालें और धान रोपनी की प्रक्रिया में तेजी लाएं। श्रोताओं, आज सोमवार है और आज के दिन आप सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। समय रहेगा 7:45। रात 8 बजे हम लेकर आएंगे श्रोताओं के लिए फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा और 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। समाचारों का समय होगा 8:45 से। पहले आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9 और 9:15 पर होंगे उर्दू समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

पब्लिक स्पीक ये हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति होगी और श्रोताओं रात 10 बजे हम लौटेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र जहां से आप सुनेंगे यादों से भरा खास प्रोग्राम सुनहरी यादें। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ होंगी रौनक जहां। और रात 10:30 का समय रहेगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का। आज के कलाकार होंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जिनसे आज आप सुनेंगे राग देश में गायन, और हिंडोली सारंग में गायन। और 11 बजे से आज आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। और 11:10 पर हमारी आज की सांध्यकालीन का सभा का समापन होगा। तो ये थे कार्यक्रम विवरण, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी की रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे सरगम।

कार्यक्रम सांझ सरगम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज की पहली शुरुआत उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों से, गीत आनंद बख्शी का, संगीत नदीम श्रवण का, फिल्म का नाम तुमसा नहीं देखा।

और अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश प्यासा सावन फिल्म से। गीत के बोल संतोष आनंद के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाटकर की।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था देव कोहली ने और संगीत से सवारा था राम लक्ष्मण ने, और आवाजें थी लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम सांझ सरगम अब संपन्न होता है।

को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुंदाक नदी पुल निर्माण की धीमी प्रगति पर संवेदक के खिलाफ 15 दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। हजारीबाग में विश्व जनसंख्या इसके तहत रवाना किया गया जागरूकता सारथी रथ अगले एक महीने तक जिले के गांवों में भ्रमण कर लोगों को परिवार नियोजन के लाभ और जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक करेगा। राज्य में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है, जिससे अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल रांची, जमशेदपुर, धनबाद और दुमका सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुने युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।
1: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे और हमारे कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आ जाइए अपने रेडियो के करीब, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अंकिता
2: और मैं शबनम।
1: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: तो दोस्तों, आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, हरियाली और जैव विविधता के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है।
1: लेकिन बढ़ते प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक कचरे ने पर्यावरण के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी है। ऐसे समय में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्यों शबनम?
2: बिल्कुल। और दोस्तों, आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। विशेष रूप से युवा यदि आगे आए तो समाज में बड़ा बदलाव संभव है।
1: लेकिन शबनम, सबसे पहले ये बताओ कि पर्यावरण संरक्षण का वास्तविक अर्थ क्या है?
2: बिल्कुल अंकिता, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है प्रकृति के सभी संसाधनों, जल, वायु, मिट्टी, वन, वन्य जीव और जैव विविधता का संरक्षण और उनका संतुलित उपयोग। इसका उद्देश्य प्रकृति संतुलन बनाए रखना तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना।
1: शबनम, आज पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौतियाँ कौन सी है?
2: आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, भूजल का अत्यधिक दोहन और जैव विविधता का लगातार कम होना। यदि समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में इनके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्यों अंकिता?
1: बिल्कुल शबनम, तुमने सही कहा कि समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में इनके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे में युवाओं को जो भूमिका है क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है, ये बताओ।
2: देखो अंकिता, युवा ऊर्जा, उत्साह, नई सोच और तकनीकी ज्ञान से भरपूर होते हैं। वे स्वयं बदलाव ला सकते हैं और समाज को भी प्रेरित करते हैं। यदि युवा पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे तो पूरा समाज उनके साथ जुड़ सकता है। तुमने कई बार ऐसे युवाओं को देखा भी होगा जो ऊर्जावान होते हैं।
1: बिल्कुल शबनम। अच्छा, युवा अपने डेली लाइफ में कौन कौन से काम कर सकते हैं, ये भी बताओ।
2: तो अंकिता देखो, वे हर वर्ष वृक्षारोपण करके और लगाए गए पौधों की देखभाल भी करते हैं। प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करते हैं। पानी और बिजली की बचत करते हैं। कचरे को गीले और सूखे रूप में अलग कर रिसाइकलिंग को बढ़ावा देते हैं।
1: और शबनम के

0: क्या स्कूल और कॉलेज भी इसमें योगदान दे सकता है?
1: बिल्कुल दे सकते हैं। पर्यावरण क्लब, वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण कार्यक्रम, पोस्टर प्रतियोगिता, वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिता और रैलियों के माध्यम से छात्रों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी विकसित की जा सकती है।
0: और शबनम, सोशल मीडिया का क्या रोल हो सकता है इसमें?
1: तो देखो अंकिता, आज के समय में सोशल मीडिया जागरूकता का सबसे प्रभावी माध्यम है। युवा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संदेश, वीडियो और प्रेरक अभियान साझा करके लाखों लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंचा सकते हैं। क्या केवल पेड़ लगाना ही पर्यावरण संरक्षण है?
0: बिल्कुल नहीं शबनम, पेड़ लगाना इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जल संरक्षण, ऊर्जा की बचत, स्वच्छता, प्लास्टिक का कम उपयोग और जैव विविधता की रक्षा भी पर्यावरण संरक्षण का हिस्सा है।
1: अंकिता, तुम युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हो?
0: मेरा संदेश ये है कि पर्यावरण की रक्षा किसी एक दिन का अभियान नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। तो प्रत्येक युवा एक पौधा लगाइए, उसे पेड़ बनाइए, पानी और बिजली बचाइए, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और कम से कम लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करें।
1: बिल्कुल अंकिता।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ आइए हम लेते एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, कार्यक्रम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी हमने जाना कि पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। युवा केवल देश का भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति भी है।
2: बिल्कुल, अब सवाल ये है शबनम कि हम अपने जीवन में पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत कहाँ से करें।
1: इसका सबसे आसान और प्रभावी उत्तर है प्लास्टिक मुक्त जीवन की शुरुआत। प्लास्टिक ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसका अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग आज पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की वस्तुएं वर्षों तक नष्ट नहीं होती, वे मिट्टी, नदियों, झीलों और समुद्रों को प्रदूषित करती है तथा पशु पक्षियों और समुद्री जीवों के लिए भी खतरा बन जाती है।
2: ऐसे में यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर प्लास्टिक मुक्त जीवन की शुरुआत कर सके। तो शबनम, हम अपने सुनने वाले साथियों को बताएंगे कि प्लास्टिक मुक्त जीवन की शुरुआत कैसे करना है।
1: बिल्कुल अंकिता, सबसे पहले हम अपने घर से शुरुआत करते हैं। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा घर से ही होती है। यदि परिवार का प्रत्येक सदस्य प्लास्टिक का उपयोग कम करने का संकल्प ले तो प्रतिदिन बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा कम किया जा सकता है।
2: और साथ ही कपड़े या जूट का थैला अपनाएं। बाजार जाते समय अपना थैला साथ रखें। हर बार प्लास्टिक की नई थैली लेने से बचें, यह सबसे सरल और प्रभावी कदम है। क्यों शबनम?
1: बिल्कुल, बार बार प्लास्टिक की बॉटल खरीदने के बजाय स्टील या तांबे की बॉटल का उपयोग करना चाहिए। इससे हमारा सेहत भी अच्छा रहेगा।
2: और साथ ही डिस्पोजेबल वस्तुओं को ना कहें। शादी समारोह, पिकनिक या किसी भी आयोजन में प्लास्टिक के कप, प्लेट, चम्मच और स्ट्रॉ के स्थान पर स्टील, कागज, पत्तों या अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का उपयोग करें। ऐसे में वातावरण साफ रहेगा, आसपास गंदगी भी नहीं होगी।
1: खरीदारी सोच समझकर करें। हमें ऐसे उत्पाद खरीदने हैं जिनमें प्लास्टिक पैकेजिंग कम हो। स्थानीय और टिकाऊ उत्पादों को प्राथमिकता दें। कचरे को अलग अलग रखें और गीले और सूखे कचरे को अलग करें। प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए अलग करें।
2: और साथ ही दोस्तों, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक कम करने का महत्व जरूर से जरूर सिखाएं।
1: बिल्कुल अंकिता। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में प्लास्टिक मुक्त जीवन चाहते हैं तो हमें इन सारी बातों को मानना होगा, तभी जाकर हम पर्यावरण को स्वच्छ रख पाएंगे। नदियाँ और समुद्र प्रदूषण से बचेगा और पशु पक्षियों की सुरक्षा होगी, मानव स्वास्थ्य बेहतर होगा और साथ ही दोस्तों कचरे की मात्रा कम होगी और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा।
2: प्लास्टिक मुक्त जीवन कोई कठिन लक्ष्य नहीं है, ये छोटे छोटे संकल्पों और दैनिक आदतों से शुरू होने वाली एक सकारात्मक यात्रा है। जब हम अपनी थैली साथ रखते हैं, अपनी पानी की बोतल का ही उपयोग करते हैं और अनावश्यक प्लास्टिक लेने से मना करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, तब हम केवल अपना नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का भविष्य सुरक्षित बना रहे होते हैं।
1: दोस्तों, याद रहे, प्लास्टिक मुक्त जीवन केवल एक अभियान नहीं है बल्कि एक जिम्मेदार जीवन शैली है। यह जीवन शैली स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव है।
2: बिल्कुल, चलिए जानते हैं इतिहास से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में जो आज के दिन घटित हुई थी।
1: बिल्कुल अंकिता, 1830 में महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और अलेक्जेंडर डफ द्वारा कोलकाता में स्टॉक किस चर्च कॉलेज की शुरुआत की गई। 1974 में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच लीड्स के हेडिंग्ले मैदान में खेला था।
2: और साथ ही साथ दोस्तों, आज के दिन 1985 में लाइव एड संगीत समारोह का आयोजन लंदन और फिलाडेल्फिया में एक साथ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य इथियोपिया के अकाल पीड़ितों के लिए धन जुटाना था। और साथ ही 1534 में ऑटोमन सेना ने उत्तर पश्चिमी फारस में ताबरीज पर कब्जा किया, और साथ ही 1645 में एलेक्सी रोमन वे अपने पिता माइकल की जगह रूस के शासक बने। और दोस्तों इसी के साथ आइए हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

दोस्त, तो अब हम बात करते हैं अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। क्या आपको पता है आपका दिमाग दिन के मुकाबले रात में ज़्यादा सक्रिय और तेज चलता है?

0: जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी पलकें सामान्य से कम झपकती है।
1: और दोस्तों, तीसरा अमेजिंग फैक्ट्स ये है कि प्यूमिस दुनिया का एकमात्र ऐसा पत्थर है जो पानी में तैर सकता है। और साथ ही साथ जिराफ एक ऐसा जानवर है जो 24 घंटों में सिर्फ 30 मिनट से 1 घंटे तक ही सोता है।
0: ये अमेजिंग फैक्ट्स तो सबने नोटिस किया होगा कि जब हम बोर होते हैं तो हमें समय धीरे धीरे चलता हुआ लगता है, लेकिन जब हम खुश होते हैं तो दिमाग समय को कंपेयर करके कर देता है, इसलिए अच्छा वक्त जल्दी बीत जाता है।
1: और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आइए जानते हैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला ये है कि भारतीय वायुसेना यानी कि IAF ने लगातार 5वीं बार वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग्स मिली है। और तेलंगाना नवंबर 2026 में 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। इन खेल में लगभग 8,000 एथलीट अधिकारी और स्पोर्ट स्टाफ के शामिल होने की उम्मीद है।
0: ओपन एआई ने चैट जीपीटी 5.6 और नए एआई मॉडल लॉन्च किए हैं। हम सभी अपनी धरती से बहुत कुछ लेते हैं, शुद्ध हवा, पानी, भोजन और रहने के लिए एक सुंदर वातावरण, लेकिन क्या हम इसकी देखभाल उतनी ही ईमानदारी से करते हैं?
1: सच तो ये है कि हम अक्सर छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सड़क पर कचरा फेंकना, प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल करना या पानी और बिजली बर्बादी करना हमें सामान्य लगता है, लेकिन यही छोटी छोटी लापरवाहियाँ मिलकर एनवायरनमेंट को बड़ा नुकसान पहुँचाती है। क्यों शबनम,
0: बिल्कुल
1: अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे तो स्थिति काफ़ी बदल सकती है ना।
0: बिल्कुल। और आजकल मौसम में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे बढ़ती गर्मी, अनियमित बारिश और पॉल्यूशन, ये सब हमें एक ही बात एहसास कराते हैं कि प्रकृति हमें लगातार चेतावनी दे रही है। अगर हम अभी भी नहीं संभले तो आने वाले समय में इसका असर हमारी धरती, खेती और पूरे जीवन पर पड़ेगा।
1: लेकिन शबनम, अच्छी बात तो ये है कि समाधान भी हमारे ही हाथ में है। अगर हम अपने रोज की जिंदगी में छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाएं, जैसे पेड़ लगाना, पानी की हर बूंद की कद्र करना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना और अपने आसपास साफ सफाई करना, तो धरती को बेहतर बना सकते हैं।
0: बिल्कुल अंकिता। और हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बदलाव कोई और लगाएगा। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। अगर हम एक पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, अपने आसपास सफाई रखें और दूसरों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करें, तो यह धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और सुंदर बनी रहेगी। अधिकार धरती हमारी है तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। दोस्तों, बातें तो हमें और भी करनी थी, लेकिन समय हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा। तो अब अपनी दोस्त शबनम,
1: और अपनी दोस्त अंकिता को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवानी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: नमस्कार जोहार, मैं रंजना आप सभी का स्वागत करती हूं आपकी अपनी कार्यक्रम श्रमिक लोक में। और आज हमारे साथ हैं दीपा। नमस्कार दीपा, तुम्हें भी
1: नमस्कार। रंजना और सभी श्रमिक साथियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम शुरू करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात से। यह योजना युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
0: हाँ साथियों, इस योजना का उद्देश्य युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करना है। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा

0: संचालित होती है।
1: इस योजना के अंतर्गत आईटी, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, पर्यटन और अन्य कई क्षेत्रों में उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। रंजना, जब कौशल विकास योजना की बात आती है तो यह एक ऐसी योजना है जिसमें हम अपनी रुचि का काम कर सकते हैं। हाँ। अपने पसंद का काम, जिस काम में हमें बहुत ज़्यादा रुचि हो
0: या फिर जिस काम को आप थोड़ा बहुत जानती हैं,
1: हाँ, उस काम को और बेहतर ढंग से करना हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सीखते हैं।
0: हाँ, और साथ ही कोई भी भारतीय नागरिक जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता है वह इस योजना का लाभ ले सकता है। विशेष रूप से बेरोजगार युवा और कम पढ़े लिखे युवा इस योजना में जुड़ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं हैं, कोई किसी चीज में रुचि रखती हैं, किन्हीं को बुनाई में पसंद है, किसी को सिलाई, तो वो इस अपने हुनर को और भी निखारने के लिए ये प्रशिक्षण ले सकती हैं। और ये प्रशिक्षण जो है बिल्कुल मुफ्त दी जाती है।
1: बिल्कुल रंजना, और जहाँ तक कौशल विकास योजना की बात है तो यह योजना शुरू ही की गई थी ऐसे लोगों के लिए जो युवा होते हैं, बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके पास किसी तरह का कौशल नहीं होता है, और साथ में ऐसी महिलाएं जो घर में रहकर काम करना चाहती हैं तो वो कौशल विकास योजना से जुड़कर प्रशिक्षण लेकर अपना काम कर सकती हैं। और आज का समय जो है वह केवल डिग्री नहीं, कौशल का समय है। अब आपको अगर सफल होना है तो उसके लिए कौशल का होना जरूरी है। कौशल प्रशिक्षण से रोजगार पाने की संभावना बढ़ती है। बिल्कुल रंजना, इस बात को हम समझ सकते हैं कि जब भी हमारे घर में भी जब कोई काम होता है, छोटे मोटे काम हो या बड़े काम हो, तो हम कोशिश करते हैं कि जो उसमें बहुत दक्ष व्यक्ति है, जो बहुत कार्य कुशल है, उससे अपना काम करवाएं।
0: हाँ।
1: तो इस तरह से जो प्रशिक्षित लोग होते हैं, जिनके पास विशेष योग्यता होती
0: हाँ।
1: है, उनकी मांग हमेशा बढ़ जाती है, उनको काम के अवसर ज्यादा मिलते हैं।
0: और वर्तमान समय में साथियों आधुनिक तकनीकों जैसे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन तकनीक और साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रशिक्षण भी इस कौशल विकास योजना में शामिल है। तो इसीलिए साथियों आप हाथ पे हाथ धरे ना बैठे, इस प्रशिक्षण में आप कौशल विकास योजना से जुड़कर किसी भी तरह का आपके पास कोई गुण है तो आप उसकी ट्रेनिंग लें।
1: बिल्कुल रंजना, जो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं वे अपने नज़दीकी कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र से संपर्क कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। साथ ही इसके वेबसाइट पर भी, इंटरनेट पर इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है, वहां से भी लोग जानकारी ले सकते हैं और इसकी इससे जुड़ने की जो प्रक्रिया है उससे जुड़ सकते हैं।
0: और जानकारी के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं एक और खास विषय की, जो हमारे श्रमिक साथियों से जुड़ा विषय है, वह है अटल पेंशन योजना।
1: असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह पेंशन योजना वृद्धावस्था में नियमित आय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है रंजना कि जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जब तक शारीरिक क्षमता होती है तब तक वो बहुत काम कर पाते हैं। लेकिन एक समय के बाद क्या होता है कि शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, उम्र हो जाती है, तो वैसे में वो काम नहीं कर पाते हैं। और श्रमिकों के साथ ये बात होती है कि वो काम करेंगे तो उनकी जीविका चलेगी, उनके घर का जो खर्च है वो चलेगा, उनके पास आय आएंगे, लेकिन जब वो काम नहीं करेंगे तो उनका जीवन यापन कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसी प्रश्न को ध्यान में रखकर अटल पेंशन योजना शुरू की गई है। इसमें 18 से 40 वर्ष तक के आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास बैंक या डाकघर में बचत खाता है वह इस योजना में शामिल हो सकता है। और इस योजना की एक खास बात है कि जितनी कम उम्र में इस योजना से जुड़ेंगे उसमें मासिक अंशदान उतना ही कम होगा।
0: और साथ ही नियमित बचत और निवेश की आदत विकसित करने के साथ साथ यह योजना वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के बारे में और भी हम आपको देंगे जानकारी, जो आज हमारे साथ हैं, हमारी मेहमान है नीलिमा, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। उनसे बातचीत हमारी कर रही है दीपा।
2: हमारे साथ हैं नीलिमा जी। नमस्कार नीलिमा जी।
3: नमस्कार।
2: तो नीलिमा जी, अटल पेंशन योजना क्या है?
3: अटल पेंशन योजना
2: असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह एक पेंशन योजना है, छोटी बचत योजना है। अटल पेंशन योजना विशेषकर श्रमिकों को ध्यान में रखकर बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र में 1000, 2000 या 3000, 4000 या 5000 की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा जमा अंशदान के आधार पर किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य काम न कर पाने की अवस्था में जीवन यापन में आर्थिक मदद करना है। अक्सर हम अपनी जरूरतों को पूरा करते समय भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, विशेषकर कमजोर आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रहकर के यह योजना शुरू की गई है, जिसमें कि वह न्यूनतम जमा करके अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे को जमा कर सके। हमारे देश में असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की एक बहुत ही बड़ी संख्या है जो अपने भविष्य के लिए किसी भी प्रकार की बचत नहीं करते हैं। सरकार का उद्देश्य उसी क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को इस पेंशन योजना से जोड़ना है, जिससे कि वो अपने वृद्धावस्था और काम न कर पाने की स्थिति में पेंशन पा सके और अपना जीवन यापन कर सके, तथा घरेलू कामगार घरेलू महिलाओं के लिए जो किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोलकर खाते पर यह योजना शुरू कर सकते हैं।
3: यह योजना विशेषकर डेली वेजेस पे काम करने वाले या रोज कमाने खाने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए शुरू की गई है। इस योजना से जुड़ने के लिए जो श्रमिक बंधु हैं उन्हें क्या करना होगा?
2: देखिए, यह एक पेंशन योजना है तो इस योजना से जुड़ने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं, जैसे कि 18 से 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ सकता है। इस योजना के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना अनिवार्य है, और अगर पहले से अकाउंट खुला है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस में APY अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए आवेदन देना होता है, और इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल तक निवेश करना होता है। हर माह न्यूनतम निवेश कर 18 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस योजना में निवेश कर सकता है, और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे मासिक पेंशन मिलेगी, और PF खाते की तरह सरकार इस योजना में भी अपनी ओर से अंशदान देती है। और इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर और अधिक जानकारी ले सकते हैं।
3: तो आजकल किसी भी विषय की जानकारी उसके संबंधित कार्यालय के अतिरिक्त इंटरनेट पर भी बहुत आसानी से उपलब्ध है और इसका लाभ हम लोग आसानी से ले सकते हैं। ये योजना किन किन लोगों के लिए है? ऐसे कौन कौन से काम करने वाले लोग हैं जो इस योजना से जुड़ सकते हैं?
2: जी, इस योजना से वैसे तो लगभग सभी लोग जुड़ सकते हैं, पर सरकार ने इस योजना को विशेषकर उन वर्ग के लोगों के लिए बनाया है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जैसे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, जो बहुत ही न्यूनतम आय को कमाते हैं और अपना सारा धन उसी में खर्च कर देते हैं। तो ये योजना उन लोगों के लिए है जो अपने न्यूनतम आय में से भी अपने लिए न्यूनतम निवेश से अपने वृद्धावस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं। इस योजना में वैसे तो कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन सरकार ने विशेषकर इस योजना को उन लोगों के लिए शुरू किया है जिनकी आय जो है वो बहुत ही कम है, जैसे कि घरेलू कामगार लोग, दैनिक मजदूर, फेरी लगाने वाले लोग, रास्ते में रेहड़ी लगाने वाले लोग।
3: ये तो बात हुई कि ये योजना किन के लिए है, इस योजना की और क्या विशेष बातें हैं नीलिमा जी?
2: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें अपने भविष्य के लिए थोड़ा थोड़ा ही लेकिन जरूर बचत करनी चाहिए, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को तो अपने भविष्य के लिए बचत करना बहुत ही जरूरी होता है। अटल पेंशन योजना के नियम बहुत ही सरल है, सिर्फ इसमें जरूरत है इस विषय पर सही जानकारी रखने की, जो कि बहुत ही आसानी से बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर हमें मिल सकती है और लोग इस पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आवेदनकर्ता की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना की एक खास बात यह है कि इसमें मिलने वाली पेंशन की राशि निवेश करने वाली राशि के आधार पर ही निर्धारित होती है।
4: इस योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु अगर हो जाती है तो उसकी पत्नी और उसकी पत्नी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके बच्चों को पेंशन मिलने का भी प्रावधान।

0: और अगर कोई इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो इसकी भी सुविधा दी गई है। इसके लिए बस जहाँ आपका अकाउंट है वहाँ एक क्लोजर फॉर्म भरना होता है, और इस फॉर्म में स्वैच्छिक निकास का कारण भी लिख सकते हैं आप। बैंक के उस फॉर्म के आधार पर कुछ ही दिनों में आपको उसकी जांच करता है और आपका अकाउंट बंद कर देता है, और आपकी रिफंड राशि आपके अकाउंट में आ जाती है। इस तरह से यह योजना में जो निवेश करता है उसके लिए यह कम जोखिम की योजना है, जिसका लाभ योजना में शामिल व्यक्तियों को निश्चित मिलता है।
1: बिल्कुल, यानी कि ये एक बहुत ही सरल पेंशन योजना है जिसमें आसानी से जुड़ भी सकते हैं और इस योजना से बाहर भी निकल सकते हैं। नीलिमा जी, इस योजना से जुड़ने के लिए किन-किन कागजातों की जरूरत होती है?
0: अटल पेंशन योजना में जुड़ने के लिए किसी खास दस्तावेज की तो जरूरत नहीं होती है, पर जो सबसे महत्वपूर्ण कागजात है वो है हमारा आधार कार्ड, जो अभी सभी के पास है। इसके अतिरिक्त एड्रेस प्रूफ के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड, और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए जो यूनिश्रम पोर्टल पे जो निबंधन सुविधा उपलब्ध कराई गई है उसका निबंधन नंबर या यूनिक नंबर जो उन्हें निबंधन के उपरांत दिया जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस तरह की जो भी योजनाएं हैं इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और सही जानकारी से ही इन योजनाओं से जुड़कर हम सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, जानकारियों का होना बहुत जरूरी है। इसी के अभाव में बहुत से लोग इन योजनाओं से नहीं जुड़ पाते हैं। आप इस बारे में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, बात जहाँ तक जानकारी की है तो यह हमेशा से हमारा प्रयास होता है कि इन योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँचे, और इसके लिए प्रसार प्रसार के विभिन्न माध्यमों का भी प्रयोग किया जा रहा है। विशेषकर बैंकों द्वारा समय समय पर कैंप लगाकर या विशेष अभियान के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं से जोड़ने के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और साथ ही बहुत सारी संस्थाएं या नियोक्ता स्वयं अपने कर्मचारियों को इस विषय पर अधिक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, ताकि उनके कर्मचारी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके और उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। और इन सबके अतिरिक्त इंटरनेट पे इन योजनाओं से संबंधित सभी जानकारियां दी जा रही हैं। मैंने श्रोता बंधुओं से यही कहना चाहूंगी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार की योजनाओं के बारे में आप सभी पूरी से पूरी जानकारी लेकर इन योजनाओं का लाभ उठाएं, और पेंशन योजना अब भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आज के दौर में यह एक बहुत ही जरूरी है। अगर आपने अभी तक किसी प्रकार की पेंशन योजना नहीं ली है तो आप बहुत आसानी से अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं और इस प्रकार अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। इन योजनाओं का यही उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं से जुड़े और इनका लाभ ले और अपने भविष्य को सुरक्षित करें।
1: जी बिल्कुल, अटल पेंशन योजना हो या फिर कोई और पेंशन योजना हो, इस प्रकार की जो भी योजनाएं होती हैं इनका उद्देश्य होता है कि जिनके लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको इनका लाभ मिले और इन योजनाओं से जुड़कर वे अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकें। नीलिमा जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आपने सुने, बहुत अच्छी नीलिमा जी ने जानकारी दी है। सच में नियमित बचत करें, निवेश की आदत विकसित करने के साथ साथ यह योजना जो है ना वृद्धावस्था में बहुत ही मदद करेगी। इस योजना के बारे में विशेष जानकारी जो दी है, आप उनकी बातों पर जरूर अमल करें और अपना बचत करना शुरू कर दें अटल पेंशन योजना के माध्यम से। और अब हम साथियों को एक गीत सुना दें।
3: बिल्कुल।

0: बिल्कुल दोस्तों, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए हमें हमेशा हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और इस आगे जो कार्यक्रम में हमारा विषय है वो भी एक तैयारी के संबंध में ही हम बात करेंगे। बात करेंगे ऊर्जा की बचत, ऊर्जा का उत्पादन, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की तैयारी है।
1: हाँ साथियों, ऊर्जा की बचत का मतलब है किसी भी काम में ऊर्जा का कम से कम उपयोग करना। इसी ऊर्जा बचत में बिजली की बचत और ईंधन की बचत शामिल है।
0: हमारे पास पृथ्वी पर ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की सीमित आपूर्ति है, और इसे पुनर्जीवित करने में बहुत समय लगता है। जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, अगर आज हम इन्हें अंधाधुंध खर्च करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को शायद अंधेरे में ही रहना पड़े।
1: हाँ साथियों, इसीलिए आप छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे कि कमरे से जैसे बाहर निकलते ही पंखे और लाइट का स्विच ऑफ करने की आदत डालें, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें। ये न सिर्फ रोशनी ज़्यादा देते हैं बल्कि बिजली भी बहुत कम खाते हैं।
0: दिन के समय कृत्रिम रोशनी के बजाय प्राकृतिक धूप का इस्तेमाल करें। अपनी खिड़कियां खोलें और ताजी हवा आने दें, साथ में रोशनी भी आएगी।
1: हाँ
0: इसी तरह अगर ऑफिस जाना हो या कहीं बाहर निकलना हो तो कार पुलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ ईंधन बचेगा बल्कि सड़कों पर प्रदूषण भी कम होगा।
1: हाँ
0: रंजना, जब ऊर्जा के बचत की बात आती है तो इसके साथ

0: प्राकृतिक संसाधनों के बचत की बात आती है, और जब हम प्राकृतिक संसाधनों का एक सीमित प्रयोग करेंगे, उन्हें बचाकर इस्तेमाल करेंगे, तो इसका असर हमारे पर्यावरण पर पड़ेगा और ये एक बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा उसका हमारे पर्यावरण पर।
1: अभी जैसे आपने बताया कि कृत्रिम रोशनी के बजाय प्राकृतिक धूप का इस्तेमाल करें, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे उन्हें धूप में रहना पसंद नहीं है, वो ठंडे के दिन में गर्म हीटर जला लेते हैं या फिर गर्मी के दिन में एसी चलाते हैं, तो ये सब का जितना कम उपयोग करें वो ज्यादा अच्छा है।
0: इन सब का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम अपने लिए तो सुविधा जुटा लेते हैं, अपने तो हम बहुत आराम महसूस करते हैं, लेकिन पर्यावरण का बहुत नुकसान होता है। और जब ऊर्जा बचत की बात आती है तो हमें ऊर्जा के जो स्रोत हैं, जो प्राकृतिक स्रोत है, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाले स्रोत हैं, उनके उपयोग पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सौर ऊर्जा।
1: और आज के समय में सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा सबसे बेहतरीन विकल्प है। सरकार भी घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी भी दे रही है, तो फिर हमें पीछे क्यों रहना है, हम भी इसका उपयोग अच्छे से करें। इसकी जानकारी आप भरपूर ले और आप इसका उपयोग जरूर करें। सोलर एनर्जी जो है ना वो हमारे पर्यावरण को तो सुरक्षित रखेगा ही, साथ साथ हमारे जो अभी हमने कहा कि कृत्रिम कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इस सब की भी बचत होगी।
0: बिल्कुल, सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा भी एक बड़ा ऊर्जा का स्रोत बनकर उभर रहा है। और ऊर्जा बचत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये पर्यावरण को अधिक स्वच्छ और स्वस्थ बनाता है। ऊर्जा संरक्षण असामान्य जलवायु परिवर्तनों को कम करने में भी मदद करता है, और इस बात को तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आज जो बारिश का जो पैटर्न हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं बारिश हो ही नहीं रही है। तो ये सभी जलवायु परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। तो जब हम अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को जब हम बचाने की दिशा में काम करेंगे तो उसका हमें बहुत जो लाभ मिलेगा।
1: और अक्षय ऊर्जा भी संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, और आप सभी छोटे छोटे उपायों से ऊर्जा बचत में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर आप ये ठान लें कि हमें बचत करनी है तो जरूर बचत हो गए। तो दोस्तों आज ही से आप संकल्प लें, ना बिजली बर्बाद करेंगे और ना ही प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि आज की बचत कल का सुरक्षित भविष्य है।
0: बिल्कुल रंजना, और इसके साथ ही हम अपने कार्यक्रम के अगले विषय की ओर चलते हैं। और अगला विषय जो है वो काफी महत्वपूर्ण विषय है। हम आए दिन इस विषय से जुड़ी खबरों को देखते सुनते आए हैं। आज के समय में सब कुछ डिजिटल हो गया है, शॉपिंग से लेकर बिल भरने तक सब कुछ हमारे स्मार्टफोन में सिमट गया है। ये बहुत आसान है ना?
1: बिल्कुल, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी जीवन भर की कमाई मिनटों में उड़ा सकती है? जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड यानी ऑनलाइन धोखाधड़ी की।
0: साइबर ठग के इस जाल से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए।
1: हाँ, सबसे पहले इसका पहला नियम है कि आप अपना OTP, UPI पिन या बैंक की जानकारी किसी भी अनजाने व्यक्ति के साथ साझा ना करें। आप अपने खुद तो करें ही और सभी परिवार में भी इस बात को साझा करें, चाहे वह व्यक्ति खुद को बैंक मैनेजर ही क्यों ना बता रहा हो।
0: बिल्कुल रंजना, जब साइबर फ्रॉड की बात आती है तो अक्सर हमारे पास जो मैसेजेस या फोन कॉल्स आते हैं तो उनमें वो खुद को बैंक अधिकारी ही बताते हैं, बैंक का मैनेजर बताते हैं, लेकिन उस समय हमें बहुत शांत दिमाग से उनकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और तब उनके सवालों का जवाब देना चाहिए।
1: और कभी कभी तो ठगी ये भी करते हैं ना दीपा, कि आपको कह देंगे कि आपकी तो 25 लाख की लॉटरी लगी है, आप इस नंबर पे हम भेज रहे हैं, आप अपना OTP बताएं, और लोग खुशी के मारे लालच में आकर ये अपना OTP बता देते हैं और उसके बाद उनका सारा बैंक खाली हो जाता
0: ये
1: है।
0: जो साइबर फ्रॉड करने वाले होते हैं ना, ये हमें सामने से आकर हम पर वार नहीं करते हैं। बस उनके लिए एक फोन कॉल, मैसेज, यही उनके लिए काफी होता है किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इससे बहुत सावधान सावधान रहने की जरूरत है।
1: हाँ साथियों, अनचाहे या अनजान लिंक्स पर कभी क्लिक ना करें। अपने सोशल मीडिया और बैंकिंग एप्स के पासवर्ड मजबूत बनाएं। अगर आप कभी साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं तो तुरंत एक्शन लेना है। भारत सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए

0: एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर दिया है जिस पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: यह नंबर है 1930। डिजिटल दुनिया में आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो रंजना, काफी सारी जानकारी हमने अपने श्रमिक साथियों को दे दी। अब कार्यक्रम में समय है एक और प्यारे से गीत का।

0: और दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ ही आपसे इजाजत लेने का समय हो गया है, तो आज के लिए अपनी दोस्त दीपा
1: और रंजना को दें इजाजत।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोग, ये आकाशवाणी कराची केंद्र है। शाम के 6 बज चुके हैं, आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। रांची में आयोजित 2 दिवसीय पंचायत समुदाय समन्वय कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना समृद्ध झारखंड की कल्पना अधूरी है। छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने धनबाद में राजस्व कार्यों और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा की। आयुक्त ने जिले में SIR फॉर्म वितरण और डिजिटलीकरण की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। गढ़वा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बारी।

0: पेड़ लगाओ,
1: पेड़ बचाओ
0: और खेती बाड़ी सुनो। या सब भाई बहन मन के जोहार और संगे संगे इला बहन के भी जोहार।
1: हाँ और कहो जोहार सुकेश भाई।
0: और का हाल समाचार है?
1: हाँ सब एकदम खूबे बढ़िया हालचाल है।
0: हाँ तो बरखा पानी मन कैसन हुआ थे, खेती बाड़ी मन कैसन चलक लाइक है?
1: एखन तो देखो एकदम झमाझम पानी कर झड़ी लागल है और गह गह बदरी कर जलाई है। कोनो तारी भींजते भांजते आई तो स्टूडियो आई सुकेश दादा। रौरे बताओ का हाल चाल है और घर बटे सब मन कैसन है?
0: घर बटे सब नकदे हैं और हम भी ठीक है। और ये भगवान का दुआ है कि सब जीव सवांग जे है सब कुशल मंगल है नी।
1: हाँ।
0: और एखन जे बात कर ली कि खेती बाड़ी कर बारे में, तो खेती बाड़ी में तीन दो चार दिन से तीन बरखा में कमी आ है, लेकिन खेती बाड़ी शुरू हो जा है। जिसे रोपनी मन कर काम जो होला वो अब शुरुआत हो चुकी है। जने तने हम आवे एक समय देख ली कि रास्ता में कहीं कहीं रोपा भी रोपे लाई है, जे खेत मन में पानी है से खेत मन में।
1: हाँ से तो बढ़िया बात है। और देखो क्या है कि आजकल जैसे हम इन मानसून कर देखा थी इत पानी कम आवे लाई है नहीं। और झारखंड कर माटी तो जानबे करेला, चाहे झारखंड एक पठारी क्षेत्र है तो यहाँ सिंचाई कर हम इनकर उत व्यवस्था है के नहीं। एखन धीरे धीरे सरकार काम करे लाई है, लेकिन फिर भी हम इन देखब तो ज्यादातर तो का कहल जाए खाली बरखा कर पानी पर ही आधारित हम इनकर यहाँ कृषि है।
0: कहे कर मतलब है कि झारखंड कर जो खेती है
1: हाँ
0: वो मानसून पर ही निर्भर रहेला।
1: हाँ।
0: पटवन कर यहाँ जितना सुविधा होना चाहिए उतना नहीं है। लेकिन जे खेती बाड़ी से जुड़ल भाई बहन मन है, चाहे खेती बाड़ी नहीं भी करत हैं, वो सब मन के ये जरूर चाहिए कि जब भी बरखा होला उकर जे बरखा जल के निश्चित रूप से उकर संरक्षण करे चाहिए। काहे कि दिनों दिन भूगर्भ कर जे स्तर है स्रोत जो है वो एकदम नीचे की ओर चल जाते
1: हैं। सही बात है।
0: तो पानी का जे बरखा कर पानी के बहुत तरह कर किस्म से उके संरक्षण करल जा सकेला। खेत मन में जैसे मेड़ बांध के भी वो पानी के रोक के मिट्टी में अवशोषित हो सकेला।
1: हाँ।
0: दूसर चीज है कि जे घर कर पानी जे छत से पानी आवेला वो जितना भी घर वाला मन के अपन जे घर से पानी आवेला उके वही देख नीत देना चाहिए, ताकि वो पानी के संरक्षित करके गड्ढा खोद के अपन घर कर सामने ही
1: संचय
0: करल जा सकेला। ताकि मिट्टी में वो अवशोषित हुई और जल स्तर के कुछ बढ़ाकर काम कर सकेला।
1: एकदम सही कहे थे
0: है नहीं। तो चाहे ये भी बात है और जैसे घर में गृहिणी मन जे काम करे ना, चाहे बर्तन मांजे खेले चाहे शब्द मन धोए ना, तो अनावश्यक पानी के भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
1: हाँ, बर्बाद नहीं कर रखे।
0: कहे नल के खोल लेना और पानी चलते रहला उकर में धोते रहना, चाहे जे कोई ब्रश करत है तो भी या नहात है तो भी। पानी के मन जितना उपयोग कर जरूरत है उतना ही पानी का उपयोग करो, ताकि वो पानी बच सके है नहीं।
1: काले की देखो हम इनकर जो आगे आए कोला पीढ़ी है सेकर ले भी तो सोचे के अब सब पानी के हम इन्हें सब इस्तेमाल कर करके सिराए देवो, बोले कैसे चली।
0: एकदम बात बिल्कुल है कि
1: छुआ मन के भी
0: अपन संगे संगे अगला पीढ़ी के भी और के भी के देख के चले है, और साथ साथ में ये जो छुआ मन है वो मन के भी कर आदत डलवाई देनी चाहिए।
1: बहुत जरूरी है कि वो मन के समझाल जाए कि देखो बूंद बूंद करके ही सागर बनेला है कि नहीं।
0: हाँ।
1: और सेले बरसा कर एक एक बूंद बेशकीमती है और

0: कि बहुत जरूरी है कि संरक्षित करल जाए।
1: कहे देखो, जब जल का संरक्षण है ऊपरी खेत में, तो नीचे कर खेत में उकर पानी का स्रोत बनते जाएला,
0: हाँ।
1: और खेती बाड़ी मन भी इकर से सुचारू चल सकेला। तो जितना भाई बहन मन सुनत हैं, से मन एकदम निश्चित करूँ कि जेखन बरखा होए थे चाहे जब भी होएला, उकर संरक्षण निश्चित रूप से करूँ। ये हमरे कर लिए, अगला पीढ़ी के लिए भी और आपन समय के लिए भी ये उपयोगी हुई
0: एकदम सही कहला
1: है
0: नहीं।
1: तोरे अब देखो इला बहन, ये भी बात है कि खेती बाड़ी से अखन सब जुड़ल हैं, रोपनी कर भी काम चलत हैं, और टाण में जैसे मड़ुआ भी रोपत है, ये सब भी काम है। कहे मड़ुआ जो है कि कम पानी में ही उकर खेती करल जा सकेला। तो जे किसान भाई बहन मन सुनत हैं, चाहे अगला के भी बता सके ना कि जैविक खाद कर ही अधिक उपयोग करे के चाहिए। कहे जैविक खाद में अधिक खर्च भी कम पड़ेला, खर्च कम कर संगे संगे ये मिट्टी कर उर्वरा शक्ति के भी बढ़िया बनाए
0: बढ़िया
1: सकेला।
0: बना दे वाला, हाँ।
1: कहे मिट्टी पानी कर भी अवशोषित बढ़िया रखेला, और खेत कर मिट्टी के अधिक समय तक नमी बनाए रख सकेला।
0: एकदम ठीक कहती रोरे। और संगे संगे देखू जे माटी में रहे कला जीव जंतु मन है नहीं,
1: हाँ हाँ
0: उकरो उखो का करेला कि बचाएला
1: बचा सके ना।
0: कल।
1: और कहे रासायनिक खाद कर अंधाधुन प्रयोग से जे मिट्टी में मिट्टी कर उर्वरा शक्ति के बढ़ाए वाला जे जीव जंतु रहे ना, उ मन के भी वो नष्ट कर
0: देवेला,
1: दे।
0: हाँ, नष्ट कर
1: सेले
0: देवेला।
1: रासायनिक खाद कर अधिक उपयोग ना करके जैविक खाद बनाओ। जैविक खाद अपन घर में भी बनाए सकेला। सब किसान भाई बहन मन खेती बाड़ी करबे करे ना,
0: हाँ।
1: और सबकर घर में गाय बकरी मन है, तो गाय बकरी कर जे मलमूत्र है और फिर जे अवशिष्ट रहेला खेती बाड़ी कर, उ सब एक जगह गड्ढा खोद के उके मिलाए देख चाहिए। और वो जब सड़ जाए तो एक बढ़िया कंपोस्ट खाद भी बन जाएला, और वो कंपोस्ट खाद खेती के लिए सबसे उपयोगी होला। काहे जैविक खाद से जे फसल उपजेला उकर में पौष्टिकता कर भी भरमार रहेला, और खाए के में भी तो स्वादिष्ट रहे
0: स्वादिष्ट
1: है
0: रहेला।
1: नहीं।
0: और कहो तो रसायन से भी मन बैठ जाइला,
1: और टिकाऊ खेती भी है।
0: हाँ, टिकाऊ खेती भी
1: हाँ।
0: है। काले की देखू बेसी कच्चा कौड़ी आदमी के लागी
1: हाँ।
0: नहीं है, अपन घर कर चीज जो है घर में
1: मतलब
0: इस्तेमाल भी
1: कम
0: हो जाए
1: खर्च
0: बढ़िया
1: में
0: से,
1: बढ़िया पैदावार और टिकाऊ भी होला
0: टिकाऊ भी होला।
1: है नहीं।
0: और साथ ही साथ हम इनका जो स्वास्थ्य है
1: हाँ,
0: वो कहो
1: प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़
0: हाँ ऊपर में
1: सकेला।
0: भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेला।
1: तो इला बहन देखो, बात कर ले तो निश्चराई कार्यक्रम के भी आगे बढ़ाए है। तो चलू हमरे मन एक कृषि गीत सुना, नागपुरी में इग्नेश कुमार और संगी बनकर गावल गीत के।

0: एखन सुनत रही कृषि गीत नागपुरी में इग्नेश कुमार और संगी मनकर गावल गीत के। गीत के सुनले बुझाला कि झारखंड कर जो खेती बाड़ी है उ कर ले कितना बढ़िया संदेश दे है कि भाई खेती बाड़ी सालों भर करते रहले और जो उकर से मुनाफा होला वो नौकरी वाला भी उकर से पीछे रह जाए ना।
1: हाँ,
0: ये वाला संदेश है तो के जितना भी भाई बहन मन सुनत है उमन जरूर खेती बाहरी में अपन ध्यान देवे और अपन उपजा के भी बढ़ा सके ना। तो चलू कार्यक्रम में आगे बढ़ीला और हमने मन बात करब कि देखो झारखंड कर कहो या हमरे कर देश कर आम फलों का राजा है।
1: आम फलों का राजा
0: है नहीं? तो आम हर जगह सब जगह हर आदमी के ही उपलब्ध हो जाएगा वह चलते के आम कर राजा कही सके कहल जाए
1: फलों का राजा कहल जाए।
0: लेकिन आम कर जो खेती होला आप एखन झा हमर झारखंड में भी बहुत बृहद पैमाने पर भी कर खेती बाड़ी मन खेती करल जा है कर बागवानी भी करल जा है लेकिन इकर में समस्या का है ला कि कब जब मंजरी लागेला आम फले कर समय में उस समय कभी कभी आम मंजरी के समय में भी सूख भी जाएला और चाहे जब फल लागेला उस क्रम में भी कुछ बीमारी के चलते फल अपन से गिरक लागेला सूख के भी चाहे कारण जो भी कारण से। तो इकर जे का विकार है और इकर समाधान का है इकर लक्षण का है इके देख के जे बागवानी कर रहे से भाई बहन मन उके देख के उकर निदान जरूर कर चाही। तो इकरे संबंध में हमारे मन विस्तार से जानकारी करब कि आम का जे प्रमुख विकार लक्षण कारण और इकर प्रबंधन कैसे करल जाए इके बताबे डॉक्टर वर्षा रानी और इकर से बातचीत कर रहे कृष्ण जीवन पौराणिक।
2: किसान साथियों नमस्कार, आज हम बात करेंगे फलों के राजा आम के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं आम न केवल स्वाद में बेहतरीन है बल्कि किसानों की आय का एक बड़ा जरिया भी है। लेकिन अक्सर किसान भाई आम के पेड़ों में होने वाले बीमारियों के बारे में नहीं जानते, जैसे आम में रोग लग जाना, आम के फलों का फटना जैसी समस्याओं से हमारे किसान भाई परेशान रहते हैं, जिसे उपज और गुणवत्ता दोनों पर बुरा असर पड़ता है। आज हम इन्हीं समस्याओं की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये विकार क्यों होते हैं और इनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर वर्षा रानी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। डॉक्टर वर्षा, आपको हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
3: धन्यवाद। नमस्कार
2: डॉक्टर वर्षा, आप हमारे किसान भाइयों को यह बताएं आम में होने वाले विकार कौन कौन से हैं?
3: जी, आम में होने वाले प्रमुख विकार हैं कोयलिया रोग, जिसे काला सीरा भी कहा जाता है, गुच्छा विकार या ये गुम्मा विकार के नाम से भी जाना जाता है, एकांतर फलन, इसको द्विवार्षिक फलन भी कहते हैं, फलों का गिरना, स्पॉन्जी रोग, जेली बीज, फलों का फटना। आज हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे।
2: जी, अभी आपने कहा रोग और विकार, तो रोग और विकार में क्या अंतर है?
3: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे हम लोग कभी कभी रोग और विकार में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि रोग मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि के संक्रमण से होता है, जबकि विकार पोषक तत्वों की कमी, तनाव, जलवायु तथा तापमान में परिवर्तन, हार्मोन्स के असंतुलन की वजह से होता है। इसमें किसी जीव या विषाणु का संक्रमण नहीं होता है।
2: जी, अब आगे हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कोयलिया रोग क्या है और इसके लक्षण को हमारे किसान भाई कैसे पहचाने, कृपया इसके विषय में बताएं।
3: कोयलिया रोग, जिसे काला सिरा भी कहा जाता है, यह आम का गंभीर शारीरिक विकार है। यह मुख्य रूप से बाग के आसपास स्थित ईंटों के भट्ठों से होता है। यह समस्या उन आम के बागों में अधिक होती है जो ईंट भट्ठों से 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में स्थित होते हैं। इन भट्ठों से निकलने वाली हानिकारक गैस बौर और छोटे फल के संपर्क में आती है तो फल की कोशिकाओं को क्षति पहुंचाती है। इसके कारण फल का निचला हिस्सा पहले पीला पड़ता है, फिर भूरा होकर अंत में काला और कठोर हो जाता है। इससे आम समय से पहले पककर सड़ने लगते हैं। इसके अलावे बोरोन की कमी भी इसका एक मुख्य कारण है।
2: जी, तो कोयलिया रोग का नियंत्रण कैसे करना चाहिए?
3: देखिए, इस समस्या से निपटने के लिए एक बहुत सरल उपाय है। किसान क्या करें कि वो 6 ग्राम बोरोन और 6 ग्राम कपड़ा धोने वाला सोडा प्रति लीटर पानी में डालकर घोल तैयार कर ले। इस घोल को आम के पेड़ पर छिड़काव करने से कोयलिया रोग को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है।
2: जी।
3: यह घोल फलों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है और उन्हें काला होने से बचाता है। छिड़काव के लिए टैंकर या प्रेशर स्प्रेयर का उपयोग करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि छिड़काव पूरे पेड़ पर समान रूप से हो, विशेषकर फलों वाले हिस्सों पर। पहला छिड़काव फल लगने की शुरुआत में और दूसरा 15 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। रोग का लक्षण दिखने से पहले ही सावधानी के तौर पर पहले ही छिड़काव कर देना बेहतर होगा।
2: जी, अब गुम्मा रोग के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं कि गुम्मा रोग क्या है।
3: देखिए, आम का गुम्मा रोग, जिसे गुच्छा रोग के नाम से भी जाना जाता है और इसे अंग्रेजी में मैंगो मालफॉर्मेशन भी कहा जाता है, यह आम की फसल

0: को प्रभावित करने वाला एक गंभीर और जटिल रोग है जो फल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस रोग के कारण पत्तियों, शाखाओं और विशेष रूप से फलों में असामान्य विकृति होती है, जिससे फलों का विकास रुक जाता है और वे विकसित नहीं हो पाते हैं। यह रोग मुख्य रूप से दो रूप में प्रकट होता है। पहला है वानस्पतिक गुच्छा और दूसरा है पुष्पीय गुच्छा। पुष्पीय गुच्छा रोग अधिक गंभीर होता है क्योंकि यह सीधे फूल आने और फल लगने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जिससे उपज में भारी कमी आती है।
1: जी, तो आम में पुष्पीय गुच्छा रोग के लक्षण क्या हैं और वानस्पतिक गुच्छा विकार को कैसे पहचाना जा सकता है?
0: जी, वानस्पतिक गुच्छा विकार में पत्तियां छोटी हो जाती हैं और विकृत हो जाती हैं। टहनियों के सिरों पर पत्तियां सघन व असामान्य गुच्छे के रूप में उग जाती हैं। पुष्पीय गुच्छा रोग के प्रमुख लक्षण हैं पुष्प क्रम का मोटा होना, सामान्य फूल आने के बजाय फूल छोटे, मोटे और हरे भरे गुच्छों में बदल जाते हैं। इसका दूसरा लक्षण यह है कि संक्रमित फूल सामान्य फूलों की तरह झड़ते नहीं हैं, बल्कि पौधे पर बने रहते हैं और धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं। इसका तीसरा लक्षण यह है कि इन विकृत पुष्प क्रमों पर फल नहीं लगते, या यदि लगते हैं तो वे छोटे आकार में रह जाते हैं और अविकसित होते हैं। एक और जो लक्षण इसका दिखने को मिलता है वो यह है कि पुष्प क्रम के पास की पत्तियां भी छोटी और विकृत हो जाती हैं।
1: जी, ये गुच्छा विकार के कारण क्या है?
0: देखिए, आम का जो ये गुच्छा विकार है इसके कई कारक जीवों से जोड़ा गया है, लेकिन मुख्य कारक एक कवक यानी फंगस है जिसका नाम फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी कहा जाता है। यह कवक रोग का प्रमुख कारण माना जाता है। यह पौधे में कुछ रसायन जैसे फाइटोटॉक्सिन, हॉर्मोन्स और मुख्य रूप से इथिलीन गैस उत्पन्न करता है जो पौधों में असामान्य वृद्धि का कारण बनता है।
1: जी।
0: इस रोग में मकड़ी और वायरस की भूमिका का भी सुझाव दिया गया है, लेकिन कवक को प्राथमिक कारक के रूप में सबसे अधिक स्वीकार किया जाता है।
1: इस रोग के नियंत्रण किस प्रकार किया जाए?
0: जी, देखिए, आम का जो गुच्छा रोग है, गुच्छा विकार है, इसके नियंत्रण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सबसे पहले संक्रमित भागों को हटाना होता है, जिसमें जनवरी के अंत तक या फूल आने से पहले संक्रमित पुष्प क्रमों और वानस्पतिक गुच्छों को काट कर नष्ट कर देना चाहिए। यह रोग के प्रसार को रोकने में मदद करता है। दूसरा उपाय यह है कि कार्बेंडाजीम नामक एक फफूंदनाशक होता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। फफूंदनाशकों का छिड़काव रोग को नियंत्रित करने में प्रभावी पाया गया है। पहला छिड़काव अक्टूबर नवंबर में और दूसरा छिड़काव दिसंबर जनवरी में किया जाना चाहिए। इसके अलावा नैप्थलीन एसिटिक एसिड, जिसको NAA कहा जाता है, इसका छिड़काव भी पुष्पीय गुच्छा रोग को कम करने में सहायक होता है। फूल आने से पहले अक्टूबर के अंत में NAA की 100 से 200 ppm मात्रा में इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावे पौध स्वास्थ्य प्रबंधन करना भी जरूरी होता है। रोग मुक्त नर्सरी से स्वस्थ पौधे लगाना महत्वपूर्ण है। पौधों को संतुलित उर्वरक प्रदान करना चाहिए, विशेष रूप से पोटेशियम और फास्फोरस पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही रोग प्रतिरोधी आम की किस्मों का चुनाव करना दीर्घकालीन नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। बाग की नियमित सफाई और रोगग्रस्त पत्तियों व शाखाओं को हटाकर नष्ट करना भी रोग के फैलाव को कम करता है।
1: जी, तो आगे हमारे किसान भाइयों को बताएं कि द्विवार्षिक फलन या एकांतरण फलन यह क्या है और इसके क्या मुख्य कारण है?
0: देखिए, ये हम अब दूसरे विकार की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कि एक बहुत प्रमुख विकार है एकांतर फलन।

0: इसमें क्या होता है कि पेड़ एक साल भरपूर फसल देता है, जिसको हम अंग्रेजी में ऑन ईयर कहते हैं,
1: जी
0: लेकिन अगले साल उत्पादन बेहद कम या शून्य हो जाता है, इसको हम अंग्रेजी में ऑफ ईयर कहते हैं। इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे पोषक तत्वों की भारी कमी। जब क्या होता है, ऑन ईयर होता है जब पेड़ में फल लगे होते हैं, तब पेड़ अपनी सारी ऊर्जा फल बनाने में लगा देता है, जिससे अगले साल के लिए फूल यानी बौर बनाने हेतु पर्याप्त खनिज नहीं बचते। इसके अलावे अनियंत्रित वानस्पतिक वृद्धि भी इसका कारण होती है। यदि मौसम के अनुसार शाखाओं की वृद्धि अत्यधिक हो जाती है, तो भी फूल आने की प्रक्रिया बाधित होती है।
1: जी
0: जलवायु व तापमान परिवर्तन तथा सही समय पर ठंडक न मिलने के कारण भी यह समस्या उत्पन्न होती है। कीट व फंगस के प्रकोप जैसी समस्या भी इसका कारण बनती है।
1: जी तो एकांतरण फलन के लक्षण क्या हैं ये बताएं।
0: एकांतरण फलन में सबसे इसमें क्या होता है, बौर असंतुलित आती हैं, मतलब एक हिस्से में, पेड़ के एक हिस्से में बौर आती हैं और दूसरे हिस्से में बिल्कुल नहीं आती।
1: जी तो इसका समाधान क्या है।
0: इसके लिए पैक्लोब्यूट्राजोल का प्रयोग सबसे प्रभावी होता है। यह वानस्पतिक वृद्धि को रोककर फूल लाने में मदद करता है। इसे सितंबर अक्टूबर में पेड़ के तने के पास मिट्टी में दिया जाता है। साथ ही हल्की छटाई करनी चाहिए। ऑफ ईयर से पहले पेड़ की सूखी, रोगग्रस्त और घनी शाखाओं की कटाई छटाई करनी चाहिए। हर साल पेड़ की गुड़ाई करनी चाहिए और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरोन देना चाहिए।
1: अक्सर देखा जाता है कि पकने से पहले ही फल गिर जाते हैं, तो फल गिरने का मुख्य कारण क्या है और इनके लक्षण क्या हैं।
0: देखिए, इसमें क्या होता है, जो फल गिरने की समस्या होती है, इसमें जब फल मटर के साइज का होता है या मार्बल के आकार का होता है, तभी ये पेड़ से झड़ जाते हैं। फल जो है पेड़ से झड़ जाते हैं। इसके मुख्य कारण है प्राकृतिक हार्मोन ऑक्सिन की कमी।
1: जी
0: मिट्टी में नमी की कमी या बहुत अधिक जल भराव के कारण भी फल गिरने लगते हैं। इसके अलावा खराब परागण भी इसका मुख्य कारण है। परागण करने वाले जो कीट होते हैं, जैसे आम में मधुमक्खियां जो होती हैं परागण करती हैं, अगर उनकी कमी हो जाए तो भी फल गिरने लगते हैं। इसके अलावे कीट या फंगस का हमला होने पर भी फल गिरने लगते हैं।
1: तो फलों का गिरना रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए हमारे किसान भाइयों को।
0: जब फल मटर के दाने के आकार के हों, तो प्लानोफिक्स या NAA, उसको हम NAA के नाम से जानते हैं, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी में डालकर घोल बनाकर पेड़ पर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावे परागण बढ़ाने के लिए बागों में मधुमक्खी के बक्से रखने चाहिए, ताकि परागण सही हो। फंगस तथा रोग प्रबंधन के लिए ब्लाइटॉक्स 60 ग्राम 20 लीटर पानी में डालकर घोल बनाना चाहिए और पेड़ पर छिड़काव करना चाहिए। साथ ही बगान की सफाई का ध्यान रखना चाहिए और खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए।
1: तो किसान भाइयों, आज के बातचीत से यह स्पष्ट हो गया कि यदि हम सही समय पर लक्षणों की पहचान करें और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए प्रबंधन के तरीकों को अपनाएं, तो हम आम के बगीचों को इन विकारों से काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो डॉक्टर वर्षा, आप हमारे स्टूडियो में आए और आम के प्रमुख विकार, कारण, लक्षण और इसके प्रबंधन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: एखन हमरे मन जानकारी करत रही आम कर प्रमुख विकार, लक्षण, कारण और उकर प्रबंधन कर बारे में बतात रहे डॉक्टर वर्षा रानी और इकर से बातचीत करत रहे कृष्ण जीवन पौराणिक। तो इकरे संगे इला बहिन खेती बाड़ी कार्यक्रम कर बेरा सिरालक। तो जितना भी सुनवैया भाई बहन मन है, कहीं नहीं जाबे, तुरंत हमें लागल लागल हमरे मन हमारी दुनिया कार्यक्रम में भी
3: प्रवेश करे जाती।
2: तो इला बहिन देखो, बात रहलक कि देखो ग्रामीण पृष्ठभूमि में रह वाला जे आदमी मन है, चाहे महिला हो पुरुष है, और एखन कर जे कहना जे समय है, सब खेती बाड़ी से तो सब जुड़ले हैं, लेकिन संगे संगे ये बात है कि हमारे कर देश कर जे

0: ताना बुना है, कहे के मतलब जब सांस्कृतिक विरासत ऐसा है कि सब धर्म कर रहक वाला भी है, सबकर अलग अलग खान पान भी है, पहनवा भी है, लेकिन जब जरूरत पड़ेला तो सब एक सूत्र में बन जाए ना, और देश के एकता कर सूत्र में बांधे में सब आगे आ जाए ना। यह हमारे कर विशेषता है, सांस्कृतिक विशेषता है कि सब मिलजुल के, चाहे हिंदू सिख ईसाई कोई भी है, धर्म के किनारे रख के जब देश कर आन बान कर बात आवेला उसन स्थिति में सब एक सूत्र में बांध के एकता कर प्रयोग में रह जाए ना।
1: हाँ एकदम जरूर है, सही कहे लाएगी। अब जैसे देखो कि हमें जब भारत में रह थी तो नाना ढंग कर खान पान रहन सहन, हाँ, तीज त्योहार, पिंधे कोढ़े, गायक बजायक सब कुछ अलग है, लेकिन सब आखिर में काही हमें तो सब भारतीय ही है, नहीं
0: सब हमारे में सब भारतीय है कि, और धर्म अलग जगह है, खान पान भी क्षेत्र विशेष पर अलग अलग है, भाषा भी अलग है,
1: हाँ।
0: लेकिन जब जरूरत पड़ेला, चाहे जब से कोई पर्व त्योहार कर बात होएला तो पर्व त्योहार में सब मिलजुल के एक दूसरे के साथ
1: भाई प्रेम पूर्ण व्यवहार रही, हाँ। के एकदम करे ना सब बहुत बढ़िया से,
0: और वही चीज हमरे कर पूरा दुनिया में दिखाएला कि भारत का संस्कृति विरासत ऐसा है कि चाहे कोई भी धर्म कर हो, कोई भी भाषा कर हो, कुछ भी क्षेत्र कर हो, सब मिलजुल के एक साथ आए जाए ना, ये
1: हाँ।
0: चीज दुनिया भी जानेला, तो यही चीज के हमरे मन के बरकरार रखे के चाहिए, सब मिलजुल के रहे चाहिए, जब मैंने पर्व त्योहार आएला तो एक दूसरे से गले मिलना चाहिए, एक दूसरे के की मुबारक भी देना चाहिए, और जाति पाति में बैठ के नहीं रहे चाहिए,
1: नहीं रहे चाहिए, एकदम सही कहा थी काले की। देखो हमें ये जात पात वाला चीज है,
0: हाँ,
1: इके सदियों से झेलते आती, और जे हम इनकर देश के बनायक में अपन योगदान दे हैं, जे भी युग पुरुष मन,
0: हाँ,
1: महिला मन, उमन कर कहे का रहे कि भाई सब एक सूत्र में बहन जाओ, और सब अपन खाली एक ठो पहचान के बनाल रखू कि हाँ भाई हम इन सब भारतीय ही, और उकर बादे हैं अब बंगाली, असामी, झारखंडी कोनो ही, तो सब उकर बादे ही,
0: हाँ,
1: चाहे वो पहचान नखे भी।
0: सेले जरूरी है कि अपन देश कर एकता में रह कर पिरोए कर, कहे उकरे से देख कर जे संगठन है मजबूती मिलेला,
1: हाँ।
0: जाति धर्म के एक तरफ रखू, भले जब पर्व त्योहार आएला अपन अपन पर्व मनाएला, लेकिन एक दूसरे के पर्व में भी जाके सहभागिता और शामिल हो चाहिए,
1: बिल्कुल
0: है नी,
1: हाँ।
0: तो चलू कार्यक्रम के आगे बढ़ाईला, बात तो नहीं सिराई है नी, और नागपुरी लोक गीत सुनीला राम उचित सिंह और संगी मनकर गावल गीत के।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: तो एक हम सुन रहे रामउचित सिंह और सागिंग मरकर नागपुरी लोकगीत। अब हमरे बन जानकारी करब, देखो पलायन हमरे कर झारखंड कर स्थिति सन है कि यहाँ काम धंधा जब नहीं मिले लागेला, उसन स्थिति में दूसर प्रदेश में चाहे बाहर में जाए के अपन रोजगार कर सिलसिले में बाहर चल जाए ना। कहे का मतलब है कि अपन मिट्टी के छोड़ के दूसर जगह जाए के उमन काम धंधा कराना रोजगार के लिए अपन घर परिवार के चलाए के लिए। लेकिन जब अगर सोच में और सकारात्मक परिवर्तन करके अगर अपन घर कर अपन खेत कर मिट्टी में ही जुड़ के उमन उकर पलायन कर समस्या का समाधान कर सके ना।
2: हाँ,
1: है नहीं?
2: हाँ।
1: तो यह संबंध में हमारे मन जानकारी करब पंच परगनिया में पलायन समस्या और उकर समाधान बताबा के ललित मोहन महतो। तो चलो सुन ले।
3: दुनिया महान जितना किस्म के जीव जंतु व प्राणी आहन सब के अपन जीव बचाए के खातिर हवा पानी और आहार के दरकार आहे। हवा तो सांस लेवे के खातिर प्रकृति ले सो तो मिलेला, किंतु आहार पानी के खातिर तनिक चेष्टा करे होला। हर जीव जंतु अपन पेट भरे करते हैं आहार पानी के खोज महान रहेला। एह प्रक्रियाटा सभी जीव जंतु व चोड़ चुनगुनियों करें।

मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके माय गॉड पर एक मेल मिला। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में आया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज देखते रहते हैं, कोई खाता इतना ही नहीं। ढूंढते थे भाई कहीं रेलवे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालते हैं। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़ यार, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क
6: रहिए। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की जताई प्रतिबद्धता। अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। देश में उच्च शिक्षा में नामांकन रिकॉर्ड 4.5 करोड़ के पार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, सुधारों का दिख रहा असर। राज्य के सभी सदर अस्पतालों में बनेंगे अत्याधुनिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को एक ही परिसर में मिलेंगी सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने रांची में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से की मुलाकात। ग्रामीण योजनाओं के प्रगति की समीक्षा। और रांची में डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर खेल सचिव ने की उच्च स्तरीय समीक्षा। 18 जुलाई को भारतीय सेना करेगी विशेष ट्रॉफी टूर का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। रांची में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने योजनाओं को समय पर पूरा करने और छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया। देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन का एक नया रिकॉर्ड बना है, जो बढ़कर 4.5 करोड़ तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ताज़ा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट के हवाले से बताया कि यह संख्या वर्ष 2014-15 की तुलना में 31%

0: स्पष्ट किया कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को फॉर्म जमा करने के लिए कैंप लगाने की अनुमति नहीं है।
1: कोई भी कैंप करवाने के लिए बात करके उसी तरफ से कराया जा रहा है, उसमें कैंप केवल पॉलिटिकल पार्टी कर सकते, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है, कोई वार्ड पार्षद है, उसी तरफ से कोई वार्ड व्यक्ति कैंप नहीं कर सकते, केवल पॉलिटिकल पार्टी है अपने या वोटर के तरफ से BLA2 के माध्यम से करा सकते हैं, वहां पर भी वोटर से कोई भी फॉर्म भरवाने के नाम में पैसा खर्च नहीं लेना है।
0: छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने धनबाद में राजस्व कार्यों और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा की। समाहरणालय में आयोजित बैठक में उन्होंने दाखिल खारिज मामलों को समय सीमा के भीतर निष्पादित करने का कड़ा निर्देश दिया। आयुक्त ने जिले में SIR फॉर्म वितरण और डिजिटलीकरण की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।
2: लक्ष्य के अनुरूप ये जिला चल रहा है और इस जिले में जो भी हल्की फुल्की निर्देश थे देने का था मैंने दिया है। आंतरिक संसाधन के जितने भी विभाग थे उनका भी प्रगति संतोषप्रद है, ऐसा कोई मुझे देखने को मिला। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का डिजिटलाइजेशन होने का तो संतोषप्रद है। शहरी क्षेत्र में कुछ कमी है जिसको हम लोग समय पर पूरा कर।
0: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी सदर अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए अत्याधुनिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विकसित किए जाएंगे। इन विशेष केंद्रों में आधुनिक लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रसव संबंधी सभी समग्र स्वास्थ्य सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। नई दिल्ली में आगामी 23 जुलाई को अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेवा दल का महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल होंगे। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज रांची के कांग्रेस मुख्यालय में झारखंड सेवा दल की बैठक हुई। मुख्य संगठनकर्ता नवीन कुमार सिंह ने कहा कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड से सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेंगे। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर निवेश के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रांची में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दावोस यात्रा के दौरान जिन कंपनियों के साथ MOU हुआ था उन्हीं के साथ दिल्ली में दोबारा MOU कर प्रस्तावों की रीपैकेजिंग की गई है। उन्होंने केंद्र की अनुमति के बिना जिंदल स्टील के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के MOU पर कड़ी आपत्ति जताई।
3: गिनाने में 99,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी जोड़ दिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट कितना एक बेहद संवेदनशील विषय होता है आप जानते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इतने सारे डिपार्टमेंट्स की परमिशन की आवश्यकता होती है, वो बिना लिए हुए उन्होंने घोषणा कर दी कि ये निवेश होगा। मैं दूसरे कागज का एक टुकड़ा मानते हैं।
0: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में विभिन्न छात्र संगठन और अभ्यर्थी कल रांची स्थित JPSC कार्यालय का घेराव करेंगे। आगामी आंदोलन की रणनीति को लेकर आज रांची में अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों की बैठक हुई। आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने प्रदर्शन को समर्थन देने की घोषणा करते हुए परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता जताई। अभ्यर्थियों ने सभी छात्रों और राजनीतिक दलों के छात्र विंग से राजनीतिक मतभेद बुलाकर एकजुट होने की अपील की है। रांची में आयोजित 2 दिवसीय पंचायत समुदाय समन्वय कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांड्या सिंह ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि महिलाओं को सक्रिय भागीदारी के बिना समृद्ध झारखंड की कल्पना अधूरी है। उन्होंने समावेशी स्थानीय विकास के लिए पंचायतों और स्वयं सहायता समूह के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।
4: पंचायती राज की प्रतिनिधि और जो हमारी समूह की बहनें हैं जो क्लस्टर लेवल फेडरेशंस बना करके अब काम कर रही हैं, उनके सामूहिकता से किस तरीके से हमारे पंचायत हमारे गांव और कैसे समृद्ध हो सके। आजीविका

0: के जो काम है उसमें जीपीडीपी और जो विलेज वीआर पीपीआरपी को कैसे समायोजित करते हुए हम लोग अपने गांव को समृद्धि की तरफ ले जाएं, इसका यह प्रयास है और इस सहभागिता से संभव है, उस पर यह कार्यशाला।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने आज रांची में राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मुलाकात कर विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र राज्य समन्वय मजबूत करने पर चर्चा हुई। राज्य में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है, जिससे अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल रांची, जमशेदपुर, धनबाद और दुमका सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। हालांकि राज्य में अब भी सामान्य से 40% कम बारिश दर्ज की गई है। रांची में 26 जुलाई से शुरू होने वाले डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियों को लेकर खेल सचिव मुकेश कुमार ने समीक्षा बैठक की। मोरहाबादी स्टेडियम में 16 अगस्त तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित आयोजन की सुरक्षा और साफ सफाई के कड़े निर्देश दिए गए हैं। आगामी 18 जुलाई को भारतीय थल सेना द्वारा शहर में विशेष ट्रॉफी टूर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की जताई प्रतिबद्धता, अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। देश में उच्च शिक्षा में नामांकन रिकॉर्ड 4.5 करोड़ के पार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, सुधारों का दिख रहा असर। राज्य के सभी सदर अस्पतालों में बनेंगे अत्याधुनिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को एक ही परिसर में मिलेंगी सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने रांची में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से की मुलाकात, ग्रामीण योजनाओं के प्रगति की समीक्षा और रांची में डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर खेल सचिव ने की उच्च स्तरीय समीक्षा। 18 जुलाई को भारतीय सेना करेगी विशेष ट्रॉफी टूर का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आगे सैलरी?
4: हाँ।
3: नहीं झुमके?
4: ना। पहले बचत।
3: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: आरबीआई कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: प्रस्तुत है जिले में आज

0: इस अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता।
1: भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गुमला सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का प्रत्येक महीने की 9 तारीख को निःशुल्क व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस संबंध में सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि
2: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है, इसके तहत तो जो मेन ध्येय होता है कि हम लोग वैसे प्रेगनेंसी को हम लोग एड्रेस करते हैं जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उनको हम लोग अस्पतालों तक लाए और अस्पताल में ला करके उनको हम लोग उचित जो एक क्वालिटी सर्विसेज है वो मुहैया करा सके, जो एसेंशियल जो हमारा जांच है वो जांच कर सके, अल्ट्रासाउंड कर सके एवं जो भी दवाएं हैं वो दवा हम लोग उपलब्ध करा सके। आज हम लोग एक भोजन भी देते हैं, वो एक टोकन होता है। एक्चुअली वो टोकन इसलिए होता है कि हम लोग इसी के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं कि यू फर्स्ट, पहले आप खाइए तब अपने घर के और लोगों को खिलाइए, क्योंकि आप गर्भवती हैं और आपको ज्यादा जरूरत है भोजन की।
1: गुमला वन प्रमंडल इस मानसून में RDF तथा सिविल कल्चर स्कीम के तहत गुमला जिला के अलग अलग क्षेत्रों में 200 हेक्टेयर वन भूमि में 2,00,000 से अधिक पौधे लगाएगी। इस संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी अहमद बिलाल अनवर ने बताया कि
3: 2-3 बारिश और जैसे हो जाएगी, मिट्टी में नमी बढ़ जाएगी, तब प्लांटेशन कार्य कराया जाएगा। RDF जो स्कीम हमारा है और सेरिकल्चर जो स्कीम है, उसके तहत जहाँ जहाँ प्लांटेशन होगा उसके लिए सारी बैकग्राउंड वर्क वो किया जा चुका है। वी एक्सपेक्टिंग कि विद इन नेक्स्ट 15-20 डेज प्लांटेशन का कार्य जोर शोर से शुरू होगा। तो इस बार 2,00,000 से ज्यादा पौधे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे करीब करीब 200 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड में ये कार्य किया जाएगा, जिसमें आपका फॉरेस्ट लैंड में, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड में प्लांटेशन, रोड साइड प्लांटेशन, रिवर साइड प्लांटेशन का कार्य किया जाएगा इस मानसून अगले एक महीने के अंदर।
1: महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग गुमला के संयुक्त तत्वावधान में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जीवन परियोजना के एक वर्ष की प्रगति एवं आधारभूत सर्वेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने बताया कि
4: ये एक परियोजना जो एक वर्ष पहले पिछले जुलाई से प्रारंभ की गई थी जिले में और ये टाटा ट्रस्ट के सौजन्य जिले में संचालित की गई थी और इनका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिलों से 6 साल के बच्चों और माताओं के पोषण में कैसे सुधार हो, इसको लेकर ये ग्रुप संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जीवन परियोजना के नाम से। और ये परियोजना 1 साल होने के बाद हमारे सभी ICDS सेंटर्स के सेविका इनके साथ मिलकर इन पर काम किए हैं।
1: बहरहाल केंद्र सरकार की यह प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाने और उनका तुरंत इलाज करके मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
0: अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। आज आप सुनेंगे उराव भाषा में।
1: आदिवासी अखड़ा में उर्मा भाई बहन रेन एन नेली ग्रे सिक्का
2: रसंगीता बेगतैती
1: उर्मा रेन ओ लगी अरा मुजरा एक एम घोकदम का नेम उर्मार दावले रदर हतं अन्नेम एम एड़ो हूँ दावले रदम इन्ने लगा चेप गही उल्ला दरा रोपा डोभा गही नलग हमना लगे हतं नलग गा अकै रही इन्ने ला पही का बहिन।
2: हाँ इन्ने ला तो बहुत नलग
1: रही हाल नो अकाय नलख रही का बाय तो इन्ना तब पाई थी के बिजली अरा पानी गही बचत नन एका से नन्ना चाहिए और संगे नो धान रोपनी ती एका से तेजी नन्ना चाहिए अधे गहरी पैतनु ना मिन्ना नक्रोत।
2: तो इन्ना ला इड़पा गुठिन एर दत का नाम बिल्ली बंद मल नंदत नाम बिल्ली दग दत की तेब आगे हूँ मोध दत का दत अरा नल तिसगर की हूँ नाम बंद मल नंदत आउंगे अन्य नल ती अम्मे बाते और बीजरते रे आउंगे नमा गे इबड़न ध्यान चीना मनी और ध्यान चीना मनो
1: मानिम कथा। हाँ मानिम कथा बाचकिन नमा गे अम अरा बिजली गुठी एर दत का एक एक ना एउंदा मनी आउंदा नाम अदिन ध्यान मल ची दत बाय ना मेरे पन उरा दा दिन भर बिल्ली लग रहा थे मेरे पन उरा अरके यार एका रूम नो जरूरत मतलब तो ना मगे दिन तेबना चाहिए बाय और अपन मेरे पन ता आलन हूँ तेंगना चाहिए ताकि यार हूँ थरा लोर सीख रहा और अत्तो के हूँ और खुद हूँ रखना ना उंगोर का बाय।
2: हाँ हाँ जैसे कि नाम अखदत का अम अरा बिजली नम है आल जैत गही जमेती बग्गे को हम महत्वपूर्ण जरूरी तली इदि ही बगैर इनलता जिंदगी की कल्पना नन्ना लगभग असंभव के अमनम है जिंदगी ही आधार के जबकि बिल्ली नम है इड़पा लूर इड़पा अस्पताल उद्योग अरा संचार व्यवस्था नन दाव रूपे चला बागे कोहा भूमिका निभावी कोहा जनसंख्या शहरीकरण अरा संसाधन गही बग्गे उपयोग नन्ना गही करने इन्ना

0: Dandiga akai do minjkat ange nam akun inna sikcha gahi eonda chaad rahi nam akun minot sikcha se hota samaj ka vikas idin tenga lagdas bhai se bahadur uraus.
1: समाज तिही विकास मनी शिक्षा उन्टे आलर गही पुंजी ही के शिक्षा आ साधन रही आद खोढ़ा घी भैर शिक्षित मल ननी आलर घी भित्रे जिया नुहु विकास नुहु सहड़ा ननी खोढ़ा मलता देश घी विकास हुर्मी ती बग्गे शिक्षा सहड़ा मनी खोढ़ा उन्टे ती बग्गे आलर गही गोहड़ा ती मिसरार बनी उन्टे बृहद गोड़ बानर अय्यम हुर्मी आलर आलर घी क्रिया कलाप नु पढ़ा सुरक्षा अरा निर्वा गुठी इन्निम गोड़मनी अदिन खोहरा बानर आलर प्राकृति घी सर्वोत्तम सृजाचका हिके ने तंग आसंगे इंद्रियम कुंदुरका सवंग उन्द्रार बरनर शिक्षा घी द्वारा आलर घी कुंदुरका सवंग घी विकास आस घी लूर मलता हुनर कौशल नु बढ़ी अरा व्यवहार नु परिवर्तन मना उंगी अरा अदिन सब सुसंस्कृत मलता आलर रिन कमा उंगी ई नलक आलरिन सृजन ती आस गही परिवार मैया अनौपचारिक रूपे ती तपस्यत खोढ़ा लुरकुड़िया अरा पढ़ा नु हूँ इंद्राम मला इंद्राम सिखरनर अरा सिखाब नर सिखाब आते घी करम लुरकुड़िया अम्बना तीस खोखा गुटी चलरनुम रई अरा जिनगी भय रई तंगा वास्तविक अर्थ नु नेखाए खोड़ा नु सैदव चलरु मधे सिखरा सिखब आना गीहू संप्रयोजन प्रक्रिया दिम शिक्षा ही के शिक्षा अरा खोड़ा घी व्यापक अर्थ हुर्मी आलर सिर्जन सर्वप्रथम पहला टीप तंगियो घी कोइछानु बचनर ई शिखर आ अनुभव घी परिणाम इन्ने मनी आद किरमे किरमे विभिन्न प्रकार ती तंगा भौतिक पढ़न अरा आध्यात्मिक वातावरण ती तंगा समंजस स्थापित ननी शिक्षा एकाम खोढ़ानु सैदव चलरु आ स्वदेश पढ़न प्रक्रिया ही के एकदाती आलर घी सिर्जन सवंगी विकास आस घी लूर मला कला कौशल नु बढ़ी अरा व्यवहार नु परिवर्तन मना उंगी ई प्रकार आसीन सभ्य संस्कृत अरा योग नगरीक कमा उंगी इन्नीति आलर खोढ़न एड़ो निरंतर विकास ननी शिक्षा घी नलक शिक्षा उन्टे बहुमुखी प्रक्रिया ही के एक आम आलस खोढ़ा गे राजी गे शिक्षा घी द्वारा एकदा खखरी अदिन शिक्षा गही उद्देश्य ही के ई उद्देशन गही फुर्ती ननादिम शिक्षा गही नलाक ही के शिक्षा घी नलक नंबर एक शिक्षा घी समान नलक नंबर दुमानीय जीवन नु शिक्षा घी नलक सामाजिक जीवन नु शिक्षा घी नलक और राष्ट्रीय जीवन नु शिक्षा गही नलक सामाजिक जीवन नु शिक्षा घी नलक आलर उन्टे सामाजिक जिया हिकनर आर खोढ़ा घी संगे निर्वाह नन्नर एकदा शिक्षा नन्ना नन्ना नलक नना मनी अदिन इंद्रिम नलक गही डाड़ा रई खोढ़ा गे संगे अनुकूलन सामाजिक कुशलता घी उन्नति मलता सुधार सामाजिक कर्तव्यों घी पुराबाना संस्कृति अरा सभ्यता घी विकास व्यक्तिगत हित घी सामाजिक हित नु जोड़ना सामाजिक भावना जगबाना सामाजिक गुण का विकास हुर्मी आलर खोड़ा नु जन्म होनर अरा खोड़ा नु पलवित मन्नर शिक्षा खोड़ा नु सिखरनर आलर जीवन व्यतीत नन्नर अरा खोड़ा नु हु आस गही जीवन लीला मुंजरी इन्नेम स्थिति नु शिक्षा घी महत्वपूर्ण कर्तव्य मनी दरा कुकोर नु सामाजिक भावना जगाबई अन्नेम दया परोपकार सहनशीलता सहानुभूति अनुशासन अन्यम सामाजिक गुणन विकास ननी आलर घी शिक्षा तंगा खोढ़ा नु वातावरण संगे मुंदिम शिक्षा खखरी वातावरण घी अनुसार शिक्षा ग्रहण मनी शिक्षा घी उद्देश्य बेस शिक्षा आदि के एकदा जीवन घी वास्तविक परिस्थिति संबंधित मनी शिक्षा जीवन पर्याप्त चलरू मध्य प्रक्रिया ही के जीवन नु बदलरू परिस्थिति घी अनुकूलन अन्य परिवर्तन न उंगनर जीवन घी बदलरू परिस्थिति नु शिक्षा घी मध्यम समंजस कमार उद्देशन घी पूरा नना उंगनर शिक्षा थी खोड़ा घी उत्थान अरबिका संभव रही हुर्मी खोड़ा घी सभ्यता रा संस्कृति घी उन्नति तरा उन्टा पीढ़ी ती दूसरा पीढ़ी तरा ले हुई बेस खोड़ा घी बेस शिक्षा नु संभव खोड़ा नु वातावरण घी अनुकरण ननर की शिखरनार शिक्षा घी सामाजिक पच आलर घी जनाम विकास अरा उन्ना मोखना खोड़ा नु मनी अरा खोड़ा दिम हुर्मी अवशक्तन पूरा ननी खोड़ाती जुदा जुदा जीवन असंभव रही आस खोड़ा गे हुर्मिन नेछावर नु त्यार रानर खोड़ा सभ्यता अरा संस्कृतन जनमची आद पोषण ननी आलरघी पसाविक प्रवृत्तियां दमन थमी खोड़ा नु रा की वातारण थी सिखरनर आज शिक्षा खोड़ा थी सिखरी खोड़ा नु शिक्षा घी निर्माण शिक्षा घी खोड़ा नु सवंग ती आधारभूत आइन व्यवस्था खोड़ा घी प्रतिमान अरा मूल्य ती सिखरनर खद्दर खोड़ा गे विशेष इतिहास ती परिचित मन्नर शिक्षा खोड़ा अरा आलर घी क्षमता विकसित नन्ना प्रक्रिया ही के खोड़ा घी बेगर शिक्षा घी विकास असंभव रही इसगन शिक्षित आलर अनर असन सभ्य खोड़ा मनी खोड़ा गे विकास शिक्षा की भूमिका अकय चाड़ रही खोड़ा गे विकास नु शिक्षा की भूमिका मनी शिक्षा की भूमिका खोड़ा प्रयोग नर की खोड़ा घी इसर का आलुन जोड़ा उंगी एड़पा नु आयो बबर संगे हुर्मी आलर रनर आर आलर घी एड़पा नु तंगा आलर ती शिक्षा खखरी आलर तंगा खोड़ा ती समुदाय घी मझी रना सहना काला संस्कृति परब त्योहार भाखा घी लूर खोड़ाती खखरी बेचना नलना संबंधी क्रिया बेचना कुकुर घी जन्म कर्म स्वाभाविक स्वतंत्र प्रवृत्ति रही कुकुर नु वचनी मूल एकाने चुन्हा स्वानुभूति सहनशीलता सहयोग भातृत्व परोपकार आत्मविश्वास नेतृत्व क्षमता बेड़ा घी पाबंदी आदि घी विकास गे खोड़ानु बेचना नलना संबंधी क्रियाएं आयोजित नन्नर अरा इदि घी संचालन हु ई कथा उइनर खद्दर नु अवांछित मूल्य घी विकास मल मन्ना अरा वंचित मूल्य ही विकास मनी खोड़ानु आर की आलर जन्म करम हु अर की खेना गोटी परब त्योहार खोड़ानु मना बनर अयम आलर अनुकरण नन्नर की सिखरनर खोड़ानु पीढ़ी मिया पीढ़ी परब त्योहार चलरनुम रई खोड़ानु ने परब नेखाय अरा एकासे मनाबानर अदिन दावलेती अखनर दुर्गा पूजा करम खद्दी जितिया ईद इबड़ा परब त्योहार ने मनाबी अरा एका जातियर इन्ने आर गही जियानुम कुंदी इबड़न खोड़ानुम सिखरनर खोड़ानुर आर की राष्ट्रीय परब 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर बड़ा उत्साह ती मनाबानर ई उल्ला हुर्मी सरकारी ऑफिस बंद री इन्ने नु खोड़ा गे मझी रऊ समुदाय अखाबिदनर का इन्ने उल्ला इंद्र खत्री छुट्टी रही इदी गही इतिहास कहानी खोड़ा ती मिनर अरा अखनर शहीद आलर गही नामे ती खोड़ानु जयंती मनाबानर
2: वार्ता का अकह दौरचा शिक्षा बिगर नमह जिंदगी उखारी नाम अखदत एरदत एकासे पद्दा खेपनु आलय शिक्षित मल्ला आरगे एंदा दिक्कत मनी आउंगे नमन

0: कथा कमते और डंडी मिनते नमः आदिवासी अखड़ा मिनुती एम विदा उदम तो इनंता प्रस्तुति रचा ओली मीन सरस्तरती तो उर्मा धतम मिनोरिन एन संगीता
1: नेली ग्रेसेका
0: अरा संगीता बेगतरती उर्मा
1: रिन ओ लगी अरा दाव माखा
2: श्रोताओं उराव भाषा में अभी आपने सुना कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनें प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: कैसे हैं बिहार और झारखंड वालों, एक बार फिर से आपका दोस्त राजेश आ गया आप सबों के बीच में। सोमवार का दिन है और आज के दिन इसी मीटर पर आकाशवाणी के आप सुनते हैं बुनियाद। जी हाँ, बुनियाद एक ऐसा कार्यक्रम जो आप युवाओं के लिए एकदम हिट साबित हो रहा है। हम आपकी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं और जिस पर जो पूरी इमारत लिखी जाए ना, वो एकदम मुकम्मल हो। अच्छा रोजगार, अच्छा पैसा, अच्छी जिंदगी, सब कुछ आपको मिल सके। और इस बुनियाद कार्यक्रम में हम बातें करते हैं रोजगार, जी हाँ रोजगार की। और रोजगार मिलती है ज्यादातर हाँ आसानी से प्रोफेशनल पढ़ाई करके, विशेषज्ञता हासिल करके, टेक्निकल पढ़ाई करके। और एक मेरा ये जो सेंटेंस है ना, ये जो लाइन है ना, बहुत पॉपुलर हो रहा है कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। अगर जो आपने की टेक्निकल पढ़ाई तो आपके जीवन में सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, और ये बुनियाद कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं एक वैसे संस्थान, एक वैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेक्निकल पढ़ाई का हब है और ये अपने बिहार के जमुआर में है, रोहतास में है, सासाराम में है, और जिसका नाम है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय से आप टेक्निकल पढ़ाई कर सकते हैं। इसके वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं और वेबसाइट का पता है www.gnsu.ac.in। और जो अगर फोन करना चाहें तो सबसे पहले हम एक टोल फ्री नंबर है वो बता रहे हैं, नंबर नोट करें 1800 121 0051 1800 121 0051। और दूसरा जो नंबर है मोबाइल का, वो नंबर है 9431899002। पिछले सप्ताह अवनीश रंजन थे हमारे साथ और हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स की चर्चा की थी, बीएड स्पेशल एजुकेशन। हमने कहा बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड सब कोई करना चाहता है ना, करना चाहता है और शिक्षक बनना चाहता है या फिर आगे निकलना चाहता है, लेकिन बीएड स्पेशल एजुकेशन की बातें हमने की थी जो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में होता है। पूरे बिहार और झारखंड से रिस्पांस आए हैं। हाँ, उन्होंने डाल्टनगंज से मोहन यादव ने लिखा है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड में हाँ क्या क्या अंतर है, या दोनों के बारे में एक बार फिर से बताइए, क्योंकि मैं कार्यक्रम सुन रहा था और सुनते सुनते ये जो जवाब था वो निकल गया, हम फॉलो नहीं कर पाए। इसी तरीके से भागलपुर से, पूर्णिया से, हाँ इवन सासाराम से भी हाँ फोन कॉल्स आए हैं इसी तरीके के सवाल के लिए। तो चलिए हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन आपके डिमांड पर हम एक बार फिर से अवनीश रंजन जो हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम में, हम उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में हमें जानकारियां दें एक बार फिर से, जिससे हम आपकी मदद कर सकें।
1: अब जो स्टूडेंट्स बीएड कोर्स करना चाहते हैं उनके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि दो अलग अलग ये कोर्स क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जब दो अलग अलग बीएड कोर्स चलते थे और जिसमें था कि एक वैसे बीएड जो सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों को पढ़ाने के टीचर के रूप में ट्रेंड होते थे, और दूसरा बीएड जिसमें कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिन्हें जो कोई मानसिक रूप से कमजोर है या देखने में उनको दिक्कत हो रही है या सुनने बोलने में दिक्कत है, उन बच्चों के जो विशेष शिक्षक होते थे उनकी ट्रेनिंग होती थी। ये आज से करीब 4 साल 5 साल 8 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था। अभी सरकार ने ये निर्णय लिया कि चूंकि हमारे सारे जब से सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान पूरे भारत में लागू हुआ, तो उसके बाद सरकार का ये निर्णय हुआ कि जो टीचर होंगे स्कूल के, जो भी टीचर होंगे, वो सारे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के ट्रेंड होने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि वैसा विद्यालय जहां पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे जो स्कूल के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने के लायक हैं। तो अब जो स्पेशल एजुकेशन वाले जो बीएड हैं, जो जिन्होंने किया है कोर्स को, वो सामान्य विद्यालयों में भी सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं और वो टीचर दोनों बच्चों को एक समान रूप से पढ़ा सकते हैं।
0: बहुत खूब, आपने सारी चीजें एक बार फिर से अच्छे से बता दी और हमें उम्मीद है कि पूरा बिहार और झारखंड जो सुन रहा है और बीएड करना चाहता है एक बार जरूर बीएड स्पेशल एडुकेशन की तरफ देखेगा। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है बीएड स्पेशल एडुकेशन में। आप जो कॉमन आदमी है उसके लिए, कॉमन बच्चे हैं उसके लिए तो काम कर सकते हैं, चैलेंज बच्चों या डिजेबल बच्चों के लिए भी आप काम कर सकते हैं। सर्विस की भावना ज्यादा है, सारा कुछ इसके अंदर है। जी हाँ, ये गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में ये कोर्स होता है। हम नंबर बता दे रहे हैं, आप चाहें तो बात कर सकते हैं। नंबर जो टोल फ्री नंबर है हमारा 1800121001, 1800121001, और दूसरा जो नंबर है 9431899002, ये नंबर है। आगे बढ़ें बीएड स्पेशल एडुकेशन के बारे में, आगे बढ़ें उससे पहले आपको याद दिला दें युवा साथियों कि हमने तीन नए कोर्सेज की चर्चा की थी जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, दूसरा कोर्स था परफ्यूजन टेक्नोलॉजी और तीसरा कोर्स था बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। इसकी चर्चा हमने इस बुनियाद कार्यक्रम में की थी, आपके रिस्पॉन्सेज आए हैं लेकिन सच बताऊं तो जितना आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आए, शायद आप ये कोर्स को समझ नहीं पाए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन ये हॉट केक है, एक बार फिर से बता देते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में इसकी प्लेसमेंट होती है। इसी तरीके से परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है और बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडी जैसी बहुत कम है। इसी नंबर 1800121001 या 9431899002 इस नंबर पर आप बात करके जानकारियां ले सकते हैं। बहरहाल अवनीश जी, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में जरा लोगों को बताइए, वहां ये कोर्स होता है, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें जितनी जानकारी हम दे सकते हैं गागर में सागर भर दीजिए।
1: मैं बताना चाहूंगा कि गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी रोहतास जिले, बिहार के रोहतास जिले के जमुआ में स्थित है और ये करीब 100 एकड़ में फैला हमारा यूनिवर्सिटी है जिसमें कि बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज संचालित होते हैं, जिसमें हमारा ये फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस भी है,

0: ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस के ही अंतर्गत ये 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन के 2 स्पेशलाइजेशन के साथ, 2 विशेषज्ञता के साथ बीएड की पढ़ाई होती है। एक इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी जिसे हम बौद्धिक अक्षमता कहते हैं, और दूसरा हियरिंग इंपेयरमेंट, मतलब जिनको सुनने या बोलने में समस्या है बच्चों की, उनके शिक्षक की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ भारतीय पुनर्वास परिषद जो भारत सरकार की वैधानिक संस्था है वहां से मान्यता प्राप्त है हम लोगों का यहाँ। और इसके अलावा हमारे जो फैकल्टी हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स को, टीचर ट्रेनीज को पढ़ाते हैं, वो वेल क्वालिफाइड हैं, उनके पास अच्छी डिग्री है और इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। साथ साथ हमारे ही कैंपस में नारायण वर्ल्ड स्कूल है, जो चूंकि टीचिंग प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है टीचर्स को अपने ट्रेनिंग के दौरान, तो उनको प्रैक्टिस के लिए भी हमारे कैंपस में स्कूल है, इंक्लूसिव स्कूल है, जिसमें कि सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ते हैं। हमारे कैंपस में नारायण केयर बाल पुनर्वास केंद्र भी स्थापित है, जहां पे इस तरह के बच्चे थेरेपी के लिए आते हैं और स्पेशल एजुकेशन के लिए आते हैं। जब ऐसे सेटअप में, स्पेशल सेटअप में, जहां इन बच्चों को अलग से स्कूल के अलावे भी अगर उनको सपोर्ट की जरूरत है तो उस तरह के सेंटर्स हैं। तो जो स्टूडेंट यहां एडमिशन लेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले कोर्स में, उनको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भी व्यवस्था हमारे यहां है, थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन के लिए लैब हमारे पास अवेलेबल है, हमारे यहां बच्चे अवेलेबल हैं जिनके ऊपर बच्चे उनको ट्रेनिंग के दौरान उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन असेसमेंट करने के लिए भी व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैंपस में ही हॉस्टल अवेलेबल है, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल है। हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के भोजन उपलब्ध कराने वाली मेस है, जिसमें कि जो भी बच्चे रहते हैं हॉस्टल में उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वायरमेंट मिलता है, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा वैसे लोगों से जिन्होंने प्लस टू किया है इस बार साइंस या आर्ट्स में, वो एक बार हमारी यूनिवर्सिटी को विजिट करें, हमारे वेबसाइट पर भी जाएँ और फैकल्टी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस को के साइट को देखें और हमारे प्रोग्राम्स को समझें, हमारे पूरे फैसिलिटी को एक बार देखें। और मैं अपील करूंगा कि वो एडमिशन अगर लेते हैं तो मैं अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के, अच्छी यूनिवर्सिटी को में एडमिशन लेंगे और उनकी अच्छी पढ़ाई के साथ, एक अच्छे मार्क्स के साथ डिग्री लेकर निकलेंगे, जब वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पार्ट उनका बहुत स्ट्रांग होगा और जहां चाहे वो जॉब कर सकते हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं।
1: मजा आ गया लवनीश जी, वाह, बहुत पूरी तरीके से आपने खोल के बता दिया। लेकिन आपने बाद में रोजगार की बात कही, यहाँ एक सहज जिज्ञासा है, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा रोजगार सारे यूथ चाहते हैं, गार्जियन भी चाहते हैं, अगर हमारा बेटा भी हो तो हम चाहेंगे पढ़ने के बाद रोजगार लगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या व्यवस्था है?
0: जी, हमारे यहाँ अलग से एक प्लेसमेंट सेल है जिसमें कि हमारे वैसे लोग जो हमारे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं उनके लिए हम लोग प्लेसमेंट के लिए ड्राइव चलाते हैं। बहुत सारी एजेंसीज हैं खासकर जो इस फील्ड में काम कर रही है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज है जो हमारे यहाँ आती है और इन लोगों के का इंटरव्यू लेके और उनके को सेलेक्ट करके और अपने यहाँ ले जाती है और अच्छे पैकेज पे उनको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है।
1: अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ कैंपस में नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी है, तो क्या आप अपने बच्चों को या आपके यहाँ से जो पढ़ के निकले आप अपने यहाँ भी प्लेसमेंट देते हैं उनको?
0: जी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो हमारे बच्चे हमारे कैंपस में काम करना चाहते हैं तो हम उनको चांस देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब हमने अपने बच्चों को एक हाई एजुकेशन दिया है, एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी, तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे हम लोगों के यहाँ पहले ऑब्जर्व हों। अगर वो अपने एरिया में काम करना चाहते हैं तो हम लोग उनको वो भी मदद करते हैं कि आप जिस राज्य में या जिस शहर में काम करना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स हैं, हम लोग उनको वहां भी रेफर करते हैं और वहां जाके वो जॉब करते हैं।
1: अवनी जी, रोजगार से संबंधित एक और हम जानकारी चाहते हैं कि स्कूलों में सब बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी बीएड स्पेशल एडुकेशन वालों की बढ़ी है क्या?
0: सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के आने के बाद जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो सबको सरकार की मैंडेटरी है कि वो इंक्लूसिव सेटअप में उस स्कूल को रखना है, मतलब कि ऐसा स्कूल जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे, तो उस विद्यालयों में इन शिक्षकों की भारी मांग है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, चाहे वो सीबीएसई के स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या और दूसरे प्राइवेट विद्यालय हो जैसे आईसीएसई और सीबीएसई के स्कूल हैं, वो सारे जगह पे मैंडेटरी है कि इन तरह के टीचर्स को उनकी बहाली कंपलसरी है, रखनी है उनको, और उनका वहाँ स्कोप है जहाँ वो एज ए टीचर काम कर सकते हैं।
1: वाह, बहुत खूब, थैंक यू अविनीश जी, बहुत बहुत

0: धन्यवाद। अगर कोई सवाल आए तो आपसे जरूर पूछेंगे, आपको बुलाएंगे इस कार्यक्रम में। तो साथियों, पूरा बिहार और झारखंड आपने सुना पहले कोर्स के बारे में, बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में, और लंबी बातचीत हुई जॉब को लेकर। हर तरफ जॉब ही जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बात कर सकते हैं इस नंबर पर 1800121 0051, 1800121 0051, और दूसरा नंबर 9431899002, ये नंबर है। और इंटरेस्टेड होना भी चाहिए बीएड स्पेशल एडुकेशन के लिए। और इसके अलावे आज ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आ गई है युवा साथियों, बस गौर करने की जरूरत है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है ये जानने की जरूरत है। अपने बिहार में टेक्निकल पढ़ाई वाला यूनिवर्सिटी है जहां 13-14 अपॉर्चुनिटी है। जैसे अगर आपने बायोलॉजी के साथ किया है तो मेडिकल है, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। इसके अलावा फार्मेसी है, पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, नर्सिंग के कोर्सेज हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर है, आप जा सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल पढ़ाई में आप लॉ, 5 ईयर लॉ कर सकते हैं। इसके अलावे भी लाइब्रेरी साइंस, बीटेक, आईटी, ना जाने कितने कोर्स हैं। बस जरूरत है ध्यान देने की। और नंबर वही 1800121 0051 और 9431899002। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम बुनियाद पूरे बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए राजेश को लेकर आने का मौका दिया। चलते हैं, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: बुनियाद, अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 8 बज रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत कर रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।
3: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फिल्मी गीतों के प्रोग्राम रजनीगंधा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त रौनक जहां। सभी सुनने वालों को रौनक जहां का प्यार भरा नमस्कार।

इंदीवर के बोल अभी आप सुन रहे थे, जिसे संगीत से सवारा था उषा खन्ना ने। फिल्म थी साजन बिन सुहागन और इस गीत को गाया था येसुदास और अनुराधा पौडवाल ने। और आइए बढ़ते हैं अगले नगमे की तरफ। फिल्म है जीवन मृत्यु, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये गीत, जिसे लिखा था समीर ने और संगीत से सवारा था आनंद मिलिंद ने। फिल्म थी अनाड़ी। और अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश।

राजा जानी इस फिल्म का नगमा अभी आपने सुना, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और सुरों में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और दिलकश आवाज थी लता मंगेशकर की। और अब सुनिए आज के प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी की तर्ज, फिल्म का नाम गीत।

0: और इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पश्चिम एशिया संकट के वर्तमान परिदृश्य और वैश्विक प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: दयाल जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जो पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है, कुछ समय पहले ये आशा की जा रही थी कि इस स्थिति में सुधार होगा, लेकिन वर्तमान समय में ये कहा जा सकता है कि तनाव की जो स्थिति है वो कम नहीं हो पा रही, इस पर आप क्या कहेंगे?
3: देखिए, मेरे विचार में जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। यूएस और ईरान के बीच जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किया गया था पिछले महीने, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये कह दिया है कि सीज फायर अब खत्म है। आपको याद होगा कि उस एमओयू में ये कहा गया था कि ईरान जो है वो कमर्शियल वेसल्स को 60 दिन के लिए फ्री पैसेज देगा और वो ओमान के साथ काम करेगा कि किस तरह से आगे ये सर्विसेज दी जाएं, इस पे निश्चय किया जा सके। लेकिन ईरान ने जो कंडीशन थी उसको पूरी तरह से नहीं कबूल किया, और जो पुराना स्टेटस को था जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ओपन इंटरनेशनल वाटरवे था, उस स्थिति पे ईरान वापस जाने को तैयार नहीं हो रहा था। और बार बार ईरान ने ये कोशिश की कि वो दिखाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका सॉवरेन कंट्रोल है। और यहां तक कि ईरान ने तो कुछ टोल्स भी डिमांड किए, उन्होंने कहा कि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फीस है। तो जब ये कमर्शियल वेसल्स ने टोल्स देने को इनकार कर दिया और ईरान की बातें मानने से इनकार किया, तो ईरान ने इन कमर्शियल शिप्स को अटैक किया और उसके जवाब में अमेरिका ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए। ईरान ने फिर अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किए, खासतौर पे बहरीन और कुवैत में। तो इस सब से सिचुएशन जो है वो बहुत गंभीर होती जा रही है।
2: क्या ये द्विपक्षीय टकराव है या यूं हम कहें कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला घटनाक्रम बन चुका है सीज फायर के फेल होने के बाद?
3: ये वाकई में ये जो है संतुलन तो बिल्कुल खत्म हो गया और जो स्थिति है वो और गंभीर होती जा रही है। अब मेरे विचार में ये बहुत बड़ा संकट है क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं और इसको कैसे खत्म किया जाए ये सबसे बड़ा एक प्रश्न उठकर सामने आया है विश्व के सामने।
2: दयाल जी, अगर ये टकराव थोड़ा और गहरा होता है तो इसका असर कोई संदेह नहीं कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, समुद्री व्यापार भी प्रभावित होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। तो भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं सामने?
3: देखिए, एक तो ये कि भारत के लगभग 9.5 मिलियन यानी 95 लाख लोग रहते हैं गल्फ में और वहां काम करते हैं, वहां से रिमिटेंसेस भेजते हैं, तो उनकी फैमिलीज की लाइफ अफेक्ट होती है। अगर ये जो लड़ाई बढ़ती है और उनकी नौकरियां जाती हैं तो ये बहुत बड़ा संकट कई फैमिलीज के लिए होगा और भारत के रेमिटेंसेस जो है उनके कम हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, हमारा जो ऑयल सप्लाई है वो इस रास्ते से आता है। लगभग 85-90% हम अपने क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं और वेस्ट एशिया से करीब 50% हमारे पास आता है क्रूड ऑयल। तो अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो हमारे जो सप्लाईज हैं ये बंद होते हैं और क्या होगा कि जो कीमत बढ़ेगी, ऑयल सप्लाईज वहां से बंद होंगी तो क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी, तो इस वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है और इसीलिए हम चाहते हैं कि लड़ाई और आगे ना बढ़े, किसी तरह से समझौता।
2: दयाल जी, जहां तक भारत की बात हम करते हैं तो पश्चिम एशिया के अधिकतर देशों के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं, तो ऐसे में हमारे लिए संतुलित और बहुआयामी कूटनीति बनाए रखना आपको लगता है कि कुछ चुनौतीपूर्ण हो गया है या ये सामान्य है?
3: नहीं, वाकई इस वक्त बहुत ही मुश्किल हो गया है। जरूर हमारे रिश्ते सब पक्षों से अच्छे हैं, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ईरान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते, सकते हैं। और देखिए इसराइल के साथ भी हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, और यही सबसे मेन पार्टीज हैं इस लड़ाई में। ये बिल्कुल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हम जरूर चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो, हम कोशिश करते हैं कि दोनों को समझाएं, बैक चैनल डिप्लोमेसी कुछ कायम है, लेकिन जो ये स्थिति है ये रोज बरोज और गंभीर होती जा रही है।
2: दयाल जी, वैसे तो भारत लंबे समय से संवाद का, कूटनीति का और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक रहा है, और हमारी स्ट्रेटजी भी ऐसी ही रहती कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाए, तो मौजूदा परिस्थितियां जो हैं, तो ऐसे में भारत क्या मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, या भारत एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में सामने आ सकता है?
3: देखिए, हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि

0: लड़ाई का रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहा था, इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो यही बात हम समझाते हैं दूसरे देशों को कि भाई लड़ाई झगड़े में मत पड़ो, और कोई मुश्किलात है उनको डायलॉग से सॉल्व करो, डिप्लोमेसी से सॉल्व करो। इंडिया जरूर एक ऐसा देश है जो कि कोशिश कर सकता है, न सिर्फ अकेले बल्कि ऐसे फोरम्स के थ्रू जैसे G20 है जहां भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या ब्रिक्स है, इनके जरिए ये कोशिशें की जा सकती हैं कि दोनों साइड्स, अमेरिका इसराइल एक तरफ
1: जी
0: और ईरान दूसरी तरफ, इनको समझाया जाए कि आप डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाएं और लड़ाई का रास्ता छोड़ें। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस निकल सकते हैं जिसकी वजह से ये लड़ाई खत्म हो और जो सिक्योरिटी ठीक से बन जाए, जिससे ये जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स कायम रहे।
1: दयाल जी, जैसा कि अभी आपने संयुक्त राष्ट्र और G20 का जिक्र किया, तो हम थोड़ा सा इसमें और चीजें ऐड कर लें। ब्रिक्स की हम बात कर लें और क्वाड की बात कर लें, अन्य भी कई सारे बहुपक्षीय मंच हैं जो अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो क्या लगता है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए वैश्विक संस्थाओं में भी सुधार की जरूरत है?
0: देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में सुधार की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। अब यूनाइटेड नेशंस की आपने बात की, यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पीस फिर से कायम कराए और ये लड़ाई खत्म कराए। लेकिन क्या बात है कि ये यूनाइटेड नेशंस हमेशा ऐसा करने में सक्षम नहीं रहता है, वो कामयाबी नहीं पा पाता है। उसकी वजह है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो जो उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके इशारे पे इस तरह से चलती है कि कोई भी परमानेंट मेंबर जो है वो डिसीशन को वीटो कर सकता है। उनकी जो वीटो पावर है वो ग्लोबल पीस के रास्ते में एक अड़चन बनी हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर कोई इस जैसे लड़ाई चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई ऐसा निर्णय लेता है जो अमेरिका को इंटरेस्ट को नहीं सूट करता, अमेरिका उसको वीटो कर दे। या जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, उसमें आप कोई भी डिसीशन नहीं ले सकते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए, जो रशिया को नामंजूर हो, रशिया उसको वीटो कर देगा। तो ये वीटो पावर ऐसी है। और इसके साथ साथ देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में की गई थी, तब दुनिया दूसरी थी, भारत एक आजाद मुल्क था ही नहीं। तब से जो है इतने परिवर्तन हुए हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वैसी की वैसी बनी हुई है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है, और कुछ ऐसी कंट्रीज जैसे भारत है, जर्मनी है, जापान है, ब्राजील, इन सबको परमानेंट मेंबर्स की तरह उसमें शामिल करना चाहिए और वीटो पावर उनको भी देनी चाहिए, इन सब देशों को। या तो आप वीटो पावर पूरी तरह से हटा दें, और अगर वीटो पावर कुछ देशों के पास है तो भारत के पास क्यों नहीं है? भारत जो है वो दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन के टर्म में कंट्री है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो भारत को क्यों नहीं उसमें परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरह उसमें शामिल किया गया है? क्यों नहीं वीटो पावर दी गई? हमारे पास इस तरह की शक्ति हो तो जरूर हम दुनिया के जो इस तरह के झगड़े हैं उनको सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं।
1: दयाल जी, जो बदलते हुए वैश्विक समीकरण है, तो ऐसे में भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति है, इसको आप कितना सफल मानते हैं? और क्या आपको लगता है कि भारत को इसमें भी बदलाव की अब आवश्यकता महसूस हो रही है, होना इसमें चाहिए?
0: देखिए, भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी हमेशा अपनाता है, और इस वक्त दुनिया में जो सूरत हाल है उसमें किसी एक के साथ तो हो ही नहीं सकते, इसीलिए हम मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करते हैं। हम सब देशों के साथ अपनी इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाते हैं, और ऐसा ही करना जरूरी है। हमें कभी भी किसी गुट में नहीं शामिल होना चाहिए, हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी साइड में शामिल हो गए तो उसके सब संकट आपके संकट हो जाते हैं। अगर आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखते हैं तो आपके लिए यह हमेशा अच्छा होता है। भारत की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट पे बेस्ड है, और मेरे विचार में ऐसे ही रहनी चाहिए।
1: दयाल जी, जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, इस साल की शुरुआत से अगर देखें, खासतौर से फरवरी से देखें, तो काफी कुछ बदल गया है और लगातार भारत के हितों पर सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं। लेकिन भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत की जब हम बात करते हैं, तो अपनी स्थिति को लगातार मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। तो इन दोनों परिप्रेक्ष्य को अगर आप देखें, तो भारत की जो सोच है इसे लेकर के, उसे आप किस तरह से देखते हैं?
0: देखिए, भारत जो है वो बिलीव करता है इन सागर डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी फॉर एवरीवन, और जो हम

0: हमारी पॉलिसी है इंडो पैसिफिक रीजन पे वो इसी पे आधारित है। हम हमेशा चाहते हैं कि सब देशों के जो हित हैं वो बने रहें और किसी को नुकसान ना हो। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है कि इस रीजन में ये चाइना एक ऐसी कंट्री है जो सबका नाक में दम करके रखे हुए, क्योंकि चाइना जो है वह एक्सपेंशनिस्ट है। चाइना चाहता है उसी का दबदबा रहे, चाइना चाहता है जो सप्लाई चेन है वो उसके कब्जे में हो, और इससे दूसरे देशों को नुकसान होता है। तो हम दूसरे देशों के साथ इस तरह से काम कर रहे हैं कि चाइना का ये जो एक्सपेंशनिस्ट रोल है ये रुके और सप्लाई चेन कायम रहे। अभी देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेशल्स का दौरा किया और सेशल्स के साथ एक ऐसे रिश्ते बनाने की कोशिश की कि हम जो वेस्टर्न इंडियन नेशन है उसमें अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मजबूत कर सके। और अभी उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी दौरे पे गए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, और इन सबके साथ जो रिश्ते बनाने की कोशिश की जा रही वो इस दिशा में कि सप्लाई चेन अच्छी बनी रहे, हमारी जरूरतें वो पूरी कर सके, उनकी जरूरतें हम पूरी कर सके। देखिए ये बायलैटरल रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं कि दोनों साइड्स को फायदा हो। अब जैसे न्यूजीलैंड है तो उसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और न्यूजीलैंड की पर कैपिटा इनकम अच्छी, वो वहां के लोग रईस हैं और वो अच्छी चीजें खरीद सकते हैं, तो भारत को एक मार्केट मिल रहा है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को 100% टैरिफ एग्जेम्पशन मिल रहा है वहां। तो इस तरह से हमने ये कोशिश की है कि इस पूरे क्षेत्र में हमारे जो दूसरे देशों के साथ रिश्ते हों वो ऐसे हो कि उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। और चीन को ये संदेश गया है कि देखिए आप जो अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको ऐसा नहीं करने।
1: दयाल जी, पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति को हम देखें और यदि अमेरिका ईरान जो तनाव है अगर थोड़ा बहुत लंबा खींचता है तो भारत के लिए अपनी रणनीतिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, खासतौर पे हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए, हमारे समुद्री व्यापार के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जो हमारी अपनी जरूरतें पूरी होती हैं वो, और भी तमाम चीजें हैं जो हमारे मानवीय हितों को ध्यान में रख करके हम जिन पर बात करते हैं, खासतौर पर प्रवासी समुदाय और भारतीय नागरिक जो बाहर हैं।
0: देखिए जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं पूरे रीजन में जो रहते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। हम उनके हितों में हमेशा कार्य करने की कोशिश करेंगे, ऐसी पॉलिसीज बनाने की कोशिश करेंगे कि उनके हितों पर हम ध्यान रख सकें। और पूरे इस संकट के दौर में हमने इस बात को सब देशों के साथ ये दोहराया है कि हम अपने एक्सपेक्टेड कम्युनिटी के नुकसान को नहीं सह सकते, उनके जो हित हैं वो आप प्लीज कायम रखें। ईरान के साथ भी ये बातचीत हुई, उनको भी ये समझाया है, यूनाइटेड स्टेट्स को समझाया है और गल्फ कंट्रीज को। तो देखिए गल्फ कंट्रीज को तो जरूरत है हमारे लोगों की, लेकिन अगर वहां पर युद्ध बढ़ता है, ये फैलता है, तो जरूर ये जो हमारी एक्सपेक्टेड कम्युनिटीज का नुकसान होगा। इसके अलावा देखिए ये जो हमारी क्रूड ऑयल की सप्लाईज है उधर से आती है, हमें रॉक फॉस्फेट वहां से मिलता है जो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जब हमारे इतने अच्छे रिश्ते रहते हैं तो वहां से इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भारत में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है और करता जाएगा, लेकिन अगर वो इस युद्ध में फंस जाएगा तो फिर तो ऐसा नहीं कर सकता, उस पर कुछ रुकावटें आ जाएंगी। तो इन सब वजहों की वजह से हम ये कहते आए हैं कि भाई पीस यहाँ पर स्थापित होना बहुत जरूरी है और हमारा हित इसी में है कि लड़ाई खत्म हो और हमारे जो इंटरेस्ट हैं, चाहे वो ऑयल सप्लाईज के हो, चाहे हमारी वो एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन के हो, या चाहे जो हमारा बायलैटरल ट्रेड इन सब कंट्रीज के साथ उसके संबंध में हो, वो तभी प्रोटेक्टेड रहेंगे जब ये लड़ाई बंद।
1: प्रभु दयाल जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम एशिया संकट के वर्तमान परिदृश्य और वैश्विक प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभु दयाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के

0: दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर-19 और अंडर-23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रम बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार एन को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज

0: केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है। और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
4: Other operating income is not included.
0: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहे।

0: ने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चुमू केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपिन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक में संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ 232 अरब डॉलर से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस: India and US engage for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, dismisses media reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and four others convicted for killing of IB officer during 2020 Delhi riots. The US and Iran exchange another wave of strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in the region. In cricket, India scripts history beating England by 270 runs in first ever women's test at the Lords. And 16 Indian boxers enter finals at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with US Trade Representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. He added that both sides also exchanged views on the India-EU FTA and explored ways to deepen business ties and expand India's commercial engagement with Spain as a valued partner. Mr. Goyal is currently on a 5-day visit to Spain, Belgium and Finland from today. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewellery, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. The electronic goods exports increased by around 19% from $4.14 billion in June last year to $4.93 billion in June this year. India's retail inflation accelerated to 4.38% year-on-year in June, breaching the Reserve Bank of India's midpoint target. The June inflation reading was moderately higher than the 3.93% recorded in May. Retail inflation continued to rise for the sixth consecutive month under the new Consumer Price Index or CPI series. According to data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, inflation in rural areas edged up to 4.74%, while in urban regions it rose to 3.92%. Food inflation rate based on the All India Consumer Food Price Index stood at 5.32% last month, up from 4.78% in the preceding month. A Delhi court today convicted former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and four others for the killing of Intelligence Bureau officer Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots. Additional Sessions Judge Praveen Singh was hearing the case against a total of 11 accused, including Hussain, and convicted five of them. The court found Tahir Hussain guilty under the charges of promoting enmity, rioting, assault, criminal force and murder. The case pertains to an FIR registered at the Dayalpur police station on the complaint of Ravinder Kumar, father of Ankit Sharma. In his complaint, Ravinder Kumar alleged that his son was murdered by the then AAP councillor Hussain and others. Hussain was suspended by the Aam Aadmi Party after his name came up in the case. On 24th March 2023, a Delhi court framed charges against Hussain and 10 others.

किया गया है। अमेरिका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं। आबनाए हुरमुज पर कंट्रोल के तनाजे के बायस खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। खवातीन क्रिकेट में भारत ने तारीख रकम करते हुए लॉर्ड्स के मैदान में खेले गए पहले खवातीन टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया। और जकार्ता में जारी 19 साल और 23 साल तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कम से कम चांदी का तमगा यकीनी बना लिया है। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती मुजाकरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को बेबुनियाद, गुमराहकुन और मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका की टीमें एक ऐसे तिजारती माहदे पर पूरी संजीदगी से काम कर रही हैं जो मुतवाजन हो और तिजारती एतबार से मानी हो। नीज दोनों ममालिक के कारोबारी तबकों, किसानों, मजदूरों और सार्फिन के हकीकी फवायद फराहम करे। उन्होंने बताया कि पिछले महीने नई दिल्ली में अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर के साथ उनकी मीटिंग मुस्बत रही थी। दोनों फरीकों ने ऐसे मुतवाजिन और मुफीद माहदे के लिए अपने अज़्म का इरादा किया और इस मकसद को हासिल करने के लिए दोनों ममालिक की टीमें मुसलसल राबते में हैं। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज स्पेन के अपने सरकारी दौरे का आगाज किया। उन्होंने स्पेन हुकूमत के अव्वल नायब सदर और कॉमर्स, तिजारत और कारोबार के वजीर कार्लोस कैपेबेलेरो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत और स्पेन के इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबों में मुफीद बातचीत की है। उन्होंने बताया कि मुजाकरात में काबिले तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और इख्तराआत के मौजूआत पर भी तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक ने भारत यूरोपीय यूनियन के आजादाना तजारत पर ख्याल का तबादला, कारोबारी ताल्लुकात मजीद गहरा करने और स्पेन के साथ भारत के तिजारती ताउन को मजीद वसत देने के तरीकेकार पर गौर खोज किया। जनाब गोयल आज से स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड के 5 रोजा दौरे पर हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सरकारी सेक्टर के बैंक पर जोर दिया है कि वो बैरून मुल्क भारतीयों NRI तक अपनी रसाई को मजीद बढ़ाएं और उनके लिए जिद्दत तराजी पर मबनी नई जमा पूंजी स्कीमें मुतारिफ कराएं। उन्होंने आज नई दिल्ली में बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान और सरकारी मालियाती इदारों के सरबराहान से गैर मुल्की करेंसी NRI बैंक डिपॉजिट्स और गैर मुल्की करेंसी कर्जों के तबादले के इकदाम के सिलसिले में बातचीत के दौरान ये बात कही। वजीर खजाना ने इस बात पर भी जोर दिया कि NRI बिरादरी से राबते को मजीद बढ़ाया जाए ताकि गैर मुल्की सरमाया और रुकूम की आमद का सिलसिला जारी रहे। मीटिंग के दौरान बैंकों और सरकारी मालियाती इदारों के सरबराहान ने वजीर खजाना को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तबादले की सहूलत की स्कीमों के तहत होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया। उन्होंने मजीद कहा कि बैंकों और सरकारी मालियाती इदारों की सरगर्म शिरकत से यह साबित होता है कि तबादले की सहूलतें मुल्क में गैर मुल्की करेंसी की आमद को बढ़ाने में मौसर रोल अदा कर रही हैं। इस साल अप्रैल से जून की मुदत के दौरान भारत की मजमूई बरामदात का तखमीना 232 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा लगाया गया है, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुदत के मुकाबले 11.37% ज्यादा है। तिजारत और सनत की वजारत के मुताबिक जून 2026 के दौरान मजमूई बरामदात का तखमीना 73.45 अरब अमरीकी डॉलर रहा, जो गुज़िश्ता साल के जून के मुकाबले 9.48% की मुस्बत नमू को जाहिर करता है। जून में जिन अहम शोबों की बरामदात में इजाफा हुआ है उनमें कीमती पत्थर और जेवरात, इंजीनियरिंग साजो सामान, नामियाती व गैर नामियाती केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान और चावल शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान की बरामदात गुज़िश्ता साल जून के 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस साल जून में 4.93 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। इसी तरह इसमें तकरीबन 19% का इजाफा दर्ज किया गया। वजारत ने मजीद बताया कि जून में अशिया और खिदमात की मजमूई बरामदात डॉलर रहा, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 26% से ज्यादा का इजाफा है। इस दौरान जून 2026 में भारत की खुर्दा इफरात जर सालाना बुनियाद पर बढ़कर 4.38% हो गई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हदफ की दरमियानी हद से ज्यादा है। मई में इफरात जर की यह शरह 3.93% थी। इसी तरह जून में महंगाई में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। छठा महीना है जब खुर्दा इफरात जर में इजाफा देखा गया है। आदादोशुमार इलाकों में इफरात जर 4.74% रही, जबकि शहरी इलाकों में ये 3

0: सभी छतों से जो बहे वो व्यर्थ होने के अपेक्षा में उस गड्ढे में एकत्रित हो जाए, ताकि धीमे धीमे वो भूजल को भी बढ़ा सके।
1: भूजल का स्तर इससे बढ़ता है, और भूजल का जो स्तर गिर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वर्षा जल संचयन किया जाए। तो क्या जो आम आदमी के लिए आपने जो बात बताई कि वर्षा जल का संचयन किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और कितना खर्च आएगा अगर हम वर्षा जल संचयन करना चाहें अपने घर की छतों पर। तो
0: थैंक यू मैडम, और इसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। जैसे पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए
1: जी,
0: कहते थे पहली बारिश से जो धूल निकल जाए, धूल मिट्टी निकल जाए, उसके पश्चात नहाना चाहिए। उसी तरह से जैसे हमारे छतों पे अगर धूल मिट्टी है, तो फर्स्ट फ्लश जो अंग्रेजी में कहा जाता है, वो फर्स्ट फ्लश का पानी सारी धूल मिट्टी को साफ कर दे। तो छतों पे अगर हमारे एकत्रित, हमारे छत का एरिया निर्धारित होता है सभी के घरों के छत, उसको पाइप के माध्यम से जैसे मैंने पहले बताया नीचे ले जाएं, लूज सैंड, ऑफ कोर्स ये सब उस रीजन के हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन और जियोलॉजिकल कंडीशन, वहां कैसी भूमि कैसी है, वहां का एक्विफर लेवल कैसे, उस पे निर्भर करेगा। बट यदि मैं एक जनरल ज्ञान दूं, तो फर्स्ट फ्लश सिस्टम लगाएं, सैंड का प्रयोग करें, बजरी डाल लें ताकि पानी दलदल बनने के बजाय वो सीधे भूजल में जाए, और चारकोल या कार्बन फिल्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट बोलूं तो मल्टीपल लेयर फिल्टर, ताकि जो अगर कोई धूल मिट्टी आ रही है वो भी फिल्टर होके, ताकि भूजल में जब जाए तो स्वच्छ पानी जाए। इसका खर्चा अंदाजन अगर ये 3x3x3 का करते हैं तो मुझे बताया गया कि 10 से 15 हजार। ऑफकोर्स ये रीजन स्पेसिफिक होगा, वहां पे पत्थर की क्या है, भूमि कैसी है, उस पर निर्धारित करेगा, पर अंदाजन इतना खर्चा आना चाहिए। जो कि अगर हमारे एक कॉलोनी में हम बनाने की कोशिश करें तो एक सार्वजनिक रूप से ये शायद, चूंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे अपने भविष्य के निर्भर करता है इस इन चीजों पे, तो शायद मेरा मानना है कि हम इतना खर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: हमारे दूसरे श्रोता हैं सासाराम बिहार से अमित
2: जी। नमस्कार, मेरा ये सवाल था कि जैसे हम लोग रेन हार्वेस्टिंग का, जिसे सरकार की तरफ से कुछ जिसे कैसे अभी घर सूर घर योजना के तहत बहुत व्यापक तौर से इसको व्यापक तौर पर सरकार प्रचार प्रसार करे, उसी टाइप से इसको भी एक लेकर जल संचय को लेकर बहुत लोग सोचते हैं कि घर में हम रेन हार्वेस्टिंग करें या फिर अपने कॉलोनी में, जैसे सर अभी बता रहे थे, इसको संचय करने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे इसमें सरकार कुछ सब्सिडी दे ताकि अधिक से अधिक लोग इस ओर झुकाव करें और बचाने के लिए इस बारे में सोचे।
0: अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, और आपके माध्यम से मैं आपके सभी अपने सभी भाइयों बहनों और बाकियों को भी ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जल संचय जन भागीदारी नाम की एक अभियान का इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयत्न है कि कैसे, जैसे ये नाम ही सजेस्ट करता है, जल संचय जन भागीदारी, तो कैसे अधिकाधिक इसमें जनता, समुदाय, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएं, उद्योग और जो कहते हैं ना नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, उनका भी अधिक से अधिक इसमें वो सम्मिलित हो सके। और सम्मिलित होने का मतलब ये है, जैसे इसमें कई उदाहरण भी मैं देना चाहूंगा
1: जी।
0: कुछ एग्जांपल अगर बोलूं तो छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, और इसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने एक और मन की बात में भी इसका जिक्र किया है। वहां के किसानों ने अपने 5% भूमि जल संरक्षण के लिए यूटिलाइज किया। उसी क्रम में जैसे बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहां की बानस डेयरी ने वाटर कंजर्वेशन के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया। मैं इस तरह एग्जांपल दे सकता हूं, नॉर्थ त्रिपुरा में एक कम्युनिटी, करीब 500 घर हैं, वहां कम्युनिटी ने मिलकर ही अपने सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया और इम्प्लीमेंट किया। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, मगर सबसे बड़ी बात इस अभियान का या इस इनिशिएटिव का मैं बोलूं तो इसमें जन जागरूकता एक, जन पार्टिसिपेशन दो, एंड

0: कम्युनिटी ओनरशिप, ताकि ये मेरा भविष्य है, मेरे बच्चों का भविष्य है,
1: मेरी जिम्मेदारी है,
0: मेरी जिम्मेदारी है, उस पे जोर डाला जा रहा है। और अधिक अधिक आप सभी जगह को जान के ये खुशी भी होगी कि जेएसजेबी जल संचय जन भागीदारी के सीरियल जो 1.0 था, जो कि 24 से 25 में था, 31 मई 2025 को खत्म हुआ था। माफी चाहूंगा यदि मेरा जवाब ज्यादा लंबा हो रहा है,
1: नहीं, नहीं।
0: बट जनता को बताना भी जरूरी है कि जो
1: है।
0: जी तो 10 लाख का टारगेट, मतलब इस पीरियड में इतने आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था जन भागीदारी से। और जो मैंने बनस का अठा कर एग्जाम्पल दिया और जो अदर एग्जाम्पल जी, 10 लाख के अगेंस्ट करीब 25 लाख से अधिक स्ट्रक्चर्स बने, और उसका एक आकलन के हिसाब से 2.4 बिलियन क्यूबिक मीटर रिचार्ज हुआ। अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंट के टर्म में बोलूं तो एक रंजीत सागर डैम है थेम रावी रिवर पे, या उसकी कैपेसिटी करीब इतनी है। तो ये मानना होगा कि 6-8 महीने में, सितंबर से लेकर मई तक, इतने स्ट्रक्चर्स बने कि उसने एक, और जन भागीदारी से बने कि उसने एक डैम के बराबर का
1: पानी इकट्ठा,
0: जल इकट्ठा एक्वीफर में कर दिया।
1: बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और तो ये भी प्रेरणा,
0: ये प्रेरणा है, ये सभी के लिए हौसला अफजाई का भी है, और हमको ये आगे के लिए भी इंस्पायर करती है कि हम कैसे और से आगे कर सके।
1: फोन लाइन पर उड़ीसा से है अब देशदीप दास। देशदीप जी, आप हमें सुन रहे हैं?
2: जी नमस्ते जी, नारायण जी और कनकलता जी, मेरा सादर नमन आपसे।
1: नमन
0: प्रणाम आपको भी देशदीप जी।
2: जी जी नमस्ते जी। जी मेरा सवाल है
1: जी,
2: एक सामान्य आवासीय घर या बड़ी इमारत के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने में कितना खर्च आता है और इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या है?
0: देशदीप जी धन्यवाद। मैं मुख्य कंपोनेंट्स आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को दोबारा बता देना चाहूंगा कि इसके मुख्य आम तौर पे जो फिल्टर, सो छत में पानी जो एकत्रित हुआ उसको एक पाइप के माध्यम से नीचे ले गए जमीन के स्तर पे, और जमीन में एक रिचार्ज पिट बनाया जिसमें फिल्टर लगाया, जो मैंने फर्स्ट फ्लश सिस्टम बताया, फिर मैंने सैंड का, सो ताकि ऊपर फाइन मटेरियल हो, नीचे ग्रेवल हो ताकि वो पानी को दलदल ना बने या मिट्टी इकट्ठा ना हो, तो और धीमे धीमे सीप करे। इस तरह से बड़ी ही सिंपल तरीके से एक आम नागरिक, आपके और मेरे जैसे लोग, इस भूजल को मतलब रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक समाज इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। बहुत ही सिंपल प्रणाली है, इसको अपनाएं और अपने और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें।
1: एक बात और बताइए कि क्या ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है, ये सिर्फ नई इमारतों में ही लगाया जा सकता है या जो पुराने घर बने हुए हैं कहीं पर भी इसको स्थापित किया जा सकता है?
0: मैडम इसको कहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जब वर्षा होती है
1: जी,
0: वो पुराने और नए घरों में डिफ्रेंशिएट नहीं करती, वर्षा तो प्रकृति से आ रही है। ये हमको ध्यान देना है कि जो पुरानी अगर इमारत है तो जो छत है उस कितनी समतल है, क्या स्लोप है, उससे वो निर्धारित, ताकि जो पाइप में जो पानी एकत्रित हो, इधर उधर एकत्रित होने के बजाय पूरा अधिक से अधिक जल पाइप के माध्यम से भूजल तक पहुंच जाए। शॉर्ट आंसर, There's no differentiation. Long answer, मैंने आपको बताया।
1: इस तरह का जो पानी जो इकट्ठा किया जाता है, वो क्या पीने में और खाना बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल किया मैडम आपने। इस तरह से पानी हम लोग ये सोचेंगे कि अगर जैसे फर्स्ट फ्लश से सारी धूल मिट्टी निकल गई, फिर हम इसको भूजल में रिचार्ज करें। अगर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया है, फिल्टर्ड ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, इनफैक्ट आज भी जो हम दोहन कर रहे हैं, जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में या गांवों में या ब्लॉक्स में हम दोहन कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर दोहन कर रहे हैं, वहां तो हम आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं,
1: उसी तरह से भी कर सकते हैं। रमाकांत वाजपेयी जी हैं उत्तर प्रदेश से।
3: नमस्कार
1: रमाकांत जी।
0: नमस्कार
3: रमाकांत
0: जी, नमस्ते।
3: नमस्ते। मैं ये पूछना चाहता था कि जिस तरह से जल सुरक्षा और जल पुनर्भरण, भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो जल सुरक्षा का मतलब है कि जब हम 1 लीटर पानी खर्च करते थे, आज उस जगह जो है नए व्हीकल आ गए, नए नई परंपराएं हो गई, नई चीजें, इनमें हजारों लीटर पानी खत्म होता। और दूसरी चीज है भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो कंक्रीट का सड़क, कंक्रीट की गली, ऊपर से नीचे पानी जाता नहीं है, कुंड टूट दिए गए हैं, तो बताइए कैसे जो है जल पुनर्भरण हो।
0: रमाकांत जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, हमारे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, हमारे समुदाय बढ़ रहा है, उनकी ग्रोथ जरूरी है, और कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो इन सब के लिए जल तो अति आवश्यक है। सो आपकी, मेरी, कनकलता मैडम की और पूरे समुदाय की यह जिम्मेदारी भी है कि कैसे हम अधिक से अधिक जल को संरक्षण कर सकें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, चाहे समुदाय के तौर पे हम कंटूर ट्रेंचेस बनाएं, या देर आर मतलब कई सारे तरीके होते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम स्ट्रक्चर बनाने के। एक उनमें से है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा कि जैसे किसान मैंने कोरिया वाला बताया, अगर कंटूर ट्रेंच बना ले या रिचार्ज पिट बना ले, सो ये छोटे छोटे तरीकों से जैसे जमीन हुई, जैसे इकोसिस्टम हुआ, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया, पानी का संरक्षण किया, भूजल का अपग्रेडेशन हुआ, और साथ ही साथ ऐसे समझे कि जो बारिश, अगर सरफेस रन ऑफ या पानी का व्यर्थ बह जाती, वो पानी मैंने एकत्रित कर लिया जो मैं अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सकता
1: हूँ। भविष्य के लिए निवेश है,
0: भविष्य का बिल्कुल निवेश है, जैसे हम पिगी बैंक में अपने एक एक पैसे डालते हैं,
1: बच्चे डालते हैं,
0: बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने भविष्य के लिए एक एक बूंद को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि एक एक बूंद को बचाना है, उसी तरह हमारे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी हो जाती है,
1: हर बूंद कीमती है।
0: जी बिल्कुल।
1: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप इस पर सवाल भेज सकते हैं, नंबर है 2371 02371 7118 2371 7106 और 2331 4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। अब हमारे साथ अगले श्रोता की अभी प्रतीक्षा है, तब तक आप हमें ये बताइए सुमंत जी कि जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, इसका रख रखाव भी क्या कठिन होता है, किस तरह करते हैं?
0: मैडम बिल्कुल आपका सही सवाल है कि बट जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बनाना, उसको कंस्ट्रक्ट करना या एस्टैब्लिश करना जितना सिंपल है, रख रखाव उससे भी अधिक मैं कहूंगा सिंपल है कि बस साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर 6-8 महीने में एक बार, जैसे मानसून से पहले एक बार सफाई कर दिए ताकि वो रिचार्ज होने के लिए, जैसे कहते हैं ना, तैयार
1: हुए,
0: तो वो साफ सफाई हो गई, धूल मिट्टी हट गई, अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ गर्द आ गई हो वो साफ हो गया, ताकि जब जल आए वो धीमे धीमे भूजल पे मतलब अपग्रेड हो जाए,
1: उसका जो स्तर ऊपर
0: हो जाए।
1: वर्षा जल संचयन योजना 2025 की काफी चर्चा है, आप इसके बारे में श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैंने पिछले उत्तर में शायद आधा ही बताया था कि जैसे JSJB जल संचय जन भागीदारी 1.0 जो 2024 से 25 चली, उसमें क्या हुआ। अब ये अवसर मुझे आपके प्रश्न से मिलता है कि 2025 से 26 जो जल संचय जन भागीदारी, जिसको हम 2.0 कहते हैं, वो 1 जून 2025 को स्टार्ट हुई थी और 31 मई 2026 को खत्म हुई है। उसके अंतर्गत भी देश से बहुत करीब 700 डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पे वहां की जनता ने, वहां के क्राउड ने, वहां के डिस्ट्रिक्ट्स ने, वहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ने, वहां की इंडस्ट्री ने, वहां के एनजीओज

0: सबने मिलकर जो आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया रूफ टॉप रेन वाटर या हार्वेस्टिंग, या फिर जैसे रिचार्ज पिट हुआ या रिचार्ज शाफ्ट हुआ, इस तरह के जो मल्टी करीब 18-19 तरीके के लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, 1 करोड़ का टारगेट हमारा, हमने इंटरनली जो जो हमारे लिए सेट किया गया था, उस 1 करोड़ टारगेट के अगेंस्ट पूरे भारतवर्ष से करीब 1.5 करोड़ स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं,
1: ज्यादा बन गए,
0: मतलब
1: जितना लक्ष्य था
0: उस लक्ष्य से करीब 50% अधिक बने। और मैंने बताया ना कि अगर 2.4 BCM जो कि करीब 23-24 लाख स्ट्रक्चर से बने थे जितना रिचार्ज हुआ था, तो हम अभी ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका कितना फायदा हमारे आने वाले समय में दिखेगा। सो इसमें भी जन समुदाय भागीदारी, नॉन गवर्नमेंटल, ऑफकोर्स सरकार तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है, बट सभी लोगों
1: की भागीदारी बहुत
0: बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी कहते हैं ना, कोई भी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी ये फोकस है कि जैसे इसको मास मूवमेंट बनाया जाए, कैसे इसकी जन ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप हो, ये हमारा भी प्रयत्न है कि इसको हम आगे से आगे कैसे लेके जा पाए। इनफैक्ट आज जो आपका रेडियो का कार्यक्रम है
1: जी।
0: ये एक अपने आप में एक माध्यम है कि लोगों की अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे पता चले कि आप जैसे आपके स्टूडियो में मैं 3-4 लोगों को देख सकता हूं, जब हम अपने घर जाएं क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे।
1: आपने कहा लोगों तक हम पहुंच सके। देखिए शिमला से एक सवाल आया है राकेश जी का। राकेश जी
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला जिले की कोटखाई से।
1: नमस्कार।
2: और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारे सर्दी में जो कई बार जो है माइनस में तापमान चलता है और हमारी जो है बर्फबारी होती है काफी कोटखाई क्षेत्र में, तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो बर्फ का जो पानी है उसको किस तरह से जो है संरक्षण किया जा सकता है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, बिकॉज आप शिमला ही के लिए नहीं, ये प्रश्न मेरे ख्याल से हमारे पहाड़ी राज्यों में कई डिस्ट्रिक्ट्स पे ये लागू किया जा सकता है।
1: लद्दाख के बारे में बताइए।
0: आई एम सो ग्लैड आपने ये पूछा। इनफैक्ट लद्दाख का एक अभी कुछ हफ्तों पहले ही मुझे एक एग्जांपल बताया गया था कि लद्दाख में कैसे लोग अपना वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण कर रहे हैं। वहां डिटेल्स तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मगर जल स्तूपा का कॉन्सेप्ट वो लोग लाए हैं कि एक बर्फ के एक स्तूप बनाते हैं और उस स्तूप से ताकि वो धीमे धीमे जब वो पानी गलता जाए तो विंटर में जाड़ों में वो पानी एकत्रित हो गया, बर्फ बन गई, और वो समर में जब वो गलना स्टार्ट होती है तो धीमे धीमे पाइप के माध्यम से मेन स्ट्रीम में ले जाया जाता है। तो राकेश जी आपने बहुत सही सवाल पूछा कि हम शिमला हो, लद्दाख हो, सिक्किम में ये सब एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी गुड प्रैक्टिसेस अपनाई जा सकती हैं। हमने सभी राज्यों से शेयर भी किया है और आप वेबसाइट भी, अगर अपने वेबसाइट देखेंगे तो भी आपको इसके विस्तृत जानकारी मिल सकती है। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का।
1: एक और श्रोता हमारे साथ है, विवेक। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। विवेक जी
3: नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव जयपुर से बोल रहा हूँ
1: जी।
3: सर मेरा प्रश्न था, जैसे सोलर के लिए बहुत मार्केटिंग है, काफी लोग फोन आते हैं, हम लोग इस पे करा भी लेते हैं, बहुत सोलर के लिए जैसे अच्छे रेस्पॉन्स है, इस तरह के हम लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या कोई टोल फ्री नंबर या कुछ संस्थाएं सरकारी जिसके लिए प्रेरित करें, हमें बताएं कैसे लगाएं, हम क्या करें, तो एक यूजर फ्रेंडली से चीज होना तो इसको करा जा सकता है।
0: विवेक जी बहुत सही सवाल है कि आम नागरिक के लिए इसको कैसे आसान किया जाए। तो आपको और मैडम आपके माध्यम से बाकी श्रोताओं को भी ये जानकर बताने से मुझे हर्ष हो रहा है कि देश भर में करीब 700 जल शक्ति केंद्रज हैं। जैसे हमारे कृषि विज्ञान KVKs हैं
1: जी।
0: उसी तरह जल शक्ति केंद्रज हैं। हर अब ये जयपुर से कर रहे हैं तो मुझे उनका टोल फ्री नंबर नहीं पता है, मगर डिस्ट्रिक्ट में जल शक्ति केंद्र में एक टोल फ्री नंबर है, आप उनको फोन करें। आपको जो सिंपल तकनीकी राय लेनी हो कि हम कैसे संरक्षण, बिकॉज जयपुर की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है अपितु शिमला से या उत्तर प्रदेश, जो हमारे डिफरेंट श्रोता हुए हैं, तो आपको रीजन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सबसे आसान और सुविधाजनक समाधान होगा वो आपको आपका जल शक्ति केंद्र ही बता सकता है, लोकल रिक्वायरमेंट।
1: पब्लिक स्पीक, आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। सुमंत जी, मिशन अमृत सरोवर की चर्चा होती है और अटल भूजल योजना की भी चर्चा काफी हो रही है, ये सारी जो पहले सरकार की ओर से की जा रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके, भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सके, इन सब के बारे में आप कुल मिलाकर क्या कहना चाहेंगे?
0: धन्यवाद मैडम आपके इस सवाल का। आप यही समझे कि जो होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मोटो है कि कैसे सरकार के सभी अंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से अडॉप्ट करके बनाए, उसी के अंतर्गत आपने अमृत सरोवर बोला या अटल भूजल योजना बोली, एक एक सरकार का अंग ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कैसे भूजल, कहीं पे सरोवर बनेगा कि बड़े सरोवर बने, कहीं पे भूजल डायरेक्ट इंजेक्शन वेल से चला जाए, किसी और स्कीम के अंतर्गत अगर रिचार्ज पिट बन जाए, या अगर मैं होल ऑफ सोसाइटी की बात करूं तो अगर मैं रायपुर का एग्जांपल दूं तो वहां पे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनवाए। इस तरह मैं एग्जांपल्स, देश भर में अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो जन भागीदारी होती जा रही है, मगर अभी रास्ता लंबा है। हम सबको अपना, रिपीट कर रहा हूं, मगर अपना और अपने बच्चों का भविष्य इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुदृढ़ करना
1: और
0: आवश्यक,
1: बच्चों को भी जागरूक किया जाना चाहिए इसके लिए।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, कहते हैं ना कि बच्चों से ही जितना बिहेवियर चेंज होता है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो बच्चों के सिलेबस में
1: इसको जोड़ा जाना चाहिए।
0: कई कक्षाओं में जुड़ा हुआ है, जैसे 6वीं 7वीं कक्षा के सिलेबस में चैप्टर्स हैं। इसको हम और अवेयरनेस मॉडल्स, जैसे एक ये रेडियो प्रोग्राम हुआ या यूट्यूब हुआ या सोशल मीडिया हुआ,
1: आकाशवाणी पर भी इसके बारे में प्रचार किया जा रहा है।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी पे डेली जिंगल्स चल रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे इस मिशन को या अभियान को हम और इंटेंसिफाई कर सकते हैं।
1: सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी प्रभावी भूजल प्रबंधन आवश्यक है, और जैसा कि आपने बताया कि जो बावड़ियां हैं पुरानी, उन सबको भी, उनका भी पुनरुद्धार करने की कोशिश चल रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण, स्टूडियो में आने श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको एक कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSDtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
0: नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। पेश है प्रोग्राम सुनहरी यादें। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज से। आनंद बख्शी के शब्द, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, फिल्म का नाम अनुरोध।

इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाज थी किशोर कुमार की। और अब सुनिए अगला नगमा लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम आप आए बहार आई।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं यादों से भरा खास प्रोग्राम सुनहरी यादें, आकाशवाणी के रांची केंद्र से अपनी दोस्त रौनक जहां के साथ।

दो बदन, इस फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। शकील बदायूनी के लफ्जों को संगीत में पिरोया था रवि ने। और अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में, नीरज की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम कन्यादान।

शिव हरि के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे चांदनी फिल्म का ये गीत। इसे लिखा था आनंद बख्शी ने और गायक कलाकार थे सुरेश वाटकर और अनुपमा देशपांडे। और अब सुनिए आज के कार्यक्रम के आखिरी सफर में आइए सुनिए आखिरी गीत मोहम्मद अजीज और इस जानकी की आवाजों में। गीत के बोल अनजान के, संगीत निर्देशन अनु मलिक का, फिल्म है बाजी।

तो ये था खास प्रोग्राम आप श्रोताओं के नाम। नमस्कार, रात के 10:30 हो रहे हैं। आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। इनसे आज आप सुनेंगे राग देश में गायन और राग हिंडोली सारंग में गायन। पहले सुनिए राग देश में गायन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राग देश में गायन और राग हिंडोली सारंग में गायन। कलाकार थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। इसी के साथ ही आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर रात के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूकवॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said, he had a fantastic meeting with the U.S. Trade Representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said, both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year.